ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम व्यू 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है, सक संवत 1948 की वैशाख माह की 18वीं तिथि, तदनुसार 8 मई 2026। सुबह के 5:57 हो रहे हैं। आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल।

0: Kumar. उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। यह मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों के हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की खाद्य सुरक्षा लगातार बढ़ रही है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि कम आवक के बावजूद इस साल गेहूं की खरीद पिछले साल से बेहतर है। मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण उन खबरों के जवाब में दिया है जिनमें दावा किया गया था कि मंडियों में गेहूं की अधिकता जैसी स्थिति है। मंत्रालय ने कहा कि पंजाब में अब तक लगभग 122 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में आया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए आवश्यक अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। उधर तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलक वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। इस बीच केरल में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में ही संपन्न होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस मैराथन में भाग ले सकेंगे। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी।

भगवान शंकर के शाप के कारण शूद्र कुल में जन्मे काकभुशुंडी को हजार योनियों में जन्म ग्रहण करना पड़ा। अंतिम बार वे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए और इसी जन्म में उन्हें श्री राम के अनन्य भक्त होने का सुअवसर और गौरव प्राप्त हुआ। उन्हीं दिनों सुमेरु पर्वत पर लोमश ऋषि वटवृक्ष के नीचे बैठे प्रभु भक्ति और उपासना किया करते थे। काकभुशुंडी जो अब ब्राह्मण कुलवंशी थे लोमश ऋषि के पास पहुंचे और उनसे सगुणोपासना का मूल मंत्र देने की प्रार्थना की ताकि अयोध्या जाकर स्वयं अपनी आंखों से श्री राम का धाम देकर अपना जीवन सफल करें। किंतु लोमश ऋषि ने सगुण मत का खंडन करते हुए निर्गुण ब्रह्म का निरूपण आरंभ कर दिया। उत्तर में ब्राह्मण ने सगुण मत का निरूपण किया और अपने मत के प्रतिपादन में वे ऋषिवर से वाद विवाद पर उतर आए। इनकी अधर्मिता से लोमश ऋषि को क्रोध हो आया और इनकी टाए टाए सुनकर उन्होंने इनको चांडाल पक्षी अर्थात कौवा हो जाने का शाप दे दिया। ब्राह्मण ने नतमस्तक होकर ऋषिवर का शाप स्वीकारा और कौवा होकर सहर्ष वहां से उड़ चले। ऋषि के प्रति इन मन में कोई दुर्भाव उत्पन्न नहीं हुआ क्योंकि ये जानते थे कि सभी क्रियाओं के मूल में रघुनाथ जी की प्रेरणा होती है।

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर सुविचार।

जीवन में यदि सफल होना चाहते हैं तो दूसरों के जीवन में झांकने की बजाय स्वयं के भीतर झांकिए और एक बेहतर इंसान बनने का प्रयास कीजिए। इस सुविचार के बाद आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

इस भक्ति रचना के साथ ही हमारा वंदन कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

श्रोताओं, फिल्म संगीत में ये पहला गीत आपने सुना आर आर आर फिल्म से, जिसे गाया था राग पटेल ने, लिखा था वरुण ग्रोवर ने और संगीत से सजाया था एम एम करीम ने।

मैदान फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कि ये प्रोग्राम यहीं संपन्न होता है। इस गीत को गाया था ऋचा शर्मा और जावेद अली ने, लिखा था मनोज मुंतशिर ने और संगीत से सजाया था ए आर रहमान ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

दोस्तों, खूबसूरती एक ऐसा एहसास है जिसे सिर्फ आँखों से नहीं, दिल से महसूस किया जाता है। ये कभी किसी मासूम मुस्कान में छुप जाती है, कभी माँ के चेहरे की सुकून भर

श्रोताओं, खूबसूरती सिर्फ गोरा चेहरा या चमकती आंखें नहीं होती। कभी किसी का सादगी से बात करना भी बहुत खूबसूरत लगता है, कभी किसी का दूसरों का दर्द समझना और कभी बिना कुछ कहे किसी का साथ देना भी खूबसूरत लगता है।

श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम कुछ बातें कुछ गीत में, जिसे आज आप सुन रहे हैं आपके रेडियो दोस्त जयश्री के साथ। और आज हम बात कर रहे हैं खूबसूरती की। श्रोताओं, बॉलीवुड ने खूबसूरती को हर रंग में देखा है। कभी जुल्फों को काली घटा के रूप में, कभी आँखों को झील के रूप में, कभी चेहरे को चांद और कभी एक मुस्कान को पूरी दुनिया। जी हाँ श्रोताओं, असली खूबसूरती शायद वही होती है दोस्तों, जो वक्त के साथ और गहरी होती जाए, जो चेहरे पे नहीं इंसान के दिल से पहचानी जाती है।

दोस्तों, बॉलीवुड ने हमेशा खूबसूरती को बहुत अलग अलग तरीके से देखा है। यहाँ सिर्फ चेहरे नहीं सजाए गए, एहसासों को इन गीतों में समेटा गया है। कभी किसी की आँखों में पूरा समंदर देख लिया गया, कभी जुल्फों में बादलों का नशा, कभी किसी के चेहरे को चांद कहा गया और कभी किसी की सादगी को ही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती मान लिया गया। पुराने गीतों में मोहब्बत शोर नहीं करती थी, बस धीरे से दिल में उतर जाती थी। तभी तो गीतकारों ने तारीफ भी इतनी प्यारी तरीके से की है कि आज तक वो अल्फाज लोगों के दिलों में जिंदा है।

खूबसूरती ये एक ऐसा एहसास है जिसे हर दौर में अपने अपने तरीके से देखा है, लेकिन बॉलीवुड ने इसे सिर्फ देखा नहीं, अल्फाजों में सजाया और सुरों में पिरोया और गीतों में हमेशा के लिए अमर कर दिया। पुराने गीतों में जब किसी से मोहब्बत होती थी ना, तो उसकी तारीफ में सिर्फ ब्यूटीफुल कह देना ही काफ़ी नहीं होता, उसे इस तरीके से बताया जाता था।

दोस्तों, पुराने बॉलीवुड गीतों की एक खूबसूरत बात ये भी थी दोस्तों कि वहाँ तारीफ में भी एक शर्मोहया होती थी, एक नज़ाकत, एक मिठास। वहाँ मोहब्बत सिर्फ जोर से नहीं कही जाती बल्कि गीतों में धीरे से महसूस करवाई जाती थी। कभी गीतकार प्रकृति से अल्फाज उधार ले आते थे, कभी चांद, कभी फूल और कभी चंदन की खुशबू।

चंदन सा बदन, क्या खूबसूरत सोच थी ना। किसी की सुंदरता को चंदन की तरह पवित्र और महकती हुई बताना। ये गीत सिर्फ एक चेहरे की तारीफ नहीं करता, बल्कि उस मासूमियत की भी बात करता है जो किसी की मुस्कान में बसी होती है। और शायद इसीलिए पुराने गीत आज भी इतने खास लगते हैं, क्योंकि उन्होंने खूबसूरती को सिर्फ देखा नहीं, उसे इज्जत और एहसास के साथ महसूस किया है।

दोस्तों, बॉलीवुड ने जब भी आँखों की बात की है ना, तो उन्हें सिर्फ आँखें नहीं माना, कभी उन्हें झील कहा, कभी नशा और कभी पूरा समंदर, क्योंकि कुछ आँखें वाकई बहुत कुछ कह देती है बिना एक भी लफ्ज़ बोले। कभी उन्हें शरारत महसूस होती है, कभी उसमें मासूमियत, और कभी इतनी गहराई कि इंसान खुद को उसमें डूबा हुआ महसूस करे। और इसी एहसास को कितनी खूबसूरती से बयान करता है ये गीत।

सिनेमा जगत में अगर किसी चीज़ को सबसे ज़्यादा खूबसूरती से बयान किया गया है दोस्तों, तो वो है जुल्फ़ें। कभी उन्हें काली घटा कहा गया, कभी महकती हुई शाम, और कभी किसी की जुल्फ़ों में ही पूरी मोहब्बत उलझ कर रह गई। पुराने गीतों में जुल्फ़ों का जिक्र सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं होता था, बल्कि वो एक एहसास होता था जो किसी को अपनी तरफ खींच लेती थी। और फिर एक गीत आया जिसे सुनते ही लगता है जैसे हवा भी धीरे से बहने लगी है।

श्रोताओं, अब जो अगला गीत आप सुनेंगे उसमें सिर्फ तारीफ नहीं है बल्कि एक शरारत भी है, एक ऐसी केमिस्ट्री जो सुनते ही चेहरे पर मुस्कान ले आती है। पुराने गीतों की यही बात खास थी दोस्तों, वहाँ खूबसूरती को कभी चांद की ठंडक मिली तो कभी जुल्फों की शरारत।

दोस्तों, बॉलीवुड ने सिर्फ चेहरों की खूबसूरती को ही नहीं सराहा, बल्कि प्रकृति को भी इतने प्यार और एहसास से भर कर देखा कि पहाड़, नदियाँ, बादल, हवाएं सब गीतों का हिस्सा बन गए। कभी बारिश को मोहब्बत का पैगाम कहा गया, कभी फूलों को खुशियों का रंग, और कभी कुदरत को खुदा की सबसे हसीन कला। पुराने गीतकारों की कल्पना देखिए, उन्होंने प्रकृति को सिर्फ बैकग्राउंड नहीं माना, उससे बातें भी की, और इसी खूबसूरत एहसास को लेकर आता है ये अगला गीत, जिसे गीतकार प्रकृति को देखकर हैरान हो और पूछ रहा हो, आखिर इतनी खूबसूरत दुनिया को बनाने वाला वो खुदा कौन सा चित्रकार है। इस गीत में पहाड़ों की सुंदरता है, नदियों की मासूमियत है, और कुदरत के हर रंग के लिए एक गहरा सम्मान।

दोस्तों, आज बॉलीवुड के इन हसीन गीतों के सफ़र में हमने महसूस की खूबसूरती की वो हर परछाई जो कभी किसी के चेहरे में दिखी, कभी आँखों में और कभी जुल्फों में और कभी प्रकृति के हसीन नज़ारों में। तो जाते जाते बस इतना सा कहना चाहूँगी कि खूबसूरती को सिर्फ आँखों से मत देखिए, उसे दिल से महसूस भी कीजिए। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त जयश्री और आपसे अब अनुमति चाहती हूँ। मिलेंगे फिर कभी कुछ बातें कुछ गीत में।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। सुबह के 8 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे पहले हिंदी में, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी। सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसी के, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में

0: भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने डकवर्थ लुइस नियम से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप अंदाज गुप्ता, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलग वित्री कड़गम टीवीके को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरुथाईगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
2: AIADMK और DMK के विधायक दल की बैठक का नतीजा भी महत्वपूर्ण है। DMK प्रवक्ता TKS एलेंगोवन ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी का यह कर्तव्य है कि वह अपना बहुमत साबित करे, और साथ ही यह भी कहा कि DMK प्रमुख MK स्टालिन कोई संवैधानिक संकट नहीं चाहते। गौरतलब है कि विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पुद्दुचेरी AIADMK के सचिव ए अनबाजगन ने कहा कि फैसला लेने का अधिकार पार्टी के महासचिव को दिया गया है। उन्होंने बहुमत के मुद्दे पर राज्यपाल के फैसले की सराहना की और कहा कि मौजूदा राजनीतिक अनिश्चितता में प्रत्याशित फैसले भी हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि उनके नेता स्टालिन के चुनाव में हार से दुखी हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष डॉ MJ खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया AI और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि यह साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं

0: को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का महत्वपूर्ण अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। वर्ष 2016 के बाद से ये संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे।
4: इंडिया एंड वियतनाम ऑफर समथिंग इम्पोर्टेंट।
5: भारत और वियतनाम दुनिया को कुछ महत्वपूर्ण चीजें देते हैं, एक भरोसेमंद साझेदारी, स्थिर शासन, आर्थिक गतिशीलता और दीर्घकालिक रणनीतिक विश्वास। एशिया का भविष्य भारत और वियतनाम जैसे देशों के उद्यमियों, इनोवेटर्स, निवेशकों, टेक्नोलॉजी लीडर्स, निर्माताओं और युवाओं के मिलकर काम करने से बनेगा।
4: इंडिया एंड वियतनाम वर्किंग टूगेदर।
3: सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान राजनयिक माध्यमों पर केन्द्रित कर दिया है। उन्होंने ईरान के साथ हाल की बातचीत को संतोषजनक बताते हुए किसी स्थायी समाधान निकलने की आशा व्यक्त की।
6: ईरान अब युद्ध समाप्त करने के लिए अमरीका द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है। प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत शत्रुता को विराम दिया जाएगा और अंतिम वार्ता के लिए 30 दिन की अवधि दी जाएगी। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित प्रमुख मुद्दों को बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिया जाएगा। कूटनीतिक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है, क्योंकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी शर्त को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद वगैर कलिबाफ ने कुछ मीडिया रिपोर्टों को फर्जी बताकर खारिज कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: अमरीका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए वैश्विक टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमरीकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। लगभग 3.5 किलोमीटर की यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। प्रसार भारती के

0: मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन तथा दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। ये देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। और अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग ने आज केरल माहे दक्षिण आंतरिक कर्नाटक तमिलनाडु पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश पूर्वी राजस्थान तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में आज गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ ओडिशा और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: जी विशाल, हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में सरकार गठन की प्रक्रिया पर आज के अधिकांश समाचार पत्रों की नजर है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय के लिए बहुमत का क्लाइमैक्स बाकी। राज्यपाल ने कहा टीवीके के पास पर्याप्त विधायक नहीं। पार्टी प्रमुख विजय ने मांगा लेफ्ट दलों से समर्थन। दैनिक जागरण ने लिखा है राज्यपाल ने भंग की बंगाल विधानसभा। चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बावजूद भी ममता बनर्जी ने नहीं दिया इस्तीफा। अमर उजाला ने लिखा है पश्चिम बंगाल में पहली बार बन रही भाजपा की सरकार, शपथ ग्रहण समारोह कल। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर पंजाब केसरी संपादकीय में लिखता है इस हिंसा ने राजनीति के रक्त चरित्र को एक बार फिर उजागर किया है। सत्ता में आने वालों के चेहरे तो बदलते रहे लेकिन खूनी सियासत का चरित्र नहीं बदला। लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। राज्य में भाजपा की नई सरकार के सामने राजनीतिक हिंसा आपराधिक तत्वों और गुंडा संस्कृति पर लगाम लगाने की बड़ी चुनौती होगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 जवान मारे, 13 विमान गिराए। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं का यह बयान दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर है। देश में सड़क हादसों में रोजाना औसतन 546 लोगों की मौत, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हवाले से जनसत्ता लिखता है तेज गति से गाड़ी चलाना है सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण। बड़ा बदलाव शीर्षक से राजस्थान पत्रिका की खबर है, देश में मुफ्त एंटरटेनमेंट पर लगेगी लगाम, बंद होगी फ्री चैनल स्ट्रीमिंग, सरकार की शुल्क लगाने की तैयारी, रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। केंद्र सरकार की ओर से 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात, अमर उजाला में है। कामगारों की अब हर साल होगी मुफ्त स्वास्थ्य जांच।
0: धन्यवाद निखिल। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी, सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। और सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। बीजेपी सेंट्रल ऑब्जर्वर फॉर वेस्ट बंगाल अमित शाह टू मीट न्यूली इलेक्टेड पार्टी एमएलएस इन कोलकाता टू इलेक्ट लेजिस्लेटिव लीडर टुडे। Deadlock continues in Tamil Nadu over government formation as MLAs of VCK, CPI and CPIM to meet on lending support. President of Vietnam Tho Lam emphasizes India-Vietnam role in global supply chain at business forum in Mumbai. Commerce Minister Piyush Goyal reviews initiatives to strengthen India's position in global agriculture landscape. सऊदी अरेबिया सस्पेंस यूएस मिलिट्री

0: हेलो, नमस्ते, आदाब दोस्तों. आप सभी प्रिय श्रोताओं का स्वागत है आप ही के अपने फेवरेट मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में.
1: आकाशवाणी जोधपुर का आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र और आपके साथ जुड़ चुका है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार. और नमस्कार में बहुत सारी बातें, बहुत सारे प्यारे प्यारे गीत आपके साथ शेयर करेंगे आज के इस अंक में, जो कि है 8 मई का अंक. और बहुत सारी बातें शुरू करें उससे पहले परिचय करवा देते हैं आपसे आज की क्रिएटिव टीम का. इस वक्त ट्रांसमीटर पर मौजूद हैं पारस्परिक गोस्वामी और सीएल सोनी. वहीं कंट्रोल रूम में तकनीकी सहयोग दे रहे हैं प्रवीण कुमार.
0: अनाउंसर ऑन ड्यूटी श्रोताओं हमारे साथ हैं जयश्री राठी और एफएम चैनल पर हैं कविता सांखला.
1: कार्यक्रम का संयोजन किया है राजेश लामरोड ने और नमस्कार की प्रस्तुति है संजय व्यास की.
0: और इसी के साथ श्रोताओं, मैं हूं आपके साथ सोफिया खान
1: और मैं स्वाति भंसाली. बहुत सारी बातें आज शेयर करेंगे और खूबसूरत गीत भी आपको सुनवाएंगे. तो इस वक्त जो अगला गाना आपका इंतजार कर रहा है वो बहुत ही प्यारा सा है या प्यारी सी है.

0: दोस्तों, आज एक नया दिन, नई स्ट्रेंथ और नए थॉट्स यानी विचारों के साथ आपका दिन जो है वो शुरू कीजिए, क्योंकि विचार अच्छे होंगे तो दिन खुद ब खुद अच्छा होगा।
1: बिल्कुल, और जब दिन अच्छा हो जाएगा तो फिर आपकी जो शाम है वो भी खूबसूरत हो जाएगी, रात सुहानी होगी, तो फिर अगली सुबह फिर से एक नई उमंग और नई खुशी लेकर आएगी। बिल्कुल, तो इसी तरह से ये जो पॉजिटिविटी है वो हमारी लाइफ में जब जुड़ती है तो हम दूसरों की लाइफ तक भी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और सोचिए ना, जब ये पॉजिटिविटी निखर कर आती है तो दुनिया कितनी खूबसूरत लगती है। बिल्कुल, और जब दुनिया खूबसूरत लगने लगती है तो जो गाने हमें सुनाई देते हैं वो भी तो सीधा दिल तक यानी कि हमारे रूह तक पहुँच जाते हैं। तो अगला गाना अरिजीत सिंह की खूबसूरत आवाज़ में फिल्म भूत बंगला से तू ही दस्ता।

0: फिल्म भूत बंगला के इस गाने में अरिजीत सिंह का साथ दिया था निकिता गांधी ने। और वैसे अरिजीत सिंह तो एक बहुत ही खूबसूरत सिंगर तो है ही, हालांकि उन्होंने प्लेबैक से संन्यास ले लिया है, लेकिन जितने गाने उन्होंने गाए हैं वो अपने आप में इतने दिल को सुकून देने वाले थे। और अलग अलग फीमेल सिंगर्स के साथ भी उन्होंने बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन किया है। वैसे देखो ना, कई बार ऐसा होता है फिल्म जगत में भी बहुत सारी जोड़ियाँ बन जाती हैं, हिट भी हो जाती हैं, लेकिन बदलाव जो है वो हमेशा, चाहे हमारे श्रोता हों चाहे फिल्मों के ऑडियंस हो, सबको हमेशा अच्छे लगते हैं, है ना सोफिया?
1: बिल्कुल, और बदलाव को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हर कोई जो है बदलाव से डरता है कि अगर ये बदल जाएगा, ये चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लेकिन कभी कभी जीवन में हम उस मोड़ पर होते हैं जब बदलाव जो है वो बेहद ज़रूरी हो जाता है।
0: बिल्कुल, और बदलाव से एक बात तो है कि लाइफ में फ्रेशनेस भी आती है। जैसे हमारे नमस्कार प्रोग्राम में भी रोज हमारे अलग अलग प्रेजेंटर्स हम लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं, श्रोताओं तक, तो जो बात है उसमें भी वेरिएशन भी आता है और उस बात की खूबसूरती भी बढ़ जाती है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा एक जैसी भी अच्छी लगती हैं, जैसे सूरज रोज पूर्व दिशा से निकलता है, पश्चिम अस्त होता है, तो ये अपने आप में एक कंफर्म चीज़ है। वैसे ही अगर अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की जोड़ी की बात करें, तो अभी जो गाना हमने सुनवाया भूत बंगला फिल्म से वो तो खूबसूरत था ही, लेकिन जो अगला गाना हमारे श्रोताओं का इंतजार कर रहा है वो भी है अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाज़ में। एंजॉय कीजिए गाना आवन जावन।

0: सावन जावन दे, कितना ही खूबसूरत गीत इस वक्त आपके साथ आपके रेडियो सेट पे बना हुआ था मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में। और जब आवन जावन की बात आती है तो देखिए मौसम भी तो हमारा कभी आता है कभी जाता है, कभी गर्मी है कहीं बरसात है। और जैसे अरिजीत सिंह की ये खूबसूरत जो आवाज़ थी निकिता गांधी के साथ, तो इसने बाहर की इस तपश भरे मौसम में भी दिल को एक अलग ही ठंडक पहुंचाई है। और हमारे राजस्थान का मौसम तो इस वक्त शायद जितनी भौगोलिक और सांस्कृतिक तरह से विविधताएं हमारे भारत में दिखाई देती हैं उतनी सिर्फ हमें राजस्थान में दिखाई दे रही है मौसम की विविधताएं।
1: बिल्कुल, मौसम में विविधता दिखाई दे रही है, कहीं ओले गिर रहे हैं तो कहीं पे पारा है 44 पार।
0: बिल्कुल
1: और ये पश्चिमी विक्षोभ का असर है स्वाति जी, तो देखा जाए तो आज भी कई ज़िलों में जो है वो आंधी और बारिश का अलर्ट है, हीट वेव का दौर चल रहा है और कहीं ओले भी गिर रहे हैं। तो
0: हाँ
1: आज जहाँ हीट वेव का जो अलर्ट बताया है वो है अलवर, भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और टोंक में। यहाँ जो है बारिश का भी अलर्ट जो है वो जारी किया है, यानी यहाँ का मौसम जी जो है वो ठंडा होने वाला है।
0: बिल्कुल, लेकिन जब राजस्थान की बात सुनते हैं और राजस्थान के मौसम की बात सुनते हैं तो आमतौर पर सिर्फ भारत में ही नहीं दुनिया भर में भी लोगों को रेगिस्तान और ऊंट नजर आते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हमारे राजस्थान में भी। यहाँ कुछ जगह पे ओले गिर रहे हैं तो वहीं जंगल भी हैं, वहीं जहाँ मुकंदरा और रणथंभौर के रिजर्व्स भी हैं टाइगर
1: बिल्कुल
0: रिजर्व, तो वहीं पर नदियाँ भी हैं, सुहावना मौसम भी है, हरियाली भी है, तो एक अलग ही तरह का ठंडक और एहसास जो सुकून का है वो दिलों में उतर जाता है जब इस तपिश भरे मौसम में किसी पेड़ की ठंडी छाँव मिल जाती है। और ऐसी ही ठंडी छाँव मिलती है हमारी बातों के बीच में सुकून भरे गानों से। तो आइए मेट्रो इन दिनों का खूबसूरत सा गाना आपके लिए।

0: श्रोताओं कहते हैं कि बीते समय का पछतावा और आने वाले समय की चिंता, ये दो ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से हमारा वर्तमान जो है, हमारा प्रेजेंट जो है, वो खराब हो जाता है। इसीलिए जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन जो आने वाला है उसकी तैयारी हम करें, उसके लिए हम अपडेट रहें, और जो हमारा वर्तमान है उसे हम अगर अच्छी तरह से जिए तो आज का दिन भी अच्छा होगा और आने वाले दिन भी अच्छे होंगे।
1: बिल्कुल। तो इस वक्त हमारा जो वर्तमान है वो क्या है, क्योंकि आप सभी श्रोता और जितने भी लिसनर्स हैं वो सब जुड़े हुए हैं इस वक्त मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार के साथ, और हम भी आप तक अपनी तमाम अपडेट्स पहुंचाने के लिए तैयारी भी करते हैं और हर दिन एक नई खूबसूरत जो बात है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, अच्छे अच्छे गीत आपको सुनवाने की कोशिश करते हैं। और बिल्कुल, हमारा दिन तो अच्छा जाता ही है और आप सभी लिसनर्स का दिन भी अच्छा जाता हो, यही हमारी शुभकामनाएँ रहती हैं। और वैसे हर दिन जब नमस्कार आपके साथ नई नई बातें शेयर करता है तो नए नए गाने भी आपको सुनवाता है। इस वक्त गाने नए नवेले में जो अगला गीत आपका इंतजार कर रहा है वो है साल 2016 में आई फिल्म तुम बिन टू का, आवाज फिर से अरिजीत सिंह की, लेकिन इस बार साथ दिया है उनका तुलसी कुमार ने। देख लेना ये खूबसूरत गीत आपके लिए।

0: आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र पर मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम इस वक्त ट्यून्ड है आपके साथ। हमारे स्टूडियो की घड़ी में बजने वाले हैं सुबह के 9। हम एक न्यूज ब्रेक के लिए रुकेंगे और फिर से लौटेंगे नमस्कार कार्यक्रम में ठीक 9:10 पर।
1: ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है, सुबह के 9 बज रहे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार जिन्हें आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा।
2: अजमेर है, अब आप हमारे केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। जयपुर में चल रहे संयुक्त कमांडर सम्मेलन में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भविष्य की युद्ध रणनीतियों और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। कृषि और एग्रीटेक क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए ग्राम 2026 के तहत आज हैदराबाद में चौथी इन्वेस्टर मीट का आयोजन। देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हुआ, ये बफर स्टॉक की जरूरत से लगभग 3 गुना अधिक है। और राज्य के उत्तरी पूर्वी हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियां जारी, वहीं पश्चिमी राजस्थान हीट वेव की चपेट में। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। जयपुर में कल से शुरू हुए 2 दिन के संयुक्त कमांडर सम्मेलन में नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता पर विचार विमर्श किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर

0: आयोजित इस सम्मेलन में भाग लिया। जयपुर सैन्य स्टेशन में हो रहे इस सम्मेलन में रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म जारी की। इस फिल्म में आतंकवाद को राज्य नीति के रूप में इस्तेमाल किए जाने की पाकिस्तान की नीति को उजागर किया गया है। वहीं 26/11 मुंबई हमलों और पहलगाम आतंकी हमलों की घटनाओं को दिखाया गया है। सम्मेलन के पहले दिन भविष्य की युद्ध अवधारणाओं पर नए सिद्धांत भी जारी किए गए। वहीं आज रक्षा मंत्री CDS अनिल चौहान की मौजूदगी में वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसमें भविष्य की युद्ध रणनीतियों और तीनों सेनाओं की संयुक्तता तथा तालमेल को बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। साथ ही रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए स्वदेशीकरण और नागरिक सैन्य सहयोग पर विमर्श किया जाएगा। इसमें थिएटर कमान के गठन की भी समीक्षा की जा सकती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में उन्होंने कहा कि देश में अवैध रूप से रह रहे किसी भी विदेशी नागरिक को देश के कानूनों, प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं के अनुसार वापस भेजा जाना चाहिए।
1: जो लोग अवैध ढंग से हमारे यहाँ रह रहे हैं, इसमें हमको बांग्लादेश की सहयोग चाहिए ताकि वो उनको रिपैट्रिएट किया जाए अपने देश। पिछले कुछ साल में 2860 से ऊपर ऐसे मसले हैं जिसमें हम लोगों ने राष्ट्रीय सत्यापन के लिए बांग्लादेश को खबर किया है और ये सभी मामले उनके यहाँ लंबित हैं। हमारा ये नीति है कि जो भी विदेशी नागरिक हमारे यहाँ अवैध रूप से रह रहा है वो उनको अपने देश जाना पड़ेगा।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल सीकर जिले के खंडेला में ग्राम विकास चौपाल लगाई। जाजोद गांव में लगी इस चौपाल को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से ही देश और प्रदेश मजबूत बनेगा। राजीविका से जुड़ी महिलाओं के साथ संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने उनके जीवन में आए सकारात्मक बदलावों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने किसानों से फलों की खेती और नवाचार करने के बारे में भी चर्चा की।
2: हमको फलों की खेती भी करनी चाहिए क्योंकि अनुभव होता है फलों की जब खेती हम करते हैं तो एक प्रफुल्लता भी आती है मन में। आपने आम का पेड़ लगाया है, आम फल दे रहा है, तो आप कहीं भी रिश्तेदारी में भेजोगे तो कहोगे ये मेरा खेत का आम है। तो आपको 10-20-50 पेड़ हर किसान को अपने फलों के लगाने चाहिए जिससे कि वो ये महसूस करे कि ये फल तो मेरे घर का है, तो ये भी मैं आपसे तो पर्यावरण भी बचेगा और हमारा फल भी पैदा होगा। हमको पर्यावरण का ध्यान रखते हुए फलदार, फूलदार, छायादार वृक्ष भी हमें लगाना चाहिए।
0: राजस्थान को कृषि नवाचार और खेती की आधुनिक तकनीक का केंद्र बनाने के लिए जयपुर में 23 मई से ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले एग्री बिजनेस, कोल्ड स्टोरेज और लॉजिस्टिक में निवेश के लिए कृषि विभाग की ओर से देश के विभिन्न शहरों में इन्वेस्टर मीट और रोड शो का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हैदराबाद में ये मीट रखी गई है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा और कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल तथा पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत का भी इसमें भाग लेने का कार्यक्रम है। ग्राम 2026 से किसानों को जोड़ने के लिए प्रदेश भर में ग्राम रथ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई ने सांचौर के चितलवाना में कहा कि इस अभियान में सरकारी योजनाओं की जानकारी के साथ ही पात्र लोगों को इनसे जोड़ा जा रहा है।
3: अपने विकास के कार्यों को और कैसे सुदृढ़ बनाया जाए, किस तरीके से जमीन तक जागरूकता और बढ़ाई जाए ताकि आने वाले समय में निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के अंदर प्रदेश सरकार की योजनाएं चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं उनको और प्रभावी रूप से नीचे तक पहुंचा सके।
0: हनुमानगढ़ जिले के पल्लू क्षेत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कथित फर्जी बीमा क्लेम का मामला सामने आया है। कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा ने कल SBI पल्लू शाखा में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने 162 फर्जी किसानों के नाम पर बीमा करने का खुलासा किया। गौरतलब है कि कृषि मंत्री के हस्तक्षेप से करोड़ों रूपये की बीमा क्लेम राशि जारी होने से पहले ही रोक दी गई। मीडिया से बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि 9 करोड़ रूपये की बीमा भुगतान राशि को समय रहते ही रोक दिया गया।
4: जमाबंदी नहीं है तो कैसे, जमीन की जमाबंदी नहीं है तो प्रीमियम कैसे काट लिया और क्लेम कैसे बना दिया? बिना जमाबंदी, बिना जमीन के इन्होंने प्रीमियम जमा करा के क्लेम पास कर दिया। ये जाने वाला था, उससे पहले हमारी जानकारी आ गया। इस चक्र में कोई भूमि नहीं, जितने भी नाम है ना 162 किसानों के,

0: की कोई जमीन यहाँ पर नहीं है, यह है बजरू तेजपुरा गजनी तहसील।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग तीन गुना अधिक है। श्री जोशी ने कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। भारी खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से देश में खाद्य सुरक्षा लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में आंधी बारिश की गतिविधियों में कमी आने के साथ ही गर्मी के तेवर फिर से तीखे हो गए हैं। हालांकि कुछ हिस्सों में दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट ली। सवाईमाधोपुर, वनस्थली, जालौर और दौसा सहित कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बरसात हुई। टोंक, करौली और कोटपुतली बहरोड में ओले भी गिरे। बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली, किन्तु अधिकतर स्थानों पर तेज धूप और उमस से लोग परेशान रहे। भरतपुर में आज भी बादल छाए हुए हैं और सुबह से ठंडी हवाओं के साथ रुक रुक कर हल्की बरसात हो रही है। वहीं सवाई माधोपुर में देर शाम धूल भरी हवाएं चलने से यातायात प्रभावित हुआ। पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर और बाड़मेर में फिर से प्रचंड गर्मी का असर शुरू हो गया है। जैसलमेर में कल दिन का तापमान 45 डिग्री को पार कर गया, वहीं 15 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा गया। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में आंधी बारिश की गतिविधियों में अब कमी होने की संभावना है। इससे अगले 3-4 दिन में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं सीमावर्ती जिलों में हीट वेव का नया दौर शुरू होने का अनुमान है। उत्तर पूर्वी राजस्थान में आज और कल कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। राज्य के पुलिस बेड़े में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 84 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के तबादले और नई नियुक्तियां की गई है। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार कई जिलों, पुलिस आयुक्तालय, एसीबी, सीआईडीसीबी, ट्रैफिक और महिला अपराध अनुसंधान सेल में अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जयपुर में चल रहे संयुक्त कमांडर सम्मेलन में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भविष्य की युद्ध रणनीतियों और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। कृषि और एग्रीटेक क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए ग्राम 2026 के तहत आज हैदराबाद में चौथी इन्वेस्टर मीट का आयोजन। देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हुआ, ये बफर स्टॉक की जरूरत से लगभग तीन गुना अधिक है। और राज्य के उत्तरी पूर्वी हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियां जारी, वहीं पश्चिमी राजस्थान हीट वेव की चपेट में। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: हिंदी में प्रादेशिक समाचारों के बाद श्रोताओं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार में। और नमस्कार कार्यक्रम में अब जानते हैं एक जरूरी सूचना के बारे में। ग्रीष्म ऋतु के लिए जल भंडारण और जोधपुर शहर के फिल्टर प्लांट पंप हाउस पाइपलाइनों के अति आवश्यक रखरखाव और सफाई के लिए 10 मई को जोधपुर शहर के समस्त फिल्टर हाउस को श्रोताओं सभी क्षेत्रों में जो जलापूर्ति है वो बंद रहेगी। और ये जो जलापूर्ति है सभी क्षेत्रों में 10 मई को जो होने वाली जलापूर्ति है वो 11 मई को और 11 मई को जो होने वाली जलापूर्ति है वो 12 मई को की जाएगी।
1: और ये जो जलापूर्ति है वो जोधपुर शहर के कायलाना, चपासी और सूरपुरा फिल्टर हाउस से संबंधित सभी क्षेत्रों में होगी। वहीं पर झालामंड और तखत सागर फिल्टर हाउस से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं सरस्वती नगर और कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड के अलग अलग सेक्टर और पाल बाईपास शिल्पग्राम के आसपास के क्षेत्रों में 10 मई को सुबह 10 बजे तक की जाने वाली जलापूर्ति सामान्य रूप से होगी और इन क्षेत्रों में 11 मई को की जाने वाली जलापूर्ति 12 मई को और 12 मई को की जाने वाली जलापूर्ति 13 मई को होगी। सूचना समाप्त हुई।

आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र पर आप और हम बने हुए हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार के साथ, और नमस्कार में अब बारी है इतिहास के आईने में झांकने की। तो आज का दिन किस तरह से दिखाई देता है, आइए जानते हैं।

0: 8 मई सन 1541, ये वो दिन था जब मिसिसिपी नदी की खोज की गई थी हर्नांडो दे सोटो के द्वारा। सन 1847 में रॉबर्ट डब्ल्यू थॉम्सन ने आज ही के दिन रबर टायर का पेटेंट करवाया था।
1: और 1945 में श्रोताओं, आज ही के दिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया था और इसी के साथ यूरोप में दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ था। तब से हर साल यूरोप में विक्ट्री ऑफ यूरोप डे के रूप में मनाया जाता है। और 1933 में आज के दिन महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन की नीतियों के खिलाफ 21 दिन का उपवास जो है वो शुरू किया था। ।1980 में श्रोताओं, आज के दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेचक के उन्मूलन की घोषणा की थी। और आज के दिन 2004 में श्रीलंका के मुरलीधरन ने 521 विकेट लेकर सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था।
0: और आज का जो खास दिन है यानी कि 8 मई का दिन, ये मनाया जाता है विश्व थैलेसीमिया दिवस के रूप में। वैसे थैलेसीमिया रोग जो है ये अनुवांशिक बीमारी होती है और सोचे ना पीढ़ी दर पीढ़ी भी चल सकती है। शिशु के जन्म के साथ ही ये बीमारी होती है और ये उम्र भर साथ नहीं छोड़ती है। सोचे ना क्या हालत होती है कि जब माता पिता से संतान को ये बीमारी ट्रांसफर होती है और इस बीमारी से ग्रस्त शरीर में लाल रक्त कण बनने बंद हो जाते हैं और बार बार खून चढ़ाना पड़ता है क्योंकि रक्त की कमी हो जाती है और अपने आप में ये एक बहुत ही मुश्किल जो भरी जिंदगी है उसको एक न्योता देने वाली बीमारी है।
1: और श्रोताओं, साल 1994 में इस दिन की स्थापना सबसे पहले थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन यानी TTF के संस्थापक पेनोस एग्लेजोंस ने अपने बेटे जॉर्ज की याद में की थी जिसकी थैलेसीमिया से मृत्यु हो गई थी। और श्रोताओं, थैलेसीमिया में जैसा कि बताया हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है जिससे हमारी लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में कमी आ जाती है। और इसके लक्षणों की अगर हम बात करें श्रोताओं, तो उसमें है थकान, कमजोरी और शारीरिक विकास जो है वो रुक जाना। और इसके स्थायी इलाज की अगर हम बात करें तो उसमें स्टेम सेल ट्रांसप्लांट है जिसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी कहते हैं। इसके अलावा कम उम्र में अगर BMT यानी बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाए तो ये उपचार जो है वो ज्यादा सफल हो जाता है।
0: लेकिन कहते हैं ना कि अगर किसी भी बीमारी की रोकथाम पहले ही कर दी जाए तो वो उपचार से भी ज्यादा प्रभावी हो सकता है। तो अगर थैलेसीमिया की रोकथाम करनी है तो क्या करवाना है? जब भी शादी हो रही हो तो कुंडली जिस तरह से मिलाई जाती है उस तरह से अगर ब्लड ग्रुप का टेस्ट भी करवाया जाए तो फिर ब्लड ग्रुप की जांच के साथ अगर काउंसलिंग हो तो जिंदगियां बच सकती है और ये जो थैलेसीमिया है ये अगली पीढ़ी तक ट्रांसफर होने से बच सकता है। तो ये काउंसलिंग बहुत जरूरी होती है और शादी से पहले अगर लड़का लड़की दोनों की ही थैलेसीमिया जांच करवा ली जाए तो ये जो थैलेसीमिया है ये अपने आप में रोकने के लिए ये एक बहुत कारगर उपाय होता है। क्योंकि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो खुद थैलेसीमिया माइनर होते हैं लेकिन उन्हें कोई परेशानी नहीं होती और इसीलिए वे अनजान रहते हैं कि वे थैलेसीमिया माइनर हैं। लेकिन जब शादी होती है तो ऐसे में वो दोनों करियर बन जाते हैं, माता और पिता, और ये थैलेसीमिया जो है वो बच्चों तक ट्रांसफर होता है और वो बच्चे जिंदगी भर इस परेशानी से जो है वो ग्रसित रहते हैं। हर 15 दिन में उन्हें खून चढ़वाना पड़ता है, उनका वजन और लंबाई भी प्रभावित होती है, शरीर में कमजोरी और थकान भी रहती है। तो फिर बहुत जरूरी है कि जो माता और पिता हैं वो थैलेसीमिया अगर माइनर हो तो अपने आप की पहले जांच करवाएं, शादी से पहले कुंडली से भी पहले ब्लड ग्रुप की जांच करवाएं तो इसको रोका जा सकता है। तो इस तरह की बातें और भी आपसे शेयर करते रहेंगे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में। आप बने रहिए हमारे साथ और सुनिए ये प्यारा सा गीत।

और श्रोताओं, आज दुनिया सलाम कर रही है उन हाथों को जो निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा में जुटे हैं। बिल्कुल, आज 8 मई है और आज दुनिया

0: भर में विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे के रूप में मनाया जाता है। मकसद है इसका बिना किसी भेदभाव के लोगों की मदद करना।
1: बिल्कुल। और वैसे अगर हम विश्व के जितने भी देश हैं वो किसी एक विचार पर अगर सहमत माने जाते हैं तो वो विचार है रेड क्रॉस का विचार। खासतौर पर युद्ध के मैदान में जितने भी घायल सैनिक हैं उनके चिकित्सा के लिए, प्रकृति के महाविनाश के बीच फंसे लोगों की मदद के लिए, चाहे किसी भी प्रकार की आपदा हो उसमें भी हमेशा घायलों की सहायता के लिए डटा रहता है रेड क्रॉस।
0: और ये दिन रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति यानी ICRC के संस्थापक हेनरी डुनांट की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। और पहला अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस की अगर हम बात करें तो वो 8 मई 1948 को मनाया गया था।
1: लेकिन जो हेनरी ड्यूनेंट है उनका जन्म हुआ था 8 मई 1828 में, और तब इन्होंने जो है बिना भेदभाव के पीड़ित मानवता की सेवा करने का विचार दिया था और रेडक्रॉस अभियान को जन्म दिया था। और अपने आप में वैसे जो हेनरी ड्यूनेंट थे वो बचपन से ही घायलों को देखकर द्रवित हो जाते थे। उनका दिल जो था वो हमेशा से घायलों की सहायता करने को तत्पर रहता था और उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किया। और इसीलिए सन 1901 में उनके मानव सेवा कार्यों के लिए इन्हें पहला नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था।
0: और कहा जाता है कि 1984 में इसे विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट के रूप में मनाया जाने लगा। और श्रोताओं, ये दिन हमें याद दिलाता है कि हम चाहे किसी भी देश किसी भी धर्म के हों लेकिन सबसे पहले हम इंसान हैं।
1: इंसान है, और अगर इंसान है तो जिंदगी अगर मिलके बिताएंगे तो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी, इस गीत के माध्यम से जानते हैं।

0: श्रोताओं, आज है शुक्रवार और आज के हमारे स्पेशल सेगमेंट शुक्रवार की किताब में हम बात करेंगे आज महाकवि दंडी द्वारा रचित संस्कृत साहित्य की कृति दश कुमार चरित की। श्रोताओं, इसका शाब्दिक अर्थ है दस कुमारों का चरित्र, यानी इसमें मगध के राजकुमार राजवाहन और उनके नौ साथियों की साहसिक यात्राओं और उनके अनुभवों का वर्णन है।
1: बिल्कुल, और ये जो दस कुमार थे इनके नाम राजवाहन, अपहार वर्मन, उपहार वर्मन, अर्थपाल, प्रमति, मित्रगुप्त, मंत्रगुप्त, विश्रुत, सोमदत्त और पुष्पोद्धव, ये दसों कुमार अलग अलग दिशाओं में जाते हैं यात्रा के लिए। अलग अलग और विचित्र अनुभव पाते हैं, प्रेम में पड़ते हैं और फिर अंत में सभी एक साथ मिलते हैं। और किस तरह की थी इनकी यात्राएं और किस तरह के इनके अनुभव रहे, वो अपने आप में दश कुमार चरित्र को एक बहुत ही मनोरंजक और बहुत ही संस्मरणात्मक एक चरित्र तो बनाते ही हैं। साथ ही साथ इसमें जितने भी वर्णन हैं वो अपने पद लालित्य के लिए और साथ ही साथ तत्कालीन समाज के यथार्थवादी चित्रण के लिए भी जानी जाती है।
0: और इस जो ग्रंथ की बात कर रहे हैं हम, तो ये ग्रंथ जो है वो तीन भागों में विभाजित है। जैसे पूर्व पीठिका, जिसमें इसमें कुमारों के जन्म, उनकी शिक्षा, उनके बिछड़ने की कथा है, और दस कुमार चरित्र यानी उसका जो मुख्य भाग, इसमें आठ कुमारों के अलग अलग अनुभवों का वर्णन है। और उत्तर पीठिका ये ग्रंथ का समापन का भाग है, जिसे बाद के लेखकों द्वारा पूर्ण किया गया माना जाता है।
1: बिल्कुल, और जो इसका अंतिम भाग है उसमें विश्रुत की कहानी से के माध्यम से पूरे जो उसमें शासन व्यवस्था थी उस पर भी प्रकाश डाला गया है। वैसे दंडी की ये प्रारंभिक रचना मानी जाती है, लेकिन इसको संस्कृत का पहला गद्य काव्य भी माना जाता है दंडी का। और छठी और सातवीं शताब्दी में जब इन्होंने संस्कृत गद्य काव्य की रचना की थी तो अपने आप में ये एक बहुत महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, क्योंकि इसमें एक बात और थी कि जिस तरह से उन्होंने वर्णन किया है ऐसा लगता है वो सारी घटनाएं हमारे सामने ही घट रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये यथार्थवादी चित्रण तो है ही, चाहे उस समय के समाज का हो या कूटनीति का हो। और उसके साथ ही कई जगह पर उन्होंने व्यंग्यात्मक चित्रण किया है जो अपने आप में उनके संस्कृत जो साहित्य की रचना की विलक्षणता है उसको भी दर्शाती है। राजाओं, मंत्रियों और आम नागरिकों के जीवन का भी जीवंत विवरण है, और समाज में जो उस समय पर व्याप्त भ्रष्टता थी उस पर भी दश कुमार चरित एक करारा व्यंग करता है। वैसे दंडी की भाषा थोड़ी जटिल मानी जाती है लेकिन आकर्षक भी है, पात्रों की चतुराई को भी दर्शाती है और साहस को भी बड़ी खूबसूरती से हमारे सामने लाकर रखती है।
0: और दंडी ने इसमें श्रृंगार, हास्य और अद्भुत रसों का ऐसा संरक्षण किया है कि आज भी ये पाठकों को मंत्रमुग्ध कर देता है।
1: तो बिल्कुल, अगर आपको भी मौका मिले तो बिल्कुल मत चूकिएगा महाकवि दंडी द्वारा रचित दश कुमार चरित को पढ़ने से। उस समय की समाज व्यवस्था को जानने का ये एक बहुत ही अनोखा माध्यम है, और जब इसे पढ़ेंगे तो अपने आप को उसी कालखंड में पाएंगे, इसमें डूब जाएंगे गहरे तक। लेकिन हाँ, इसका हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है, उसको आराम से आप आज की तारीख में पढ़ सकते हैं। अगर आपको संस्कृत नहीं आती है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और उस समय की जो खूबसूरत बातें हैं उनको भी अपने जीवन में अगर आप उतार पाएं और उस समय के समाज से कुछ सीखकर आज के समाज को बेहतर बनाने का प्रयास कर पाएं, तो वही इस रचना की सार्थकता होगी। तो बातें हम आपसे शेयर कर रहे हैं मॉर्निंग।

0: इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में आप बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र पर और सुनिए ये प्यारा सा खूबसूरत गीत जो कि है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है
1: कह

0: और श्रोताओं, शहर में स्पेशल की बात करें तो आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस सप्ताह जो है वो शुरू हो चुका है रक्तदान से।
1: और बिल्कुल, अब जो ये हम काम की बात कर रहे हैं, नर्सेस की जब बात आई है तो एक बात और सामने आती है प्राथमिक चिकित्सा की। वैसे तो हम अपने घर पे भी फर्स्ट एड हमेशा तैयार रखते हैं, और आज खास तौर पर जब रेड क्रॉस डे है, थैलेसीमिया डे है, तो जो हमारा खून है यानी रक्त है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है हमारी जिंदगी को बचाने में। और जब भी कभी कोई दुर्घटना हो जाती है तो ऐसे में सबसे पहले जरूरी हो जाता है कि अगर हम रक्त का प्रवाह हो रहा है तो उसको रोक लें, और जो मरीज है उसका प्राथमिक उपचार कर लें। तो ऐसे में आप अपने घर पे भी किट रख सकते हैं, और आसपास जो भी नर्स की तुरंत सेवा मिले या कंपाउंडर की सेवा मिले तो सबसे पहले प्राथमिक चिकित्सा के तौर पर उसको अवेल कर सकते हैं। तो अगर हम प्राथमिक चिकित्सा के मुख्य घटकों की बात करें तो उसमें सबसे मुख्य है 3 P। पहला, प्रिजर्व लाइफ यानी हमारे जीवन को बचाना। दूसरा, प्रिवेंट फर्दर हार्म यानी कि स्थिति को बिगड़ने से रोकना। और तीसरा है टू प्रमोट रिकवरी यानी कि ठीक होने में सहायता।

0: करना। और इसके अलावा एक अच्छा प्राथमिक चिकित्सा किट जो आप हमेशा अपने घर में रख सकते हैं, और आपातकालीन स्थिति का जो त्वरित आकलन किया जाता है यानी असेसमेंट किया जाता है, वो भी इसके अनिवार्य हिस्से बनते हैं।
1: और जो प्राथमिक चिकित्सा किट होता है उसमें पट्टियां, रोगाणु रहित और एंटीसेप्टिक वाइप्स होते हैं, कैंची होती है, दस्ताने होते हैं, थर्मामीटर होते हैं, जो कि हमें प्राथमिक उपचार में बहुत ही सहायता करते हैं। श्रोताओं,
0: और साथ ही इसमें एक ABC का भी प्राथमिक चिकित्सा में बहुत ध्यान रखना होता है,
1: यानी एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन।
0: तो बिल्कुल, अगर मरीज के आसपास हवा बिल्कुल सही ढंग से रहे, वो सांस सही ढंग से ले पाए और हवा का संचार यानी सर्कुलेशन सही ढंग से हो पाए, तो फिर प्राथमिक चिकित्सा और भी ज्यादा कारगर हो सकती है। और उसके बाद जैसे भी हो तुरंत नजदीकी अस्पताल रोगी को ले जाए ताकि जल्दी से जल्दी पूर्ण उपचार मिल सके। तो ये तो बात हुई हमारी काम की बात आज के मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में। और भी बातें आपसे शेयर करेंगे, किन लोगों का संबंध है आज के खास दिन से, वो भी आपको जरूर बताएंगे, लेकिन इस प्यारे से गीत के बाद।

0: श्रोताओं, आज जयंती विशेष पर हम याद कर रहे हैं भारतीय इतिहासकार और ब्रिटिश भारतीय इतिहास और भारतीय आर्थिक इतिहास के जानकार तपन राय चौधरी को। 8 मई 1926 को जन्मे तपन राय ने श्रोताओं कई पुस्तकें लिखी थी, जिसमें द वर्ल्ड इन अवर टाइम, बंगाल अंडर अकबर एंड जहांगीर और बंगाल लामा है। साल 2007 में श्रोताओं इन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था और 26 नवंबर 2014 को इनका निधन हो गया था।
1: श्रोताओं, आज ही के दिन उड़ीसा के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक गोपबंधु चौधरी का जन्म हुआ था 1895 में। भूदान आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी और जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था तब इन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दिया और इस आंदोलन में शामिल हो गए और तब तत्कालीन अंग्रेज सरकार ने उन्हें उड़ीसा में अकाल पड़ने के समय सहायता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने सत्याग्रहियों के प्रशिक्षण के लिए कटक के पास अलाका आश्रम की स्थापना की और खुद 6 साल यहां रहकर विभिन्न रचनात्मक कार्यों को आगे बढ़ाया और नमक सत्याग्रह में उन्होंने अपने प्रदेश का नेतृत्व किया और सन 1930 में ये गिरफ्तार कर लिए गए थे। तो ये थे हमारे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी गोपबंधु चौधरी।
0: और आज पुण्यतिथि के अवसर पर हम याद कर रहे हैं भारत के मशहूर ध्रुपद गायक जिया फरीदुद्दीन डागर जी को। इन्होंने संगीत की शिक्षा श्रोताओं अपने पिता उस्ताद जियाउद्दीन खान साहब से ली थी और पिता के देहांत के बाद अपने बड़े भाई से उन्होंने सीखना जारी रखा। ये उस परिवार से थे जिसने 19 पीढ़ियों तक ध्रुपद गायकी को आगे बढ़ाया था और 1994 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया था।
1: साथ ही साथ श्रोताओं, आज ही के दिन निधन हुआ था सन 1982 में आत्माराम रावजी देशपांडे का। मराठी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे और इनके प्रसिद्ध संग्रह रहे फुलवात, भग्न मूर्ति, निर्वासित चीनी मुलास, दशपदी। साल 1977 में इन्हें दशपदी के लिए साहित्य अकादमी का मराठी पुरस्कार मिला था।
0: और आज हम याद कर रहे हैं भारतीय क्रांतिकारी वासुदेव चापेकर को, जिनकी आज पुण्यतिथि है। ये और उनके भाई दामोदर हरी चापेकर और बालकृष्ण चापेकर भी अपनी शहादत लेकर भारतीय इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ गए श्रोताओं, और ये तीनों चापेकर बंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं। 1897 में श्रोताओं पुणे में एक भयंकर ब्यूबोनिक प्लेग फैला था। ब्रिटिश सरकार ने प्लेग रोकने के नाम पर वॉल्टर चार्ल्स रैंड को प्लेग कमिश्नर नियुक्त किया था और रैंड और उसके अधिकारियों ने पुणे के निवासियों के साथ बेहद ही क्रूर व्यवहार किया और इस अपमान का बदला लेने के लिए चापेकर बंधुओं ने रैंड की हत्या की योजना बनाई। इसमें दामोदर चापेकर को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके लिए गणेश शंकर और रामचंद्र द्रविड़ नाम के दो भाइयों ने मुखबिरी की थी और इसी विश्वासघात का बदला लेने के लिए वासुदेव चापेकर ने महादेव रानाडे के साथ मिलकर द्रविड़ भाइयों की हत्या कर दी थी और इस आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया और आज ही के दिन यानी 8 मई 1899 को यरवदा जेल में उन्हें फांसी दी गई।

भारत की प्रसिद्ध ठुमरी गायिका जिन्हें ठुमरी की रानी भी कहा जाता है, उनका जन्म हुआ था 1929 में और इनके प्रारंभिक संगीत गुरु थे पंडित सरयू प्रसाद मिश्र। वैसे मात्र 9 वर्ष की आयु में ही इन्होंने संगीत के अलग अलग शैलियों की शिक्षा प्राप्त की थी और तब इनके गुरु रहे

0: पंडित श्री चंद्र मिश्र। वैसे खनकती हुई आवाज जहाँ उन्हें बिल्कुल सबसे अलहदा और खास बनाती है, वहीं उनकी ठुमरी, कजरी और चैती में जो बनारस का खास लहजा आता है, वो उनके गायन को और भी अलग सा बना देता है और श्रोताओं में विशेष आकर्षण पैदा करता है।
1: और गायकी के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें साल 1972 में पद्मश्री और साल 1979 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था श्रोताओं, और संगीत नाटक अकादमी द्वारा भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। और उनकी कजरी बरसन लगी बहुत ही फेमस हुई थी।

0: और कार्यक्रम में अब बात सांस्कृतिक समाचार की। तो श्रोताओं, कल जैन व्यू में प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। वार्षिकोत्सव में विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार वितरित किए गए।
1: और अब नजर डालते हैं खेल खबरों पर। आईपीएल के 19वें सीजन में कल खेले गए मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हराया और ये मैच लखनऊ में ही खेला गया था। वहीं आज का मैच खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में। वहीं बात करें अगर तीरंदाजी की, तो तीरंदाजी के विश्व कप के फाइनल में भारत और चीन की टीम्स स्वर्ण पदक के लिए आपस में भिड़ेंगी। कल भारतीय महिलाएं दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में पहुंच चुकी हैं। ये थे सांस्कृतिक समाचार और अब आपको सुनवाते हैं नमस्कार का समापन गीत।

0: इसी समापन गीत के साथ आज का नमस्कार बस यहीं तक। आपका आज का दिन अच्छा ही नहीं गुजरे, बहुत अच्छा, करते हैं यही शुभकामना नमस्कार की पूरी क्रिएटिव टीम से की ओर से। और आपके आज के नमस्कार में आपके हम सफर थे मैं स्वाति भंसाली,
1: मैं सूफिया खान, और दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार, नमस्कार।

श्रोता अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं विविध लोक कलाकारों को कार्यक्रम लोक संगीत में। लोक संगीत में आइए सबसे पहले सुनते हैं कविता शर्मा की आवाज़ में ये रचना।

श्रोताओं, आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र से अभी आप सुन रहे हैं लोक संगीत। लोक संगीत में अभी आपने सुना लीला भाटी की आवाज़ को। आइए अब आपको सुनवाते हैं मुकेश चौधरी और महिराज की आवाज़ों में ये लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम व्यू 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्स पर। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए सुगम संगीत। सुगम संगीत का आगाज़ किया है हमने पंकज उदास की इस रचना के साथ।

श्रोताओं, सुगम संगीत में अभी आपने सुना चंदन दास की आवाज़ को। आइए अब आपको सुनवाते हैं पंकज उदास की इस रचना को।

पीछे नजर ना लगे किसी की, जिए हजारों साल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत में चंदन दास की रचना को। ये अगली और आखिरी पेशकश भी चंदन दास की आवाज़ में।

चंदन दास की इस आवाज़ के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए फिल्म संगीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म बाजीगर से ये गीत, जिसमें आवाजें थी पंकज उदास की, शब्द थे रानी मलिक के, संगीत था अनु मलिक का।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म बॉम्बे से ये प्यारा सा गीत, जिसमें स्वर थे हरिहरन और कृष्णमूर्ति, संगीत था ए आर रहमान और शब्दों से सजाया था महबूब।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म गुलाम से ये प्यारा सा गीत, जिसमें युगल आवाज़ें थी कुमार सानू और अलका याग्निक की, शब्द थे समीर और संगीत था जतिन ललित का।

अभी आपने सुना फिल्म कभी हाँ कभी ना से ये गीत, जिसमें आवाज़ है कुमार सानू और संगीत था मजरू, शब्दों से सजाया था जतिन ललित ने।

अभी आपने सुना फिल्म इम्तिहान से ये गीत, जिसे गाया था कुमार सानू ने, लिखा था फैज़ अनवर ने, संगीत ने सजाया अनु मलिक ने।

अभी आपने सुना फिल्म तेरी कहानी याद आई से ये गीत, जिसे गाया था कुमार सानू ने, संगीत थे कुमार सानू ने।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम यही समाप्त होता है। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। अब प्रस्तुत है लोक संगीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत।

पहले मैं था, अब मैं हम की लैंग्वेज में बात करूंगा, क्योंकि चित्रा जी से मुलाकात हो गई और जिंदगी में भी साथ, स्टेज पे भी साथ, रिकॉर्डिंग में भी साथ, साथ ही साथ, और उन दोनों में एक फिल्म आई साथ साथ, जिसके गाने बहुत मकबूल हुए। तो कुलदीप सिंह का म्यूजिक था उसमें, उसमें ड्यूट भी थे। इस वक्त मैं सोलो ही गाऊंगा।

0: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 1 बजे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के तहत हैदराबाद में आज चौथी इन्वेस्टर मीट आयोजित की जा रही है। राज्य में कृषि, बागवानी और एग्री बिजनेस के क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए ये मीट रखी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का इसमें भाग लेने का कार्यक्रम है। 23 मई से जयपुर में होने वाली ग्राम 2026 के लिए दिल्ली, बेंगलुरू और अहमदाबाद के बाद ये चौथी प्रमुख इन्वेस्टर मीट है। इसमें राजस्थान को एग्री हब बनाने और खेती के लिए नई तकनीक लाने सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को जयपुर सहित प्रदेश के अस्पतालों में पर्याप्त अग्निशमन सुरक्षा के बारे में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। कार्यवाहक सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस विपिन गुप्ता की खंडपीठ ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए। अदालत ने कहा है कि अगर किसी अस्पताल में समुचित अग्निशमन प्रणाली नहीं पाई जाती है तो संबंधित सीएमएचओ की ओर से तय टाइमलाइन के साथ उस अस्पताल को नोटिस जारी किया जाए। अदालत ने कहा कि प्रदेश के हर अस्पताल में नियमित रूप से फायर ड्रिल आयोजित की जानी चाहिए। रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलगाड़ियों को उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में बदलने की प्रक्रिया इस साल अगस्त महीने में शुरू हो जाएगी। नई दिल्ली में कल एक समीक्षा बैठक में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 40 साल पुरानी यात्री आरक्षण प्रणाली को नई प्रणाली में बदलने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस दौरान यात्रियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2002 में इंटरनेट आधारित टिकट सेवा शुरू होने के बाद से लगातार डिजिटल परिवर्तन को अपनाया है। इसके तहत पिछले साल जुलाई में रेल वन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। रेल वन ऐप में अब AI आधारित कन्फर्मेशन की संभावना की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। ये नई सुविधा इस साल की शुरुआत से ही लागू की गई है। इसे लोगों ने काफी पसंद किया है। इस पर वेटिंग टिकट के कंफर्म होने के अनुमान की सटीकता पहले के 53% से बढ़कर अब 94% तक हो गई है। इंडिया AI और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए एक समझौता किया है। नई दिल्ली में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी AI के जिम्मेदार और व्यापक प्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा बेहतर बनाने के लिए की गई है। मंत्रालय ने कहा कि इस सहयोग के तहत दोनों संस्थान AI समाधान के लिए अपनी क्षमताओं के साथ साथ परिषद की चिकित्सा अनुसंधान विशेषज्ञता का लाभ लेंगे। केंद्र सरकार ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के एक वीडियो को फर्जी बताया है। इस वीडियो में उन्हें ये कहते हुए दिखाया गया है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ संघर्ष में 4 राफेल विमान खो दिए। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक यूनिट ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो AI से बनाया गया एक डीप फेक है और इसे पाकिस्तान समर्थित सोशल मीडिया अकाउंट की ओर से गलत सूचना फैलाने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। सरकार ने नागरिकों से इस तरह की सामग्री पर विश्वास नहीं करने और हमेशा सरकारी स्रोतों से इसकी पुष्टि करने का आग्रह किया है। इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत कल लगाई जाएगी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सभी अदालतों, उपभोक्ता मंचों और राजस्व न्यायालयों में लोक अदालत लगेगी। इनमें आपसी सहमति से ट्रैफिक चालान, मोटरयान दुर्घटना, चेक बाउंस, बैंक ऋण और घरेलू विवादों सहित अन्य राजीनामा योग्य मामलों का निपटारा किया जाएगा। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले जागरूकता कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है। इसके लिए प्रदेश में भी योग शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कोटपुतली बहरोड जिले के पावटा के उच्च माध्यमिक विद्यालय में योग शिविर रखा गया। इसमें विद्यार्थियों को विभिन्न आसनों का अभ्यास करवाया गया, साथ ही उन्हें दिनचर्या में नियमित रूप से योग को शामिल करने के लिए प्रेरित किया गया। आज विश्व रेड क्रॉस दिवस है। इस साल की थीम मानवता में एकता रखी गई है। रेड क्रॉस एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो युद्ध और हर आपदा के समय लोगों की मदद के लिए तैयार रहती है।

इस गीत के साथ ही सुगम संगीत यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। अब आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है कृषि जगत।

कृषि जगत प्रोग्राम सुन वाला सगला किसान भाइया ने दिनेश राणे जरा घने मानसू राम राम और नमस्कार सा। किसान भैया इन दिन आप खेती बाड़ी रे जी का काम काज है वे लघु ही आप करिया करा और किसान भाई री कोशिश आईज रहा है कि भाई टाइम माते जो भी आप काम करा वो बढ़िया रहे और सब्जी री पैदावार भी किसान भाई खूब खेतर महीने लिया करे है। करेला बावे है, टिंडा बावे है, आल भी बावे है, तरका आकड़ी है, खीरा का आकड़ी है, भात भातरी जी की सब्जियां है किसान भाई आपके खेत्र में ने बाया करे। किसान भैया आज अपा जानकारी लेवा के भाई बैंगनरी उन्नत जी की खेती है वह आपा की कर सका। बैंगनी खेती वास्ते सगलों से पहला अपन सामी बात आवे कि भाई मिट्टी जी की है वह किन तरह की होनी चाहिए, तो मिट्टी जल निकास री अच्छी व्यवस्था वे वह मिट्टी होनी चाहिए। बलुई दोमटू लेर भारी मिट्टी जिन महीने कार्बनिक पदार्थ री जी की पर्याप्त मात्रा है वह होनी चाहिए और भूमि री जी को पीएच मान है वो 5.5 ले 6.0 रे बीच रे मैंने वनो चीजे। टेमो टेम बैंगनी खेती रे मैंने सिंचाई रो भी आपने उचित प्रबंधन राखनो पड़े। हमें बात आवे कि भाई किसान भाई बैंगनी खेती करनी चाहे तो किसी किसी उन्नत किस्म है आपा जानकारी लेवा के भाई बैंगन रमैने फलारो रंग और पौधा रे आकार रमैने भी बहुत भांत भांत री जिकी विविधता है आ मिलिया करे। इनरो फल बैंगनी भी हुआ करे, सफेद भी हुआ करे, हरो गुलाबी और धारीदार रंगरा भी बैंगन आपने हुआ करे। रिंगनरी नेरी नेरी आपरे किस्मा हुआ करे। कटी फल गोल वे, कटी अंडाकार वे, कटी लंबो वे, कटी नाशपति आकारो भी हुआ करे। स्थान रे अनुसार बैंगनो जिको रंग है आकार है इनरो भी आपरे नेरो नेरो जिको मेतु है हुआ करे। बैंगनरी किस्म री आप बात करा किसान भाया, स्वर्ण शक्ति है, स्वर्ण श्री है, स्वर्ण मणि है, स्वर्ण श्यामली है, स्वर्ण प्रतिभा है, ए भात भात्री जी की किस्मा है बैंगनरी हुआ करे। और किसान भाई कोशिश आपरे आइज करे कि भाई मिट्टी रे अनुसार आपरे जलवायु रे अनुसार किस्मा आपरे काम में लेवे और ज्यादा से ज्यादा जी को उत्पादन है क्षेत्र में ने लिया करे। बैंगन रे बीजरी जी को बुआई रो बगत है वो भी अपने अटे नेरो नेरो हुआ करे। कई किसान भाई आपरे शरदकालीन फसल वास्ते जुलाई अगस्त में लेवे और ग्रीष्मकालीन जी की फसल है उन लाला महीना में लियो है और हमें वर्षाकालीन जी की फसल है तो इन हमें अपने मई रे महीने आप बुआई करे आपरे किसान भाई और कोशिश आ रहा है भाई जो भी हेक्टर है उन महीने बैंगन रो उत्पादन लेवे तो सामान्य किस्म आपरे काम लेवे जो 250-300 ग्राम और जो की संकर किस्म आपरे लेवे तो वह 200-250 ग्राम जो को बीज है वो एक हेक्टर है खेतरे वास्ते पर्याप्त होया करे। सगले से पहला पौधशाली जी की बुआई है वह किसान भाई आपरे करे तो ट्राई क्वार्टर में 2 ग्राम प्रति किलोग्राम या 22-2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर से बढ़िया उपचारित करे और बुआई जी की है वह 5 सेंटीमीटर दूरी माते आपरे बढ़िया बनान लाइनर मायना करनी चाहिए और बीजों बीज जी की दूरी है और बीज जी की गहराई है वह 0.5-1.0 सेंटीमीटर बीच मायने राखनी चाहिए। हमें बात आवे कि भाई खाद और उर्वरक भी आपने बैंगन की खेती में देना पड़े। अच्छी पैदावार वास्ते 200-250 किलोग्राम प्रति हेक्टर दर सो जी की अपनी शड्योड़ी जी की गोबर है खेतर में आपने प्रयोग करे। इंद्र हाथ हाथ 120-150 किलोग्राम नत्रजन है, 260-350 किलोग्राम यूरिया है, 60-75 किलोग्राम फास्फोरस जी को है काम में लेवे और कोशिश आपने किसान भाई ने आ रखनी चाहिए कि भाई ज्यादा से ज्यादा आपने जी की जैविक खाद है इंद्र भी उपयोग आपने खेतर में करे और आपकी जी की फसल उत्पादकता है उन महीना वृद्धि करे। किसान भैया आपने जानकारी दी हमें सुनावा आपने बढ़िया सी गीत रचना।

किसान भाइया आपा जानकारी ले रहा हा कि भाई बैंगनी जी की उन्नत खेती है वह आपा किन तरह से करिया करा तो हम आपा जी बात करी भाई खाद और उर्वरक भी आपा देवा बुआई वगत रे महीने और पौध रोपण री और देखरेख भी आपा ने राखनी बहुत जरूरी हो जाया करे। बुआई रे 21 ले 25 दिन बाद रे महीने पौधा जी का है वह लागन वास्ते तैयार हो जाया करे तो आपा अपना जी का खेत है वीरे महीने बढ़िया जो हमें महीनो महीनो चल रही है तो आपा बढ़िया रोपाई कर दा बढ़िया पैदावार वास्ते आप रे उचित जी की दूरी है वह राखनी बहुत जरूरी है ताकि कहीं है कि पौधो आप रे फैले और जिका रिंगना है बैंगन जी ने आपा कहवा वह आप रे बढ़िया लागिया करे। बैंगन रो जी को फल है वो मुलायम और चमकदार अवस्था में हुजा उन वक्त आपा ने उंडी जी की तुड़ई है वह आपने करनी चाहिए। तुड़ई रे महीने देरी करने से फल कहीं वह सख्त हो जावे और उन जी को रंग है वो भी बदरंग हो जावे और साथ साथ एक बात आ है कि भाई बैंगन पाकने लाग जा तो उन महीने बीजों रो जी को विकास है वो भी हो जाया करे तो खाने वास्ते जिका बाजार है मैंने मान लो आपा भेजा तो मांग जी की है वह कम हो जाया करे। क्यों मतलब वो है कि भाई काचो वे बढ़िया उन वक्त किसान भाई की कोशिश रहे कि भाई पौधा मतु तोड़ पड़ा और बाजार में ले जावे ताकि उत्पाद रो जी को उचित मूल्य है वो बैंगन री फसल में मिलिया करे और थोड़ी करियर बाद मैंने फलरी जी की छंटाई अपा करा और मार्केट वास्ते मान लो ले जावा तो एक उचित आकारी जी की टोकरी है वीर मैंने आपने भरन ले जानो चाहिए जिन सो कही है कि और जी को बैंगन है खराब नहीं होवे इंडी जी की गुणवत्ता है इंडी जी की चमक है बनोड़ी दे। किसान भाई आ ही जानकारी के भाई आपा बैंगन री उन्नत जी की खेती है वह आपा की कर सका। कृषि जगत प्रोग्राम रो भगत पूरो वेरियो है दिनेश राणे जाने शीख दिराओ राम राम।

0: पूनम जी, एक लोकगीता बाबत एक छंद है। लोकगीत ए प्राण आपणी संस्कृति रा, उघड़े बे चित्राम जन जीवन री कृति व्रति रा। आ गीता रे माए आपणो जीवन बोले, पढ़े बोल जद कान जान बो इमृत घोले। जीवन नीजू प्रकट हुए आई गीता रे पाण, अतीत रो दर्शन हुए पुरखा पाण अपाण।
1: बिल्कुल सही कहे शीतल। और अपने राजस्थान री माटी रे मायने लोकगीत तो रचिया बसिया है, और इन गीता ने पीढ़ी दर पीढ़ी जीव तो राखण रो काम करिया करे है अपन अठेरा लोक कलाकार। व्यारे सुरा रे मायने थार री तपती रेत, ढोल री थाप और मादल रो मीठो ना दे जिको बोलिया करे। ए लोक कलाकार सिर्फ गायक को नहीं होया करे, वे राजस्थानी संस्कृति रा चालता फिरता संग्रहालय है। इनारे कंठ रे मायने इतिहास सुर में रेगिस्तान री आत्मा बसिया करे है। और अठेरा लोक गायक कलाकार न्यारी न्यारी शैलिया रे मायने लोक गायन है जिको करिया करे है।
0: बिल्कुल, और आपको जीवन यापन है जको वो गायन सुई होया करे। और बहुत सारी जातियाँ हैं अपन ऐठे, जहाँ लंगा मांगणियार हो गया, भोपा भोपी हो गया, कलावंत है, मिरासी है, ढोली है, दमामी है, खारेड़ है, बोघर है, बाबर है, डोसावसी, गुणसार, फुलवाणी, बोमणिया, भट्टिका, और भी कई अड़ी जातियां हैं जो अपने अठे रची बसी है। और वह सदियां सु जो है वाना पुरखा भी पुरखारी जो संस्कृति है, विरासत है, वाने आगे लेन जा रहा है। और गीता सुई जो है अपनी संस्कृति ने भी जो है दुनिया रे सामी राख्या करे है, और आप गुजर बसर भी करया करे
1: बिल्कुल
0: है।
1: सही क्यों शीतल है। वीर रस रे माध्यम से हो गया, या कोई भी मांगलिक गीत हो गया, कोई भी मौके पर तीज त्योहार रा गीत हो गया, वे सब गाने आप जिको लोग मनोरंजन करे करो। और इनके साथ ही अपने लोक संस्कृति ने जिको विश्व पटल पर है जिको मंच दिलाया करे।
0: बिल्कुल, और साथ ही साथ पहली तो यहाँ होतो कि खाले खाली जो है ये जातियाँ गांव ठोड़ में ही जो है गानों गावती या गीत गावता हा, पर आजकल तो खासकर लंगा मांगणियारी आप अगर बात करा तो बहुत ही कह सका हर हर जो भी फंक्शन होया करे है, शादी ब्याह है, हमारी जान बन चुकिया है, बट हमारा गीत है जका बहुत ही प्रसिद्ध हो चुका है, नामी हो चुका है। इन वास्ते आजकल तो फ्यूजन म्यूजिक रो भी जमानो है, वारे साथ भी जो है अनजोड़ और तरह तरह रा लोकगीत है जका वह गाई जावे है और बनाया जा रहा है।
1: बिल्कुल सही कहो शीतल। देखो ये लंगा मांगणिया रे आप बात करी नहीं तो एण जी का लोकवादी यंत्र होया करे, वे एण गीता ने और भी मधुर और काना में कर्ण प्रिय बना दिया करे। सुनन में इतना चोखा लागे नहीं एण जी का वाद्य यंत्र री आवाज होवे, और इनके साथे जो एण सुरा रा बोल होया करे, वे एण दोनों रो मिलाप है जी को गीत ने बहुत ही चोखो बना दिया करे।
0: बिल्कुल, खासकर कामायचा होएगो, चंग है, और
1: खड़ताल
0: बीन
1: है।
0: खड़ताल है, बीन री धुन कह दियो, एक कई तरह का वाद्य यंत्र है जो आर्य गीता ने और भी मधुर बना दिया करे है।

0: के कालबेलिया समुदाय में आपने भी ध्यान है कि घुमंतु जाती है, आज अटन काले वटे तो शिक्षा तो कोसो दूर रही हूँ, शिक्षा तो हो ही नहीं पाई मारी, पर परिवार में एक एडी शिक्षा मिली है जो आज मैं इन मंच माते हूँ, आप लोगों के सामने जो डांस और सिंगिंग री कला हमारे लिए बहुत महत्व रखे, हमारी सबों बड़ी शिक्षा है
1: जी। आशा जी, आप री कला रे बारे में बात करा तो आप नृत्य और गायन दोनों करिया करो हो, तो बात सब पहली नृत्य री करा, तो आपने कालबेलिया नृत्य तो विरासत में मिलो ही है, तो इन शुरुआत आप कौन सी उम्र करी और पहली बार जब मंच रो सामनो करो तो कैडो का अनुभव रहे हो?
0: कालबेलिया नृत्य हमारे विरासत में मिली उड़ो, मैं बचपन कर रही हूँ हमारे खून में के मारी माँ बहना मो सब पूरा परिवार ही वही काम करा, और शुरुआती में छोटे छोटे मंच माते जैसे होटला में प्रोग्राम करनो और शादी ब्याहरा प्रोग्राम करना, पचे धीरे धीरे मैं 2006 में बारलो टूर करियो, अंतर्राष्ट्रीय टूर करियो, उन्हें बाद में मैं कंटिन्यू बारला टूर करवाने लगी।
2: अच्छा, तो कालबेलिया के अलावा भी आप दूजा राजस्थानी लोक नृत्य वे भी करिया करो, तो उन्हारे बारे में भी थोड़ी सी जानकारी मन श्रोतावा ने दिला दो।
0: बिल्कुल, जो राजस्थान री पारंपरिक जो जितना भी नृत्य है वो मैं करूं, जैसे तेरे ताली घूमर चरी भवाई और राजस्थानी जितना भी फोक कालबेलिया अलावा मैं हैंग डांस करूं।
2: अच्छा, तो अभी आप सीखिया?
0: नहीं सीखिया नहीं, बस और मतलब पारंपरिक ही मैं कर रही हूँ सब।
2: अच्छा
1: हाँ। जी, तो अब गायन री बात करा उनसु पहली एक और गीत है जो आप आवाज में सुना दो।
0: बिल्कुल, ओ बनसा बेगेरा बुलाया थे मुड़ा किस विद आया, ओ

0: एक बार फिर सुस्वागत है आप सबा रोग कार्यक्रम गणगौर रेमाए। और आज आपने साथे है अंतर्राष्ट्रीय कालबेलिया नृत्यांगना और लोक गायिका आशा सपेरा जी। तो आशा जी, जब बात गायन री करा तो आपरे इन लारी शुरुआत कद हुई और की कर हुई और पहली बार मंच पर गाने रो मौको की कर मिलियो, क्योंकि आप पहली नृत्य में हा तो गायन में आने री कद सोची?
1: कि कालबेलिया समुदाय का गाना जो है बहुत परंपराओं मारा पिताजी मारा माताजी गाता आ रिया है और इन

0: जी
1: बहुत
0: आशा
1: बढ़िया।
0: जी, आपकी आवाज तो इतनी सुंदर है ही है, और आपके गाना में जो कि बीनरी धुन होया करे नी, वह भी मन बहुत चौकी लाग्या करे,
1: बहुत
0: गाने में
1: धन्यवाद,
0: चार चांद लगा दे वे है।
1: बिल्कुल बहुत
0: तो
1: धन्यवाद।
0: आप जब स्टेज पर लाइव गाओ या स्टूडियो में रिकॉर्ड करो, तो उनमें आप लोग की तो फर्क लाग्या करे।
1: मैंने बहुत फर्क लागे देखो, हालांकि एक ओरिजिनल आवाज भी होवे और एक रिकॉर्ड करन भी गावा, तो मारो तो वही कहवण है कि हमेशा जो भी लोग मैं कुछ भी गानों गाऊं, गॉड गिफ्ट है मारे लिए और भगवान की देन है कि मैं जदे भी गाऊं तो वे सब लोग मैंने सगड़ा यही पूछे कि आशा जी आप तो बिना स्टूडियो बिना माइक की आपरी तो वॉइस बहुत है।
0: तो आप जब गायन और नृत्य दोनों की प्रस्तुति एक साथ करया करो, तो सामंजस्य के कर बिठाओ हो, और जब हजारों लोग आपकी प्रस्तुति देख तालियां बजावे तो केड़ोक महसूस होए।
1: कि ऑडियंस एड़ी होवे कि मतलब आपने, मैं बताऊं कि मैं अभी जैसे गानों गा रही हूं तो मैंने वो ऑटोमेटिकली डांस भी आ जावला, केड़ी केड़ी ऑडियंस एडी बैठी रहे कि आप ऑटोमेटिकली झूम जावला बटे मन नेड़ो होवला कि डांस करता रहो गानों गाता रहो।
0: वो ऑडियंस कहती रहे वंस मोर वंस मोर,
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल।
0: बिल्कुल। अलग अलग देशों में भी आप प्रस्तुति दी हो, तो दर्शकों की प्रतिक्रिया के बारे में जो भी अनुभव आप रहे हैं वे भी मेरे साथ आप थोड़ा सा साझा करो कि आपने कैडो महसूस हुए। अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के दर्शक है।

0: अलग अलग प्रतिक्रिया देवे तो कई अनुभव आप रहे हो।
1: आज मैं मतलब देख लो कि मैं इंडिया रे, मैंने तो प्रोग्राम कर ही हूँ खूब सारा, पर मैं 100+ बाहरली कंट्री में भी प्रोग्राम कर लिया। अब लोगा ने बटे अपने म्यूजिक अपने गाना रो इतो ध्यान नहीं पड़े, पर वे बहुत बारीकियों इंजॉय और इन चीज ने समझे के कई गा रही है। बहुत मान एकदम मतलब शांत टोन सुने के कई गा रही है, और इन चीज ने बहुत ज्यादा फॉलो भी करे। कालबिलिया कल्चर ने बाहरला लोग बहुत ज्यादा रेस्पॉन्स देवे, और
0: अच्छा।
1: गाना गीत ने डांस ने।
0: तो अब तक आप कितना देश हरी है जकी यात्रा कर चुके, कट कट प्रस्तुति दे चुके हो, कोई खास देश है जका जटे आपने बहुत ज्यादा अच्छो लाग्यो है, बारे बारे में बताना चाहो।
1: देखो मैं मतलब आपने बताऊं कि अमेरिका तक मैं गई हूँ, तो 100+ 10 सारे महीने में प्रस्तुति दी हूँ। ज्यादातर मैंने इटली रे महीने में कम से कम 4 साल रही हूँ, 6 महीना बटे 6 महीना इंडिया। और मैं बटे रब काफी स्टूडेंट ने डांस सिखायो, गाना सिखाया, अपनी जो मारवाड़ी भाषा है वो भी सिखाई।
0: अच्छा, तो आपने कह रहे लगे जब आप बाहर विदेश राज्य का लोग है वह आप सिखाओ और वे अपनी संस्कृति ने अपना अपना वे, तो वी टाइम आपने कह रहे महसूस हुए।
1: मैंने बहुत प्राउड फील हुए कि जो बारला जी को वेस्टर्न कल्चर ने नहीं छोड़न, अपरो राजस्थानी कल्चर और मोस्टली कालबिलिया जो कल्चर है विनन अपना रही है, तो हमारे लिए बहुत प्राउड फील रही बात है।
0: बिल्कुल। तो थोड़ी सी जानकारी आप भी दिला दो कि आपकी कला से जुड़ा कौन कौन सा सम्मान और पुरस्कार है जिका आपने मिलोड़ा है और आपके पास सब सुख खास रिया है वे।
1: काफी पुरस्कार मिले हैं, मैंने बहुत सब पुरस्कार मिले हैं जिन्हों मैंने हर जगह जाऊं तो मैंने बहुत सम्मानित भी करे लोग, और पुरस्कार भी काफी मिले हैं।
0: बिल्कुल, आपने जो है सरकारी तरफ से भी कई तरह का पुरस्कार मिला है, विदेशी मंच माते पे भी आप बहुत सारा पुरस्कार है जगह जीत चुके हो, तो बहुत ही गर्व की बात है कि इतना सम्मानित व्यक्तित्व आज माने साथ इन स्टूडियो में है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप रोत। और अब देखो आप फिल्मा में भी जो है आपने गाने रो मौको मिलियो है, तो जगो गीत है खास आपने इन में मौको मिलियो गाने रो, तो उन रो अनुभव कैडो करियो, किन तरीके रो आप रो अनुभव हो कि फिल्मा में गाने रो कोई अनुभव अलग व्या करे या आप ज्या रोजाना जगह स्टूडियो में है गावता विण में कितो फर्क आपने लागियो।
1: एडो एक ही जो लारली मूवी आई थी जॉन अब्राहम री वेदा मूवी 2 साल पहली, विन टाइम मैंने डायरेक्टली वे ऑफर करियो, वे फोन करियो जो डायरेक्टर है वे खुद ही फोन करियो फिल्म का,
0: अच्छा।
1: कि आशा जी हमें आपरे दो लाइन चाहिए, होलिया में उड़े रे गुलाल री जो मानी रिमिक्स करा ला भेजे फ्यूजन रे हाथे और
0: अच्छा।
1: दूजे कलाकार बॉलीवुड रे हाथे। जद मैं उन गाने रा दो अंतरा विनाने दिया, और पचे वे पाचो मैंने फोन लगाया कि कही आप वीडियो शूट में भी हाथे आओला, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छे सुनेरो मौको रही हो के
0: हाँ।
1: एक ठीक है मैं आऊंगा
0: बिल्कुल, तो दो अंतरा सुना दो मन श्रोतावा ने
1: बिल्कुल।
0: भी।
1: और होलिया में उडेर गुलाल तो आपने ध्यान है कि मतलब होली रे टाइम वो गानों सब लोग सुने ही सुने,

0: बिल्कुल आशा जी, ऐडो लाग रही है कि जेठ महीना में भी फागण आएंगे हैं।
1: जी, और आप बतायो कि आप बहुत विदेशी स्टूडेंट है, आपरा और भी दूजा अठहरा भी जगह स्टूडेंट है, वाने भी आप सिखाया करो हो डांस, तो जब आप एक स्टेज परफॉर्मर रे तौर पर आपने देखो और एक टीचर रे तौर पर आपने देखो, तो दोनों री भूमिका में आपने कितो अंतर लाग्या करे और दोनों रो अनुभव आपरो क्या डोक रहा करे है?
2: देखो, स्टेज वाली लाइफ तो एक प्रोफेशनल हो जावे कि मैं एक गायिका हूँ और मैं परफॉर्म कर रही हूँ पब्लिक वास्ते, पर टीचर वालों एक अनुभव एड़ो रेवे कि विदेशी जिमें भी बारला लोग हैं और विदेशी सेलिया ने मैं सिखा रही हूँ नी, तो मैंने वो मोमेंट बहुत प्यारो लगे कि ए लोग कितनी बारीकी तरीके हर चीज ने फॉलो कर रही है। आज तक मैं बारला गोरा गोरिया ने 11,000 स्टूडेंट ने डांस सिंगिंग और मारवाड़ी भाषा सिखा चुकी हूँ।
0: अच्छा, तो जब आप भाषा की बात कर रहे हो तो आप तो मारवाड़ी भाषा वैन सिखाई, तो वैन सिखा व्याणी भाषा जो समझ में आपने कोई परेशानी है भाषा संबंधी कोई आई?
2: मारवाड़ी में कहावत है कि रंगत रो संगत है, जिनने जेड़ा भेड़ा रे वहां विनो थोड़ो किकर के जिकर गुड़ ज्ञान तो आई आई, तो पहली मने तो प्रॉब्लम होते कि मने इंग्लिश नहीं आवे सही ढंगू, हिंदी नहीं आवे, मैं कई करूला। पर बाद में धीरे धीरे मैं क्यों होई जो देखी लाग इंग्लिश में बात करनी, टूटी फूटी बोलो पर बोलो, धीरे धीरे धीरे धीरे अटे कई अपन जैसे इंडिया रे महीने किन्ने भी एकदम जजमेंट कर ला कि इन्हें तो हिंदी नहीं आवन इंग्लिश ही नहीं आवन बोल रही है, मतलब कितने जजमेंट हो जावे। पर मैं इन चीज ने मैं क्यों, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैंने तो कोई पता नहीं, ऊपर जान बेरो एनजी आवाज कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने बोलनी तो बोलनी, तो मैं टूटी फूटी बोलती बोलती बोलती, अबे देखो आज मैं इटालियन बोल दू, फ्रेंच बोल दू, स्पेनिश बोल दू, मतलब जटेरा जितना अंग्रेज आवानी बिना ने समझा सकूं, एक तो
0: अच्छा
2: कॉन्फिडेंस है भगवान दी देनु।
0: अच्छा
1: जी, तो आप रा जितना भी स्टूडेंट रहा में कोई एडो खास स्टूडेंट आप रो जो आपने लगे कि आप सीख रहे जो है बहुत ज्यादा नाम कमा रही है?
2: घनी कमायो जापानीज स्टूडेंट है मारी बारली, वह बहुत अच्छो नाम कमायो, इन्होंने लोग बारे अब बटू जापान वटे बुला रही है।
1: जी, राजस्थानी मधु मायूमी रे नाम सु आपा वाणे जाना हाँ, जापानीज आर्टिस्ट हैं, टोक्यो सु हैं वे और बहुत ही अच्छो नाम कमा रिया है, राजस्थानी संस्कृति ने बहुत फॉलो कर रिया है और हमारे डांस ने और गायकी ने भी लोग सराह रिया है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि बारला जगह स्टूडेंट है वह आपसू सीखने
2: बिल्कुल
1: आया और इतो अच्छो नाम आज कमा रिया है।
2: बिल्कुल
0: तो बिल्कुल आशा जी, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया आपकी कला और करियर ने किन तरीका से प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि आजकल तो देखो डिजिटल रो जमानो है, तो इनमें आपकी कला में कई प्रभाव आपने देखने मिल रहे हैं?
2: कि कहीं ना कहीं मैं राजस्थानी संस्कृति ने ज्यादा फॉलो करूं। देखो, एक हालांकि वेस्टर्न कल्चर होया करे, आजकल रा लोग डीजे पार्टी वगैरह में ज्यादा इंटरेस्ट लेवे, पर जो जो लोगों ने मने मने लगे कि भाई मैं प्योर एकदम अपने राजस्थानी कल्चर ने लेन जा रही हूं नी, तो इन लोगों बहुत प्यार है।
1: जी, और आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से काम भी जो आयाडा लोक कलाकार है वने ज्यादा मिल रही है, तो कह सका कि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कठिन कठिन
0: आपकी
1: अच्छो काम
0: पहचान।
1: भी कर रहे हो है आप
2: बिल्कुल
1: वास्ते।
2: बिल्कुल
1: तो आजकल की नई पीढ़ी रिमिक्स फ्यूजन और डीजे रे संगीत ने ज्यादा पसंद कर रही है, तो आपरी माटी रे गीता सु वने जोड़न रे वास्ते काई कर सको हो या काई कर रहा हो?
2: मारो तो यही कहना कि मैं हमेशा, मतलब जो रियल म्यूजिशियंस हैं, बाकी डीजे धमाकों थोड़ी मैं अलग रूं, बाकी रियल म्यूजिशियंस रे साथे हमेशा ये गाना जिंदा रखूं और गाऊं और आगे तक पहुंचाऊं, मारो कहना है।
0: तो बिल्कुल इनके साथ ही एक और गीत आप सुना दो मान श्रोता मन आपकी सुरीली सी आवाज में।
2: बिल्कुल जरूर, जदे अपने राजस्थान रे महीने बीन तोरण ने जावे नी शादी रे महीने, तो हंगू पेली तोरण रो

0: एक बार फिर सुस्वागत है सगली सखियारो कार्यक्रम गणगौर रमाई ने। और आज अपाने साथ है एक मेहमान आशा सपेरा जी, जिका अंतर्राष्ट्रीय लोक नृत्यांगना है और लोक गायिका भी हैं।
1: तो भविष्य में आशा जी आपरी कई योजनावां है, जो आप एड़ो कोई सपनो है जो अबार ताई पूरो नहीं हुआ है और आप चाहो कि आने वाला समय में वो पूरा हो जावे?
2: मारो सपनो इस तो कि मैं हमेशा चाहती थी कि भाई कालबिलिया समाज रे मन ने बच्चा है वे पढ़ लिखन। देखो हालांकि कला संस्कृति गाना बजाना एक अलग चीज है, पहले समय में लोग नहीं पढ़ा था लिखा था। और मारा एक मैसेज है सबारे वास्ते कि कालबेलिया समुदाय का बच्चा पढ़े लिखे और आगे बढ़े, वो मारो सपनो है।
1: तो इन रे वास्ते आपकी करना चाहो सोचो है कि
2: बिल्कुल मैं यूं ही सोचू कि कोई मैं मतलब स्कूल खोलू जिनमें मैंने बच्चा जो बाहर लाए गांव रहा है वे पढ़ सके लिख सके और आगे बढ़ सके। और मैं सरकार ने भी अनुरोध करूं कि कालबेलिया समुदाय और लोग माते थोड़ा ध्यान देवे।
1: जी बहुत बढ़िया।
0: तो आशा जी आपकी बात सुनने मतलब माने श्रोता माने तो चोखो लाग ही रही है। इनके साथ ही आज आकाशवाणी स्टूडियो जो आपकी गीता सुए जी को जयमान हो रही है। तो जितना भी श्रोता आज इन कार्यक्रम ने सुन रहे हैं, खासकर आजकल ये पीढ़ी जो इन क्षेत्र में मैंने करियर बनानी चाह रही है, आप लोग विना ने आपका ही कहनी चाहूला?
2: मैं न्यू पीढ़ी ने आई कहनी चाहूंगी, देखो आप हर चीज करो बट एक संस्कृति जो अपारी मातृभाषा और राजस्थानी भाषा है उन्हें जीवित रखो। क्या पकट बारे जा रही हो या कुछ भी कर रही हो तो लोग अगर महाराष्ट्र जावला तो वे भी अपनी भाषा रो प्रयोग करेला। तो इंग्लिश बोलो हिंदी बोलो पर अपनी मातृभाषा और संस्कृति रो ध्यान रखो। मैं हर लोग ने आ बोलनी चाहिए।
1: तो जाता जाता आप लोग गायड़ो एक और गीत है जो को माने श्रोताओं ने सुना दो।
2: बिल्कुल
3: नथिंग।

0: बहुत खूब आशा जी, बहुत सा श्रोता आज आपने सुन रहे हैं। तो एक सवाल रेडियो सु जुड़ियो डो भी आप सु कर ला जाता जाता कि आकाशवाणी रे 90 वर्ष पूरा हो रहा है, तो इन विषय पर आप का ही कहनी चाहो ला अपनी तरफ सु।
1: मैं बहुत शुभकामनाएं देनी चाहूं कि 90 वर्ष रे मौके माता आपने ढेर तारी शुभकामना, और आज मने आटे इन चीज रो मौको मिलियो कि मैं आप पूरी टीम अटे मिली, इन वास्ते बहुत बहुत आकाशवाणी रो धन्यवाद देनी चाहूं।
2: तो आज इन स्टूडियो में

0: साथे पधार्याः कालबेलिया नृत्यांगना और लोक गायिका आशा सपेरा जी, और आप सु इतनी सारी बाता करीम है, और आपरे जीवन रे बारे में जानने रो मौको मिलो, आपरी कला रे बारे में जानने रो मौको मिलो, और साथ ही साथ आपरी आवाज में लाइव माने बैठ रहे नाटे इतनी अचोखी आवाज सुनने ने मिली, तो आप इन स्टूडियो में पधार्या इन वास्ते आपरो घणो घणो आभार।
1: धन्यवाद।

0: तो पूनम जी, आज गणगौर में बात कर रहे हैं लोकगीता री। तो
1: बिल्कुल सही बात की शीतल। और लोकगीत है वो अपनी भाषा रो जीवित कोश है। और अटे कहवत भी है अपन अटे कि गीत बिना राजस्थान बिना सुरा रो गान। मोबाइल रो जमानो है पर लोकगीत आज भी अपने मिट्टिया को नहीं है। आज भी अपने जो भी बूढ़ा बुजुर्ग है या जो आवन वाली पीढ़ी है वैने भी सिखा रहे हैं और वैनी जबान पर आज भी लोकगीत है जिसको सुनने मिल रहा है अपने।
0: बिल्कुल, हर मौके माते अपने अठे लोकगीत तो है ही है। जहाँ कि भी अपने कोई भी सामाजिक पर्व है, विण माते है, कोई प्रेम विरह रे माते अपने अठे लोकगीत है, और वीर रसु भरोड़ा भी लोकगीत व्या करे है। लेकिन बात करा कोई खास लोकगीत आ रही, तो अपने अठे कई लोकगीत है जो आपकी एक अलग ही पहचान बना रखी है। जहाँ कि देखो मैं कहूँ ओड़ियों, ओड़ियों री अगर बात करा तो कोई भी या कोई री जद याद आया करे है तो ओड़ियों गीत गायो जाया करे है। खासकर बेटी री विदाई रे टाइम पर भी ओड़ियों वो गाई जे कि कंवर बाई री ओड़ियों आवे और आज। और इन्हीं तरह से अपने अठे इंडूणी माते भी गीत है। जद पानी भरने जावती लुगाया मटके ने सिर पर टिकाने वास्ते मटके रे नीचे इंडूणी रो प्रयोग कर्या करे है। तो बिन माते भी अपने अठे गीत है कि गंगई इंडूणी। तो और इन्हीं तरीके से कांगसी माते भी अपने अठे गीत है। तो कह सका छोटी छोटी चीजा रे माते भी अपने अठे गीत लोकगीत बन्योड़ा है जो इन्हें और भी बहुत ही सुंदर बना दिया करे
1: बिल्कुल
0: यहाँ
1: सही
0: बाता ने।
1: क्यों। घोड़ी गीत है जिको बरातरी निकासी पर गायो जाया करे। चिरमी गीत है वो वधु आपरे ससुराल रे मायने आपरे भाई और पिता री प्रतीक्षा रे मायने चिरमी रे पौधा ने संबोधित करती टाइम गाया करे। जच्चा गीत बालक रे जन्मोत्सव पर गाए जाया करे। जीरो गीत तो वो एक किसान जी की

0: तो आज रे लोक सुरारे रंग सुरंगियों कार्यक्रम री प्रस्तुति राजेश लामरोरी और कार्यक्रम रो समय भी अटे समापन पर आई गयो है। तो आपरी दोनों सखियां शीतल राठौड़ और पूनम देवड़ा ने दिरावसी
1: चाला राम राम, राम।

श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम गणगौर। ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से

0: आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल आज अपने नेता का चुनाव करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं।
1: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लगभग 1.5 दशक के शासन का अंत हो चुका है। कल नवनिर्वाचित सरकार की शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में राजनीतिक इतिहास में एक नई कड़ी का शुरुआत होगी। कल रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल की पहली बीजेपी सरकार शपथ लेगी। बीजेपी के विधायक दल का नेता चुनने का प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए पार्टी के नियुक्त पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कलकत्ता पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इसी बैठक में बीजेपी विधायक दल की नए नेता का चयन किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी के लिए।
0: शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरू थैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा केरल में पार्टी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपी और उद्योग जगत को बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 में पुनः निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विध्वंस से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे

0: विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों तथा मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मानित करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित होंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
1: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि प्रवासन को लेकर भारत का दृष्टिकोण प्रवासियों की सुरक्षा, देश छोड़ने से लेकर उनकी संभावित वापसी तक व्यापक शासन व्यवस्था और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मुख्य संचालन सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पलायन समीक्षा मंच को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत प्रवासियों की आवाजाही को सुचारू बनाने के प्रयास कर रहा है।
2: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
1: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। श्री नायडू ने ये बात गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारत विमान लीजिंग और वित्त पोषण के दूसरे चरण में मुख्य भाषण देते हुए कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक आर्थिक स्थिरता के स्तंभ के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि में देश के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया। श्री जयशंकर ने सूरीनाम में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष वैश्विक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है।
3: इंडिया कंट्रीब्यूट्स,
2: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सकें।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। पिछले वर्ष लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अदालत द्वारा स्थगित करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नए शुल्कों की घोषणा की थी। अमरीकी प्रशासन ने इसके बाद व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल कर 24 जुलाई 2026 तक अस्थायी 10% टैरिफ लागू करने का फैसला किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन से हुई। ये मैराथन कृषि

0: भवन रेल भवन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। मैराथन पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को पदक प्रदान किए गए। वहीं पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष तीन प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया।
1: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुंचाया जा रहा है।
2: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
1: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
3: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक सुदूर प्रदेश तक पहुंचता है और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
4: देशभर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं, उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
1: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत छठे युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों के बीच संपर्क को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन, विकास, संस्कृति, विरासत, शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने के लिए सहयोगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर हुआ। 213 रन के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सका। मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 527 अंक गिरकर 77,318 पर, जबकि निफ्टी 153 अंक की गिरावट के साथ 24,173 पर था। मौसम विभाग ने 10 से 13 मई के बीच देश के उत्तर पश्चिमी भागों के विभिन्न स्थानों पर बिजली चमकने, बादल गरजने और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। केरला, माहे, दक्षिण आंध्रिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कराईकाल में तेज बारिश की संभावना है। रविवार तक उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। अब प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, खुशी दुनिया में उपलब्ध सब दवाओं में सर्वोत्तम दवा है, इसलिए खुश रहो और खुशियां बांटो।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू और कुसुमबाई नागनपुरे।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
0: और पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू,
2: सिटी गोनियाना मंडी से गुरप्रीत सिंह जस्सल
0: और गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी।
2: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: अरे वह फिर से आप सबका स्वागत है ये भी जानिए श्रृंखला में। श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र की,
2: इसके रहस्यों की और मानवता को दिए जाने वाले इसके अमूल्य योगदान की। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय शास्त्रों में इसे किन किन नामों से पुकारा गया है। इन नामों से भी समुद्र की विशेषताओं का पता चलता है। अजीत जी, अब आपकी बारी है।
0: जी विमलेश जी, तो साथियों, समुद्र का सबसे प्रचलित नाम है सागर
2: जी,
0: लेकिन इसे जलधि भी कहा जाता है, यानी जल को धारण करने वाला। अब आपकी बारी।
2: दूसरा प्रचलित नाम है रत्नाकर, यानी बहुमूल्य रत्नों का भंडार। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में समुद्र मंथन का उल्लेख है। इस प्रक्रिया में बहुत से अलग अलग प्रवृत्ति वाले रत्न निकले थे।
0: श्रोताओं, समुद्र को अर्णव भी कहा गया है, यानी विशाल और गर्जन करने वाला। इसे सिंधु भी कहते हैं, यानी जल का विशाल बहता भंडार। तो श्रोताओं, ये हैं समुद्र के विभिन्न नाम जो हम अपने शास्त्रों में पाते हैं। आज हम विशेषकर बात करेंगे समुद्र की गहराई और इसके एक खास रहस्य के बारे में।
2: वैसे तो समुद्र अपनी गहराई के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि दुनिया का सबसे गहरा समुद्र स्थल कहाँ है। जी जी जी, चर्चा को आगे बढ़ाएं।
0: जी श्रोताओ, मरियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे गहरा समुद्री क्षेत्र है, जो फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर में है। और सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप।
2: यहाँ समुद्र 10,984 मीटर से भी अधिक गहरा है, यानी करीब 11 किलोमीटर गहरा।
0: विमलेश जी, इस तथ्य को और रोचक बनाते हैं एक प्रश्न से। क्या चैलेंजर डीप की गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से अधिक है?
2: जी बिल्कुल, इस बात को एक तुलना से समझते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊपर है, जबकि समुद्र तल से नीचे चैलेंजर डीप की गहराई 10,984 मीटर है, यानी अंतर करीब 2 किलोमीटर का है।
0: 2 किलोमीटर का अंतर, अद्भुत सच में। यानी यदि माउंट एवरेस्ट को मरियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप में डाल दिया जाए तो यह पूरी तरह से डूब जाएगा
2: जी,
0: और ऊपर 2 किलोमीटर गहराई का पानी बचा रहेगा
2: जी।
0: अच्छा, चलिए वार्ता को कुछ और रोचक बनाते हैं। अभी हमने बात की माउंट एवरेस्ट की, सुना है कि समुद्र के अंदर भी पर्वत होते हैं।
2: जी बिल्कुल सही सुना है आपने। समुद्र के अंदर हमारी भूमि से अधिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहाँ बड़े बड़े ज्वालामुखी भी होते हैं। श्रोताओं को एक और रोचक बात बताऊं, समुद्र में भी एक ऐसा पर्वत है जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी अधिक मानी जाती है। नाम है माउना केया।
0: जी श्रोताओ, है ना रोचक बात। यदि पूरी पृथ्वी की बात करें तो इसमें समुद्र भी शामिल है
2: जी,
0: तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है ये, यानी माउना केया
2: जी।
0: और ये पर्वत प्रशांत महासागर में स्थित है
2: जी।
0: समुद्र के ऊपर दिखाई देने वाली ऊंचाई लगभग 4,000 मीटर है, लेकिन बाकी हिस्सा समुद्र के अंदर है। माउना केया की ऊंचाई आधार से लगभग 10,200 मीटर है, यानी जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है।
2: ये एक ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पर्वत है जो लाखों वर्षों में लावा जमा होते रहने से धीरे धीरे बना और परत दर परत जमा होकर इतना विशाल हो गया, आज ये एक आकर्षक पर्यटन स्थल और

0: अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जाना जाता है।
1: तो विमलेश जी, अब समाप्त करने से पहले श्रोताओं को समुद्र के बारे में कुछ और रोचक जानकारी दे दें।
0: जी
1: तो सबसे पहली जानकारी है, पूर्ण विकसित ब्लू व्हेल समुद्र का सबसे बड़ा जीव है। और मालूम है, इसका दिल एक सामान्य कार के आकार से भी बड़ा होता है।
0: जी, समुद्र की गहराई के तीन भाग हैं, सतही क्षेत्र, ये वो भाग हैं जहां अधिकतर जीव पाए जाते हैं, यहां सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है।
1: और दूसरा क्षेत्र है मध्य क्षेत्र, यहां समुद्र का प्रकाश बहुत कम पहुंचता है, इसलिए कई ऐसे जीव यहां पाए जाते हैं जो खुद चमकते हैं।
0: और तीसरा क्षेत्र है बहुत ही गहरा क्षेत्र, यहां पूरी तरह से अंधेरा रहता है और जल का दबाव लाखों टन से भी अधिक होता है। सामान्य स्थिति में हम वहां कुचल जाएंगे, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में बहुत से जीव पाए जाते हैं। ये प्रकृति का चमत्कार नहीं तो और क्या है?
1: सच में ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। तो श्रोताओं, अब करते हैं समाप्त आज की चर्चा और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए।
1: 8800440559 यानी हमारे IBRS नंबर पर और audio@cieet.nic.in पर आप अपना संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना मत भूलिएगा।
1: और अब सुनते हैं आज का विशेष शैक्षिक कार्यक्रम, शीर्षक है रविन्द्रनाथ टैगोर।
0: इस कार्यक्रम के द्वारा कविवर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन, उनकी साहित्यिक रचनाओं और कविताओं के बारे में जानकारी दी गई है। उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को भी शामिल किया गया है और बताया गया है कि उनका व्यक्तित्व कितना बहुआयामी और विलक्षण था। रविन्द्र संगीत के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है।
1: विश्व शिक्षक रविन्द्रनाथ टैगोर।

0: रविंद्रनाथ ठाकुर के इस गीत में है निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। आज भी रविंद्र संगीत में वही ऊर्जा, वही शक्ति और वही प्रेरणा है। रविंद्र संगीत हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है, हमारी संस्कृति में रच बस गया है। बंगाल की माटी के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि काव्य कृति को 10 दिसंबर सन 1913 में एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संसार का सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ पुरस्कार है।
1: इस अवसर पर स्वीडिश अकादमी की नोबेल कमेटी के चेयरमैन हेरल्ड हर्जन ने कहा था, भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रेष्ठ आध्यात्मिक कविताओं की रचना की है। गीतांजलि ने बहुत से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा है और अब ये अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं, अमेरिका और समस्त पश्चिमी दुनिया के साहित्य में भी उपलब्ध होगी। इसकी विशेषताएं हैं, कवि के विचारों में संपूर्णता, कविताओं में लयात्मक संतुलन, शब्दों का चयन, और किसी अन्य भाषा में इसका अनुवाद करना मुश्किल होगा।

0: गीतांजलि के गीतों में भारत के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा है।
1: हेमोर चित्त पुण्य तीर्थ जागरे धीरे এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।
2: इस गीत में कवि ऐसे भारत की कामना करता है जहां हमारा मन निर्भय और मस्तक ऊंचा हो।
0: वे मनुष्य के कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भजन, कीर्तन, कंठी माला सब बेकार। किसी

0: पूछते हो अंधियारे मंदिर में तुम बंद किए सब द्वार। कृषक जहां खेती करते हैं ईश वहां है।
1: गीतांजलि में प्रतीक्षा का भाव अनेक रचनाओं में है, चाहे वो ईश्वर की हो या ऋतुओं की। इसमें कुछ गीत भावात्मक हैं, कुछ सॉनेट शैली में लिखे गए हैं। सॉनेट 14 पंक्तियों के प्रगीतों को कहते हैं, जो मुक्त छंद में लिखे होते हैं। कवि रविंद्रनाथ ने इन्हीं दिनों हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और स्वयं उसे गाया भी।
2: जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ युष्कल भंगा विंध हिमाचल जमुना गंगा उत्थल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे।
1: बंगाल ही नहीं, उनके गीत देश विदेश गांव शहर हर जगह गाए और सराहे जाते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध जाने माने साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर एक सशक्त गीतकार और संगीतकार ही नहीं, साहित्य की अनेक विधाओं में उन्हें महारत हासिल है। वे एक सुविख्यात कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, गद्यकार, निबंधकार, व्याख्याता, कुशल गायक, चित्रकार और नाट्य अभिनेता होने के साथ साथ विश्व के एक महान शिक्षक हैं।
0: देश ने मनाई रविंद्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती। इस अवसर पर तेलुगु के प्रसिद्ध कवि समालोचक एन गोपी ने ठाकुर बाड़ी कविता लिखी। प्रस्तुत अंश उसी कविता का है। जोड़ा सांको की एक पतली गली में है ठाकुर बाड़ी। उस गली ने खोल दिए हैं विशाल विश्व के प्रवेश द्वार। द्वार छोटे भले ही क्यों ना हो पर विहरण है दिगंतों तक। सात मई सन 1861 को इसी ठाकुरबाड़ी में पिता देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। ये जगह उत्तरी कलकत्ता में है, कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में इसे बनाया गया था। बचपन में रविंद्रनाथ ने बहुत से स्कूल बदले। स्कूल के बंधन उन्हें कारागार जैसे लगते। घर पर ही उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन किया। मगर घर में नौकरों का शासन भी था, जिसे रवि ने सेवक शाही तंत्र का नाम दिया। ये नौकर बच्चों को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते, उन्हें घेरे रहते और दंड भी देते।
1: रविंद्रनाथ ने लगभग 7-8 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया। उन्हें नए शब्दों को गढ़ने में बहुत आनंद मिलने लगा और फिर नीले कागजों की बही पर गढ़ी जाने लगी कविता। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में बनफूल तथा कवि काहिनी विशेष महत्वपूर्ण है।

0: दिन भी आया जब पिता 12 वर्ष के रविंद्रनाथ को अपने साथ हिमालय यात्रा पर ले गए। प्रकृति के प्रति लगाव को देखते हुए पिता ने उन्हें वहां घूमने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी दी। यहीं रविंद्र ने प्रकृति को जाना, पहचाना और उसे महसूस किया।
1: कवींद्र रविंद्र को नदी का कवि भी कहा जाता है।
0: यही प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य सृजन का सशक्त आधार बनी। 12 वर्ष की उम्र में ही रविंद्रनाथ ठाकुर की पहली कविता अभिलाष सन 1874 में तत्व बोधिनी पत्रिका के नवंबर दिसंबर अंक में छपी। फिर दूसरी रचना भारत उस समय की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका मन संगीत में रचा बसा था। उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि साधने में कठिन साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत संग्रह उनके गीतों के दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्न भंग, जिसमें सूर्य किरण के स्वागत में झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद का प्रतीक है।
1: बच्चों के लिए रविंद्रनाथ की पहली कविता है वृष्टि पड़े टापुर टुपुर। इसकी धुन लोकगीत जैसी है।

0: शिशु भोलानाथ आदि काव्य संग्रहों में रविंद्रनाथ द्वारा रचित बाल कविताएं हैं। बच्चों के लिए लिखी एक कविता दोपहर बड़ी मार्मिक है। इसका अनुवाद सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने किया। ओ मां, अब मेरी छुट्टी करो ना। सुबह से पढ़ रहा हूं मैं, तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना खेलूंगा। अभी दोपहर है बस, कह दिया तुमने। उन्होंने बच्चों के लिए नाटक और कथाएं भी लिखीं।
1: सन 1877 के आसपास इन्होंने लघु कथा कहानी की एक नई विधा को जन्म दिया। इस समय की कहानियां गल्पगुच्छ के नाम से प्रसिद्ध थीं। उनकी पहली कहानी है भिखारिणी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जमींदारी की देखभाल के लिए शजातपुर सियालदेह गांव का दौरा कर रहे थे।

0: यही वे नदी के किनारे नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। इनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों, चरवाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेह युक्त हृदय और उदारता के कारण बाबू मोशाय बन गए और इन्हीं में रविंद्रनाथ को मिलते गए अपनी कथाओं के पात्र भी।
1: जुलाई 1905, अंग्रेजी शासन ने भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में तिलमिलाहट पनपी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपने मातृभूमि से प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया।
2: আমার সোনার বাংলা আমি তোমার

0: और फिर दिल दहलाने वाली नरसंहार की घटना घटी। अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वॉइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूँ, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में लज्जास्पद लगते हैं।
0: रविंद्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य से रविंद्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है। रविंद्रनाथ ठाकुर एक शिक्षक हैं। वे जीवन और शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे शिक्षा नीति अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना चाहते थे। साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं को शिक्षा में स्थान दिलाने का श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है। उनका मानना था कि बच्चा अपने परिवेश और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता है और समझ सकता है।
2: आमादेर शांति निकेतन, यानी हमारा शांति निकेतन।
3: আমাদের শান্তি নিকেতন, আমাদের
2: শান্তি। সন 1901 में শান্তি নিকেতন आरंभ हुआ, जिसमें रविंद्रनाथ ने शिक्षा की औपचारिक रटंत विद्या से अलग बच्चों की सृजन शक्ति के विकास के लिए भारत की प्राचीन आश्रम व्यवस्था को अपनाया। एक कवि की पाठशाला में उन्होंने लिखा,
1: बच्चे का अवचेतन संवेदनशील होता है और पेड़ों की तरह वह अपनी खुराक वातावरण से ग्रहण करता है। उसके लिए यह नियमों, रीतियों, पाठ्य पुस्तकों और पाठों से अधिक महत्वपूर्ण है।
2: शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविंद्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रविंद्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी, तोते का प्रशिक्षण, जो पाठ्यपुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक कष्टपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि तोता मर जाता है। शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और आज भी यही पद्धति जारी है। यहां बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, जहां सीखने की आजादी है। अब यह विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है।

0: रवींद्रनाथ ने कहा था,
1: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
2: उनका मानना था इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों।

0: और स्वतंत्र चिंतन के प्रतिरूप हैं। स्त्री शिक्षा निबंध में उन्होंने लिखा था,
1: विद्या यदि मनुष्यत्व प्राप्त करने का उपाय है और विद्या प्राप्त करना यदि मानव मात्र का जन्मजात अधिकार है तो उसे इस अधिकार से वंचित न किया जाए। जो कुछ भी जानने लायक है वही विद्या है। पुरुष को भी जानना होगा, स्त्री को भी जानना होगा।
2: रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में लिखा पर स्वयं को मूलतः कवि ही माना। आमी कवि, मैं एक कवि हूँ। उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर लिखा,
1: मैंने एक तपोवन का संधान करना चाहा था, शहर के भयावह घरों में नहीं, आकाश के खुले वितान के नीचे सुबह से शाम तक मैं इन लड़के लड़कियों के खेल का साथी बनना चाहता था। यही मेरा सच्चा कार्य रहा है। मेरी जगह वही है, धरती की गोद, इन पेड़ों, इन जंगलों में, इस धूल, इस तृण दल में मैंने अपना जीवन उंडेला है। जो धरती की आत्मा के निकट हैं, जो उससे ही बने, उसी में ढले हैं, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे, मैं उन सब का मित्र हूं, मैं कवि हूं।
0: स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी और विभिन्न विदेशी भाषाओं में रविंद्रनाथ की कृतियों का अनुवाद किया गया है। उनकी कविताओं की अंग्रेजी में अनुदित कृतियां हैं गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, द फ्यूजिटिव क्रेसेंट मून। न केवल भारत में अपितु जर्मनी, अमेरिका, इटली आदि अनेक देशों के पाठ्यक्रम में रविंद्र साहित्य शामिल किया गया है।

0: सुनकर पुकार तुम्हारी, आए नहीं कोई पास तो क्या, चल दो अकेले। जो कायर हैं छुपते हैं ओट लेकर, तुम चलो अकेले। अरे अभागे खोलो मन, तुम बोलो पगले एक अकेले। रेगिस्तानों में कोई साथ छोड़े तो भी क्या है, कांटों के पांव में चुभने से होता क्या है, रक्त सने पथ पर बढ़ लेना अकेले। तूफानी रातों में दीपक लेकर कोई खड़ा नहीं तो भी तुम चलो अकेले। तड़त ज्योति पीड़ा की बनने दो एकाकी मन में, चलते चलो अकेले, चलते चलो अकेले।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्स पर। मीडियम वेव चैनल पर हमारी आज की ये सभा अब समाप्त होती है। शाम 5 बजे दूसरी सभा में आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।

मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगरी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 5 बजे हैं। हमारी दूसरी सभा युवा साथियों के कार्यक्रम युववाणी के साथ

0: हेलो दोस्तों, फ्राइडे इवनिंग का वाइब सेट हो चुका है। गर्मी भी फुल फॉर्म में है, आईपीएल की डिस्कशंस भी चल रही है और स्टूडेंट्स और यूथ का फोकस कभी करियर वैकेंसीज पर होता है तो कभी वीकेंड प्लान्स पर। मैं हूँ अदिति मर्डिया और अगले कुछ वक्त तक हम आपके साथ रहेंगे एकदम लाइट, फन और रिलेटेबल कन्वर्सेशंस के साथ।
1: बिल्कुल सही कहा अदिति, फ्राइडे इवनिंग यानी वीक का सबसे रिलैक्सिंग मूड। क्लासेस खत्म, ऑफिस लॉग आउट और अब टाइम है पूरे एंटरटेनमेंट का। तो वीकेंड की बिगनिंग हो, चाय या कोल्ड ड्रिंक हाथ में हो और आईपीएल की बातें ना हो ना, तो इवनिंग थोड़ी सी इनकम्प्लीट सी लगती है। यहाँ बातें होगी यूथ लाइफ की, समर सर्वाइवल की, ट्रेंडिंग टॉपिक्स की और उन सिचुएशंस की जहाँ हम सब साइलेंटली बोलते हैं, यार ये तो मेरी ही लाइफ चल रही है। कभी मोटिवेशन मिलेगा, कभी लाफ्टर और कभी वो बातें जो डायरेक्टली दिल तक पहुँच जाएंगी, क्योंकि आज की इवनिंग होने वाली है फुल स्पोर्ट्स, फिल्मी और एंटरटेनिंग।
0: बिल्कुल नितेश, तो अगर आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, हॉस्टल में रिलैक्स कर रहे हैं या ऑफिस से घर लौट रहे हैं या घर पर फैन के नीचे समर से फाइट कर रहे हैं, तो बस वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए।
1: क्योंकि अगले कुछ वक्त तक हम लेकर आए हैं कन्वर्सेशन, अपडेट्स और वाइब्स बिल्कुल यूथ स्टाइल में, सिंपल, एनर्जेटिक और दिल से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की शाम आपके नाम ओनली ऑन FM 102.1 युवानी पे नितेश और अदिति के साथ।

0: श्रोताओं, इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है आपके फेवरेट कार्यक्रम युवानी में, जिसे आप इंजॉय कर रहे हैं ओनली ऑन 102.1 पे नितेश और अदिति के साथ। अदिति, फ्राइडे स्पेशल युवानी चल रहा है और फ्राइडे आ चुका है, यानी ऑफिशियली वीकेंड्स मूड ऑन हो चुका है। कॉलेज असाइनमेंट को थोड़ा सा साइड में रखिए, ऑफिस मेल्स को म्यूट करिए और चिल मोड में आ जाइए।
1: बिल्कुल, क्योंकि वीकेंड हो, फ्री टाइम हो, ठंडी हवा हो और आईपीएल की बात ना हो तो लगता है इवनिंग में कुछ तो अधूरा है।
0: बिल्कुल, और आज का मुकाबला भी काफी एक्साइटिंग होने वाला है, दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस कोलकाता के नाइट राइडर्स।
1: और ऑनेस्टली आईपीएल का असली मजा फ्राइडे नाइट पे आता है, फ्रेंड्स के साथ मैच प्रेडिक्शंस, मीम्स, स्नैक्स और हर ओवर पे इमोशंस।
0: वैसे अदिति, कल का मैच भी किसी मूवी स्क्रिप्ट से कम ही नहीं था।
1: बिल्कुल, आरसीबी वर्सेस एलएसजी मैच में रेन इंटरप्शन ने भी फुल एंट्री मारी थी और प्रिंस यादव ने किंग कोहली को अराउंड 140 किलोमीटर पर आर की फीरी बॉल पर क्लीन बोल्ड करके फैंस को शॉक कर दिया था।
0: बिल्कुल, और उसके बाद मिशेल मार्श ने भी बैटिंग नहीं की, सिक्सेस की रेनफॉल स्टार्ट कर दी।
1: और ऋषभ पंत का वो बैट स्लिप मूवमेंट सोशल मीडिया का तो फेवरेट मीम मटेरियल बन गया है वो।
0: तो आज भी रेडी हो जाए क्योंकि एक और एंटरटेनिंग आईपीएल इवनिंग के लिए, क्योंकि क्रिकेट सिर्फ गेम नहीं है, इंडिया का बिगेस्ट इमोशंस है। और इसी इमोशंस के साथ हम आगे बढ़ेंगे अगले म्यूजिकल ट्रैक की, और क्रिकेट की बातें अभी बाकी रहेगी ओनली ऑन FM 102.1 पे नितेश और अदिति के साथ।

0: नितेश, इससे पहले हम आईपीएल की बात कर रहे थे, तो आईपीएल पॉइंट्स टेबल में 10वें नंबर की टीम लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने गुरुवार को डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को टेबल टॉपर बनने से रोक दिया। बेंगलोर की टीम अब भी तीसरे स्थान पर है।
1: बिल्कुल सही कहा दीति, और एक नज़र आईपीएल की पॉइंट्स टेबल की ओर लेके चलते हैं हमारे प्यारे से श्रोताओं को। टॉप पर है हैदराबाद 14 पॉइंट्स के साथ, और वही दूसरे स्थान पर है पंजाब 13 पॉइंट्स के साथ, और तीसरे स्थान पर है बेंगलोर 12 पॉइंट्स के साथ, और चौथे स्थान पर है राजस्थान 12 पॉइंट्स के साथ, और गुजरात भी पाँचवें नंबर पर है 12 पॉइंट्स के साथ। और वही आज के मैच की बात करें तो आज का मुकाबला दिल्ली कैपिटल वर्सेस कोलकाता के नाइट राइडर्स का रहेगा। टीवी का रिमोट है ना, उसको रेडी रखिए, फोन चार्जिंग मोड पे लगा दीजिए, और बने रहिए ओनली ऑन FM 102.1 पे नितेश और अदिति के साथ। चलते हैं नेक्स्ट म्यूजिकल ट्रैक की ओर।

0: श्रोताओं, प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है आपके फेवरेट फ्राइडे स्पेशल युववाणी प्रोग्राम में, जिसे आप एंजॉय कर रहे हैं नितेश और अदिति के साथ ओनली ऑन एफएम 102.1 पे। और अदिति, स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़े फियर की बात करें तो वो है गणित, यानी मैथ्स। और ऐसा शब्द जिसे सुनते ही कई लोगों के दिमाग में स्कूल की घंटी, कॉपी के पीछे लिखे फॉर्मूले और एग्जाम का डर एक साथ वापस आ जाता है।
1: बिल्कुल सच में नितेश, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस, कभी कभी लगता था जैसे जिंदगी नहीं कोई मैथ्स का भूलभुलैया चल रही हो।
0: और सबसे बड़ा सवाल, जिस गणित को सीखने में हमने हजारों घंटे लगाए, क्या वो सच में हमारे रियल लाइफ में उतना काम आती है?
1: आज दुनिया भर के कई एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स मानते हैं कि शायद हम गणित को गलत तरीके से पढ़ रहे हैं और उससे भी ज्यादा गलत तरीके से उसे जज कर रहे हैं।
0: क्योंकि हर स्टूडेंट का टैलेंट सिर्फ नंबर से तह नहीं हो सकता। कोई म्यूजिक में जीनियस होता है तो कोई आर्ट में, तो कोई कम्युनिकेशंस में और कोई आइडियाज में।
1: बिल्कुल, लेकिन स्कूल लाइफ में कई बार मैथ्स मार्क्स ही इंटेलिजेंस का स्केल बन जाते हैं और वहीं से शुरू होता है कॉन्फिडेंस का प्रेशर।
0: हालांकि रियल लाइफ में सबसे ज्यादा काम आता है लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग।
1: बिल्कुल, जैसे बजट मैनेज करना, टाइम कैलकुलेट करना और बिजनेस डिसीजंस लेना या डेली लाइफ की प्लानिंग करना।
0: मतलब मैथ्स जरूरी नहीं, लेकिन शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे समझने का सही तरीका।
1: और शायद एजुकेशन का असली मकसद सिर्फ फॉर्मूलाज याद करवाना तो नहीं होता, बल्कि सोचने का तरीका सिखाना भी होना चाहिए।
0: तो अगर कभी मैथ्स ने आपको डराया हो तो याद रखिए, मार्क्स आपकी पूरी पर्सनैलिटी डिफाइन नहीं कर सकता है,
1: क्योंकि हर इंसान अपने आप में यूनिक इक्वेशन है जिसका जवाब सिर्फ नंबर से नहीं निकाला जा सकता।
0: तो चलिए फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट म्यूजिकल ट्रैक की ओर।

0: हाँ जी, वाणी स्पेशल फ्राइडे की शाम चल रही है और इस शाम हम बातें करते हैं ढेर सारी यूथ ओरिएंटेड टॉपिक पे। और अब जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है शायद हर यंग पर्सन की लाइफ का हिस्सा बन चुका है, हसल कल्चरल वर्सेस मेंटल पीस।
1: हाँ, और आजकल हर तरफ बस एक ही चीज सुनाई देती है, वर्क हार्डर, हसल मोर, डोंट स्टॉप।
0: और धीरे धीरे ऐसे लगने लगा है जैसे रुक जाना गलत हो, थक जाना वीकनेस हो।
1: बिल्कुल, सोशल मीडिया भी इसी प्रेशर को और बढ़ा देता है। हर दिन किसी की अचीवमेंट, किसी का सक्सेस, किसी की परफेक्ट लाइफ देखकर लगता है कि हम कहीं पीछे तो नहीं रह गए।
0: लेकिन अदिति, एक सवाल बहुत जरूरी है, क्या हम सच में ग्रो कर रहे हैं या फिर सिर्फ मेंटली एग्जॉस्ट?

0: होते जा रहे हैं।
1: बिकॉज ऑनेस्टली आज की जनरेशन जो है एम्बिशियस तो बहुत है, लेकिन अंदर से बहुत टायर्ड हो रही है, बहुत थक रही है।
0: बिल्कुल सही कहा। और पहले लोग काम करते थे ताकि जिंदगी अच्छी हो सके, और लेकिन आज जो लोग काम कर रहे वो जिंदगी पोस्टपोन कर रहे हैं और सिर्फ काम के लिए।
1: बिल्कुल सही। और सबसे डेंजरस चीज ये है कि हमने स्ट्रेस को नॉर्मल मान लिया है।
0: बिल्कुल एग्जैक्टली। अगर कोई बिजी है तो सक्सेसफुल लगता है, और अगर कोई रेस्ट कर रहा हो तो लगता है भाई ये कितना फ्री है।
1: लेकिन हर वक्त प्रोडक्टिव रहना पॉसिबल तो नहीं है ना, हम भी आखिर इंसान है, कोई मशीन नहीं।
0: मेंटल पीस का मतलब लेजी होना भी तो जरूरी नहीं है।
1: और पीस का मतलब बस इतना है कि आपकी सक्सेस के साथ आपकी खुशी भी बची रहे,
0: कभी कभी हम करियर बनाते बनाते खुद को ही लूज कर देते हैं।
1: और फिर एक वक्त आता है जब अचीवमेंट्स होती है लेकिन सुकून नहीं होता। तो चलिए इसी सुकून को आपको हम डिलीवर करते हैं इस सॉन्ग के साथ।

0: नितेश, इस गाने से पहले हम जो बात कर रहे थे कि जो हसल कल्चर है वर्सेस मेंटल पीस है, उससे उसके लिए जो हमको भागदौड़ करनी पड़ती है, उसके लिए हमको घर से बाहर निकलना पड़ता है, और घर से बाहर निकलते ही तेज धूप, गर्म हवाएं, और बाहर निकलते ही इंस्टेंट टैनिंग।
1: बिल्कुल सही कहा, लेकिन चाहे कॉलेज जाना हो, ऑफिस जाना हो या डेली वर्क पे, घर से तो बाहर निकलना ही पड़ता है।
0: ऐसे में लोग अक्सर ना सनस्क्रीन और पानी की बात करते हैं, लेकिन एक चीज जिसे हम सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं वो है हमारी आंखें।
1: जी हाँ, तेज धूप में मौजूद अल्ट्रावायलेट यानी यूवी रेज आंखों को काफी नुकसान पहुंचा सकती है।
0: कई बार धूप में ज्यादा रखने से आंखों में जलन, रेडनेस, इचिंग और ब्लरी विजन जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा अदिति, और लॉन्ग टर्म में ये लापरवाही आंखों से जुड़ी सीरियस प्रॉब्लम्स को आप भी रिस्क बढ़ा सकती है।
0: बिल्कुल, इसलिए जब भी बाहर निकले ना दोस्तों आप, तो एक अच्छी क्वालिटी के यूवी प्रोटेक्टेड सनग्लासेस जरूर पहने।
1: और साथ ही लगातार धूप में रहने से बचे और आंखों को हाइड्रेट रखने के लिए पानी भी भरपूर पिए।
0: क्योंकि कूल दिखने के साथ साथ आंखों की सेफ्टी भी बहुत जरूरी है।
1: तो इस समर सीजन फैशन के साथ प्रोटेक्शंस को भी बनाएं अपनी डेली रूटीन का हिस्सा।
0: बिल्कुल, और स्टे कूल, स्टे हाइड्रेटेड, और अपनी आंखों का ख्याल जरूर रखिए, जैसे हम रख रहे हैं आपका ख्याल इस सॉन्ग के साथ।

0: श्रोताओं, इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है आपके फेवरेट कार्यक्रम जिसे आप एंजॉय कर रहे हैं युववाणी में नितेश और अदिति के साथ ओनली ऑन FM 102.1 पे। और अदिति, स्टूडेंट्स और गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है।
1: SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया है।
0: इस भर्ती के तहत ग्रेड सी और ग्रेड डी के कुल 731 पोस्ट पर भर्ती जारी की जाएगी।
1: और अगर आपने 12वीं पास कर ली है और स्टेनोग्राफी स्किल रखते हैं तो ये आपके लिए शानदार अपॉर्चुनिटी है, हो सकती है।
0: और वही अतिथि, साथ ही साथ अगर एज लिमिट की बात करें तो ग्रेड सी के लिए 18 से 30 साल तक के युवा साथी इसे अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेड डी के लिए 18 से 27 साल तक के उम्मीदवार इसे अप्लाई कर सकते हैं।
1: एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैंडिडेट्स का किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से 12th पास होना जरूरी है।
0: और वही अदिति, साथ ही साथ स्टेनोग्राफी स्किल मैंडेटरी रहेगी जिसका टेस्ट स्किल टेस्ट के दौरान लिया जाएगा।
1: ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 15 मई, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं लास्ट मोमेंट का वेट मत कीजिए।
0: एप्लीकेशन और डिटेल्स नोटिफिकेशन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कीजिए और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.gov.in।
1: और अपने सपनों की प्रिपरेशन आज से शुरू कीजिए
0: क्योंकि मेहनत और कंसिस्टेंसी ही सक्सेस की रियल शॉर्टकट है।

0: क्या बात है अदिति, मोहित चौहान के बैक टू बैक दो गाने, और हर आर्टिस्ट की है ना एक अलग क्वालिटी होती है, और मोहित चौहान की क्वालिटी की बात करें ना आवाज़ में, तो उनकी आवाज़ में एक अलग ही सुकून है। और
1: बिल्कुल
0: इस गाने से पहले जो हमने गाना लिया था फिल्म हीरोपंती का, सोलफुल साउंड ट्रैक रब्बा, तो दिल है ना ऑटोमेटिकली स्लो मोशन में चला जाता है।
1: बिल्कुल सच में इस गाने को सुनते ही ना सबके माइंड में उस ब्यूटीफुल आइस वाला विजुअल आ ही जाता है, स्नोई माउंटेन्स, ठंडी हवाएं और पीसफुल वाइब्स।
0: बिल्कुल सही कहा दीदी, और इस तेज गर्मी से अगर ऐसे सॉन्ग्स लिटरली है ना एसी से ज्यादा राहत देते हैं।
1: वैसे भी समर वेकेशन स्टार्ट होने वाले हैं, तो भला कौन होगा जो फैमिली या फ्रेंड्स के साथ घूमने का प्लान नहीं बनाएगा।
0: बिल्कुल, कोई माउंटेन्स की तरफ जाने का प्लान बना रहा है, तो कोई लेक्स और वाटरफॉल्स एक्सप्लोर करना चाहता है।
1: और ऑनेस्टली फैमिली के साथ ट्रेवल करने का एक अलग ही मजा होता है, रोड ट्रिप्स, फोटोज, चाय ब्रेक्स और नॉन स्टॉप मेमोरीज।
0: बिल्कुल, और मैगी को भला कौन ही भूल सकता है। और इस समर में ऐसी जगह जरूर जाइए जहाँ थोड़ी ठंडी हवाएं हो, सुकून हो और अपनों के साथ क्वालिटी टाइम मिले।
1: क्योंकि वेकेशन सिर्फ ट्रैवलिंग नहीं, रिफ्रेश होने का और मेमोरीज कलेक्ट करने का एक परफेक्ट एक्सक्यूज होता है।

0: हाँ जी, अधूरा गीत है फिल्म ब्रेक के बाद, और धुन है विशाल शेखर की, और इसे दिलकश आवाज़ दी है विशाल ददलानी ने। और अदिति, हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे वैकेंसी की, और जो भी युवा साथी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करता है तो उनके लिए जो सबसे फ़ायदेमंद रहता है एग्ज़ाम्स के दौरान, वो होते ही इंग्लिश के वर्ड्स और वर्ड ऑफ द डे।
1: बिल्कुल। तो दोस्तों, आज का जो वर्ड ऑफ द डे होने वाला है वो है टच ग्रास। और नहीं, इसका मतलब लिटरली घास।

0: चुना नहीं होता है। इंटरनेट लैंग्वेज में ना टच ग्रास का मतलब होता है भाई थोड़ा रियल लाइफ में भी आ जाओ। मतलब अगर कोई पूरा दिन ऑनलाइन फाइट्स, रील्स या ओवर एक्टिंग में बिजी हो तो लोग बोल देते हैं गो टच सम ग्रास, यानी थोड़ा फोन साइड रखो, बाहर जाओ, फ्रेश एयर लो और रियलिटी से रिकनेक्ट करो। ऑनेस्टली फनी फ्रेज है लेकिन मैसेज काफ़ी रियल है दोस्तों, क्योंकि आजकल हम मोमेंट्स एंजॉय कम और रिकॉर्ड ज़्यादा करते हैं। तो आज का दोस्तों आप सबके लिए चैलेंज है, लेस स्क्रॉलिंग मोर लिविंग। वॉक पर जाइए, किसी दोस्त से बात कीजिए या बस शाम की ठंडी हवा एंजॉय करिए, बिकॉज लाइफ सिर्फ ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन भी ब्यूटिफुल है।
1: बिल्कुल सही कहा अदिति। और जो हमारा अगला म्यूजिकल ट्रैक आ रहा है वो पहली बार आया है, और इस गाने को सुनते ही आपको जो ये आज का वर्ड ऑफ द डे है टच ग्रास, उसे भी आप पहली बार फील करेंगे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शाम को टहलने निकलिए, सनसेट देखने के लिए निकलिए और इंजॉय कीजिए अपनी लाइफ। फिलहाल हम इंजॉय करेंगे अगला म्यूजिकल ट्रैक।

0: श्रोताओं, इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है आपके फेवरेट कार्यक्रम युवानी, जिसे आप इंजॉय कर रहे हैं नितेश और अदिति के साथ ऑनली ऑन एफएम 102.1 पे। अदिति, आज हमने ढेर सारी बातें की और बात शुरू हुई वीकेंड पे और अब बात खत्म होने वाली है वीकेंड्स पे। फ्राइडे इवनिंग में एक अलग ही फीलिंग होती है, जैसे माइंड ऑटोमेटिकली बोलता है बस अब वीकेंड मोड ऑन है।
1: बिल्कुल, और वीकेंड का एक्साइटमेंट तो थर्सडे नाइट से ही शुरू हो जाता है। प्लान्स बनते हैं, ग्रुप चैट्स एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन फनी पार्ट ये है कि कभी कभी पूरा वीकेंड बस क्रॉलिंग और स्लीपिंग में ही निकल जाता है। फिर संडे नाइट को लगता है यार वीकेंड इतना जल्दी खत्म कैसे हो गया।
0: तो इस बार वीकेंड को थोड़ा डिफरेंट बनाते हैं, जरूरी नहीं कि हर प्लान एक्सपेंसिव हो। कभी फ्रेंड के साथ चाय और लॉन्ग कन्वर्सेशन भी इनफ होता है भाई, कभी फैमिली के साथ डिनर, मूवी नाइट्स या बस टेरिस पे बैठकर बातें करना भी मूड फ्रेश कर देता है और रियल हैप्पीनेस सिंपल मूवमेंट में भी मिल ही जाती
1: है। बिल्कुल, और ऑनेस्टली यूथ लाइफस्टाइल इतना फास्ट हो गया है ना कि हम एंजॉय करना भी प्रॉपरली भूल जाते हैं। हर मोमेंट को पोस्ट करने की जल्दी होती है, फील करने की नहीं। तो इस वीकेंड थोड़ा स्लो हो जाइए, फोन साइड रखिए जैसे कि टच ग्रास, थोड़ा नेचर एंजॉय कीजिए, किसी ओल्ड फ्रेंड को कॉल कीजिए या फिर बस अपनी फेवरेट प्लेलिस्ट के साथ इवनिंग वॉक पर निकल जाइए। इसलिए तो हम बजाते हैं ये प्यारे प्यारे सॉन्ग जैसे कि ये।

दोस्तों आज की शाम म्यूजिक मेमोरीज और इमोशनल्स के नाम रही है। उम्मीद है आपने हर गाने को सिर्फ सुना नहीं फील भी किया होगा। फ्राइडे इवनिंग्स की वाइब्स, दोस्तों की बातें और दिल को टच करते ये सॉन्ग्स, शायद इसीलिए म्यूजिक को इमोशनल्स का लैंग्वेज कहा जाता है। कुछ सफर गीतों के साथ आसान हो जाता है, कुछ रिश्ते यादों

0: में भी खास हो जाते हैं और कुछ सामे यूं ही मुस्कुराते हुए दिल के बहुत पास आ जाती है। जैसा अभी आपने सॉन्ग एंजॉय किया, कुछ तो हुआ है, फिल्म कल होना होगा। और मैं था आज की शाम आपका रेडियो दोस्त नीतीश, और मेरे साथ
1: मैं अदिति मौर्या। दोस्तों, आज के शो की प्रस्तुति और संयोजन था राजेश लामरोड का। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, कनेक्टेड रहिए, कल फिर मिलेंगे ठीक इसी समय पर। नमस्ते।

0: युवा साथी अभी सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। 6 बजने को हैं। कुछ देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को नेता चुना गया। श्री शाह ने बताया कि बैठक में श्री अधिकारी के निर्विरोध चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी तमिलगा वित्री कड़गम टीवीके को नई सरकार के गठन के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन दे दिया है। 5 विधायकों के साथ कांग्रेस पहले ही समर्थन दे चुकी है। 2 विधायकों वाली वीसीके पार्टी बाद में अपना निर्णय घोषित करेगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डाटा दिया गया है। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। राज्य मंत्रिमंडल मंत्री जीतू भाई वाघानी ने बताया कि पर्व के अंतर्गत सोमनाथ में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रम आयोजित होंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने कहा है कि देशभर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग के अध्यक्ष विजय राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया है। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की

पहले इस सभा के शेष कार्यक्रम शाम 7 बजे सुनिएगा कार्यक्रम चौपाल। सिमाड़ेरी गुंज कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 7:30 पर। कार्यक्रम सुगम संगीत का समय रहेगा 9:15 का।

श्रोताओं के ईमेल और पत्रों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन पाएंगे मन चाहे गीत में, जिसे हम आपको सुनवाएंगे रात 10 बजे।

ये थे हमारी सभा के शेष कार्यक्रम। रिजर्व सुनिए कल दिन भर प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। कल रात 9:30 पर राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका संस्कृति भारती और रात 10 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

सुबह 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। रोजाना की तरह मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन कार्यक्रम नमस्कार का प्रसारण समय रहेगा सुबह 8:30 का। लोक संगीत आप सुन पाएंगे सुबह 10 बजे और दिन में 12 बजे।

दिन में 1:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम कृषि जगत। महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम नारी वाटिका लेकर हाजिर होंगे दिन में 1:15 पर।

युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी का समय रहेगा शाम 5 बजे का। कार्यक्रम चौपाल आप सुन पाएंगे शाम 7 बजे। 7:30 का समय रहेगा कार्यक्रम सिमाड़ेरी गूंज का।

0: अभी आपने सुना देशकान, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। 6:20 होने को हैं। कुछ देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार रिले होंगे। उसके बाद 6:30 पर आप सुनिएगा हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 6:42 पर जिले की चिट्ठी। 6:47 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
1: कहा पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। वरिष्ठाः भाजपा नेता सुवेन्दु अधिकारी भाजपा विधायक दलस्य नेता निर्वाचितः। सः पश्चिम बंग प्रदेशस्य प्रथमः भाजपेति दलस्य मुख्यमंत्री भवितुं सज्जः अस्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सोमनाथ मन्दिरं भारतस्य दृढतायाः, एकतायाः, सभ्यतायाः च बलस्य कालातीतं प्रतीकत्वेन वर्णितम्। डीआरडीओ तथा भारतीय वायुसेनया स्वदेशीयस्य तारा ग्लाइड शस्त्रस्य प्रथमोड्डयन परीक्षणं सफलतया पूरितम्। अपि च भारतस्य सिमरनजीत कौर इत्येषा सांघाई नगरे आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 मध्ये महिलानां रिकर्व उपांत्य चक्रीय द्वन्द्वे प्रविष्टवती। अथ वार्ताः विस्तरेण। पश्चिम बंग प्रदेशे भाजपेति दलस्य वरिष्ठः नेता सुवेन्दु अधिकारी अद्य पश्चिम बंग प्रदेशे भाजपा विधायक दलस्य नेतृत्वेन निर्वाचितः, येन तस्य राज्यस्य प्रथमः भाजपा मुख्यमंत्री भवितुं मार्गः प्रशस्तः अभवत्। विधायक दलस्य सभायाम् अधिकारिणः नाम प्रस्तावितमासीत्, तथा च केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन नवनिर्वाचितानां भाजपा विधायकानां दलस्य वरिष्ठ नेतृणां च उपस्थितौ औपचारिक रूपेण घोषितम्।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
1: नव भाजपा सर्वकारस्य शपथ ग्रहण समारोहः श्वः कोलकाता नगरस्य ब्रिगेड परेड ग्राउंड इत्यत्र भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मई मासस्य 11 दिनांके गुजरात राज्यस्थितस्य सोमनाथ मन्दिरस्य दर्शनं करिष्यति। 1950-1990 वर्षे भारतस्य प्रथम राष्ट्रपतिना डॉ राजेन्द्र प्रसादेन नवीकृतस्य मन्दिरस्य उद्घाटनं कृतमासीत्। तस्याः ऐतिहासिक घटनायाः 75 वर्ष पूर्तेः स्मरणार्थम् एषा यात्रा आयोज्यते। अद्य प्रधानमन्त्रिणा स्वस्य राष्ट्रिय दैनिके लेखे एषा सूचना प्रदत्ता। स्वस्य लेखे सः उक्तवान् यत् गत केषुचित् मासेषु सोमनाथ सम्बद्धेषु महत्वपूर्णेषु कार्यक्रमेषु भागग्रहणं तस्य कृते महान् सौभाग्यस्य विषयः अस्ति। अस्य वर्षस्य आरम्भे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व इत्यस्मिन् कार्यक्रमे अपि सहभागित्वं कृतवान्। अयं कार्यक्रमः मन्दिरस्य उपरि जातस्य प्रथम आक्रमणस्य सहस्र वर्ष पूर्त्यवसरे आयोजितः आसीत्। प्रधानमन्त्रिणा सोमनाथः भारतस्य सभ्यतायाः, शक्तेः, राष्ट्रिय एकतायाः, संघर्षशीलतायाश्च प्रतीकत्वेन वर्णितम्। डीआरडीओ तथा भारतीय वायुसेना इत्येताभ्यां ह्यः ओडिशा तटस्य समीपे टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन तारा इति शस्त्रस्य प्रथमं साफल्यं उड्डयन परीक्षणं सम्पादितम्। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः अस्य सफलोड्डयन परीक्षणस्य कृते डीआरडीओ, भारतीय वायुसेना, डीसीपीपी तथा सम्बद्ध उद्योगान् अभिनन्दितवान्। सः एतत् भारतस्य स्वदेशीय रक्षाक्षमता संवर्धनस्य दिशि महत्वपूर्णं पदाक्षेपम् इति वर्णितवान्। तारा भारतस्य प्रथमा स्वदेशीया ग्लाइड शस्त्रप्रणाली इति अस्ति, या

0: अमार्ग निर्देशित विस्फोटकान् सूक्ष्म मार्ग निर्देशित शस्त्रेषु परिवर्तयति। अन्याभि डीआरडीओ प्रयोगशालाभि सह सहयोगेन हैदराबाद स्थितेन अनुसंधान केन्द्रेण अस्य परिकल्पना तथा विकासः कृतः। एषा स्वदेशीया ग्लाइड शस्त्र प्रणाली स्वप्रकारे प्रथमास्ति, यस्याम् अत्याधुनिकाः अल्पव्ययुक्ताः प्रौद्योगिकयः उपयोजिताः सन्ति। एतत् न्यून व्ययुतस्य शस्त्रस्य अग्निशक्तिं तथा लक्ष्यभेदन यथार्थतां वर्धयित्वा भूलक्ष्यान् प्रभाविरीत्या निष्प्रभाविकरोति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर वैश्विक आर्थिक स्थिरताया स्तंभरूपेण भारतस्य वर्धमान भूमिकाया विषये अवधानं प्रदत्तवान् तथा च अन्ताराष्ट्रिय समृद्ध्यै राष्ट्रस्य महत्वपूर्णं योगदानं अवधानं प्रदत्तवान्। सूरीनाम देशे सूरीनामी समाजस्य विभिन्नानां वर्गाणां प्रतिनिधिवर्गाणां सम्बोधनावधौ मन्त्रिणा इदमुक्तम्। सः भारतस्य प्रभावस्य परिणामं अधोरेखितुम् अद्यतनीयां दत्तांशान् सूचयन् उक्तवान् यत् अस्मिन् वर्षे वैश्विक वृद्धेः आईएमएफ इत्यस्य अपेक्षानुसारं भारतस्य योगदानं सम्पूर्णे वैश्विक वृद्धेः 17% यावत् अस्ति।
1: इंडिया कंट्रीब्यूट्स,
2: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सकें।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह अवदत् यत् प्रवास विषये भारतस्य दृष्टिकोणः प्रवासिनां संरक्षणस्य मूल प्रचालन सिद्धान्तैः प्रवासस्य जीवनचक्रस्य सर्वसमावेशक शासनेन सुदृढ अन्ताराष्ट्रिय सहयोगेन च मार्गदर्शितः अस्ति। श्रीमंत्री न्यूयॉर्क नगरे संयुक्त राष्ट्र संघस्य भारतस्य स्थायी अभियाने द्वितीयान्तर्राष्ट्रिय प्रवास समीक्षा मंचे प्रतिनिधिदलस्य प्रमुखान् सम्बोधयनासीत्।
2: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
0: प्रशासनेन उक्तं यत् सम्पूर्णे देशे गृहे एलपीजी इत्यस्य आपूर्तिः सुकरः अस्ति, कस्मिन्नपि वितरण संस्थायां शुष्कतायाः सूचना नास्ति। नवदिल्ल्याम् अन्तर मन्त्रालयीयं वार्तालापं सम्बोधयन्ती पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मन्त्रालयस्य सचिवः सुजाता शर्मा इत्येषा उक्तवती यत् प्रशासनस्य प्रयासः अस्ति यत् देशीय ग्राहकेभ्यः गैस इत्यस्य अभावः न भवेत् तथा च पश्चिम एशियायाः विकसित स्थितौ मूल्यानि स्थिराणि एव भवेयुः।
3: भारत सरकार ने ये कोशिश की अभी तक कि कोई प्राइस इंक्रीज ना हो और इसके लिए एक्साइज ड्यूटी भी कम की। इसके अलावा और भी बहुत सारे कदम लिए, जैसे कि रिफाइनरीज के अंदर एलपीजी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, पीएनजी कनेक्शंस को प्रमोट करना, हमारे फर्टिलाइजर प्लांट्स को भी धीरे धीरे बढ़ाया गया और अब लगभग 98% तक उनकी सप्लाई इंश्योर की गई है।
0: आकाशवाण्या स्वीय 90तमस्य वार्षिकोत्सवस्यावसरे अद्य राष्ट्रिय राजधान्यां मैराथन इत्यस्य आयोजनं कृतम्। प्रायः 3.5 किलोमीटर मितं मैराथन इत्येतत् आकाशवाणी भवनात् आरभ्य कृषिभवने, रेलभवने, आरबीआई भवने च भूत्वा पुनः आकाशवाण्याम् एव समाप्तम्। आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य प्रसारभारत्याः च कर्मचारिणः स्वीय परिवारस्य सदस्यैः च सह अस्यां मैराथन धावन प्रतियोगितायां भागं ग्रहीतवन्तः। सर्वे प्रतिभागिनः धावन समापन पदकं प्राप्तवन्तः।

0: मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राज्य सरकार किसानों को नई कृषि तकनीकों और नवाचारों से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध। आरपीएससी की ओर से एसआई भर्ती परीक्षा 2021 फिर से आयोजित की जाएगी। इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत कल प्रदेश की सभी अदालतों, उपभोक्ता मंचों और राजस्व न्यायालयों में राजीनामा योग्य मामलों का निपटारा किया जाएगा और पश्चिमी राजस्थान में गर्मी के प्रकोप से एक ओर जनजीवन प्रभावित, वहीं कुछ जिलों में आंधी के साथ हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार कृषि और उससे जुड़े विभिन्न विभागों का एक क्लस्टर बनाकर काम कर रही है ताकि किसानों को तकनीक और निवेश का पूरा लाभ मिल सके। वे आज हैदराबाद में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के तहत आयोजित इन्वेस्टर मीट को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्रोन तकनीक, फूड प्रोसेसिंग और टिकाऊ खेती के मॉडल राजस्थान की कृषि भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। श्री शर्मा ने हैदराबाद को आईटी और एग्रीटेक नवाचारों का बड़ा केंद्र बताते हुए वहां के निवेशकों और उद्यमियों को 23 से 25 मई तक जयपुर में होने वाले ग्राम में शामिल होने का निमंत्रण दिया।
1: हम एग्रीटेक स्टार्टअप को बढ़ावा दे रहे हैं, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन और किसानों को मार्केट से सीधे जोड़ने की पहल भी हम कर रहे हैं। राजस्थान में हम बीज उत्पादन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्री प्रोसेसिंग के बड़े हब विकसित करना चाहते हैं। अगर आपकी एक दो यूनिट यहाँ लग रही है तो एक राजस्थान में भी लगाएं। इसलिए आपसे मेरा आग्रह है कि आप नई तकनीकी के आधार पर, नए विचारों के आधार पर पधारो हमारे देश।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने आज जयपुर में महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भाग लिया। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर ब्लॉक में सावित्रीबाई फुले ई लाइब्रेरी खोली जाएंगी। श्री शर्मा ने कहा कि सभी जिलों में महात्मा ज्योतिबा फुले आदर्श विद्यालय और 16 नए छात्रावास बनाए जाएंगे। साथ ही बूंदी के हिंडोली में महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की जीवनी पर आधारित पैनोरमा और पुस्तकालय भी बनाया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2021 को निरस्त कर दिया है। अब यह परीक्षा नए सिरे से आयोजित की जाएगी। आयोग के अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने बताया कि परीक्षा इस वर्ष सितंबर में होना संभावित है। इस परीक्षा में केवल वे ही 3,83,097 अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे जो पूर्व में आयोजित दोनों प्रश्न पत्रों की लिखित परीक्षा में बैठे थे। नए आवेदकों को इसमें मौका नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को उनके आवेदन पत्रों में सुधार के लिए 16 मई से 30 मई तक का समय दिया गया है। इस दौरान मोबाइल नंबर, ईमेल और पत्राचार का पता अपडेट किया जा सकेगा। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रसूताओं की मृत्यु के मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। इस बीच अस्पताल प्रशासन ने आज 4 महिलाओं की किडनी फेल होने की पुष्टि की है जिनका डायलिसिस किया जा रहा है। वहीं आज राज्य के ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक ने अस्पताल का दौरा कर वार्डों और ऑपरेशन थियेटर में स्टेरिलाइजेशन

0: व्यवस्था का निरीक्षण किया। औषधि नियंत्रण विभाग की ओर से दवाओं और फ्लूइड के 23 नमूने लिए गए हैं। एहतियात के तौर पर संबंधित दवाओं के इस्तेमाल पर पूरे प्रदेश में तत्काल रोक लगा दी गई है। गौरतलब है कि इस घटना में अब तक 2 प्रसूताओं की मृत्यु हो चुकी है। उपमुख्यमंत्री और महिला तथा बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि सरकार प्रदेश में बच्चों और मातृ शक्ति के बेहतर स्वास्थ्य, पोषण तथा सर्वांगीण विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। वे आज जयपुर में विभाग के अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्रों पर निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण और पौष्टिक आहार समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री ने पोषाहार वितरण में पारदर्शिता और स्वच्छता सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए कहा कि इससे स्वस्थ और सशक्त राजस्थान का संकल्प साकार होगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना नहीं करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। सचिव ने बताया कि मार्च से अब तक 6 लाख से अधिक पीएनजी कनेक्शन चालू किए जा चुके हैं।
1: अभी तक 6.5 लाख से अधिक पीएनजी कनेक्शंस को गैसीफाई किया गया, ये मार्च से अब तक के आंकड़े मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा 2,66,000 से अधिक नए कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है। 7 लाख से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने अपने आप को पीएनजी कनेक्शन के लिए रजिस्टर किया है।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश भर में कल इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सभी अदालतों, उपभोक्ता मंचों और राजस्व न्यायालयों में राजीनामा योग्य मामलों का निपटारा किया जाएगा। इसमें आपसी सहमति से ट्रैफिक चालान, चेक बाउंस, बैंक ऋण और पारिवारिक विवादों को सुलझाया जाएगा। सवाईमाधोपुर जिले में लोक अदालत के लिए कुल 10 बेंचों का गठन किया गया है। झुंझुनू जिले में करीब 15,000 मामलों को राजीनामा के लिए चिन्हित किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव डॉ महेंद्र के सिंह सोलंकी ने बताया कि लोक अदालत में मामलों का निस्तारण आपसी समझ और सहमति से किया जाता है।
2: पार्टीज के मध्य समझौता कराने का प्रयास किया जाता है। समझौते के आधार पर दोनों पक्षों में जब राजीनामा हो जाता है, अंतिम रूप से प्रकरण का निस्तारण हो जाता है। इसके लिए पूरे जिले में 11 बेंचों का गठन किया गया है। मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोक अदालत में पधारें और अपने जो समझौते वाले जो प्रकरण हैं उनका राजीनामा के द्वारा अधिक से अधिक निस्तारण करवाएं। समाधान नाम से एक पोर्टल है जिससे ऑनलाइन के माध्यम से भी इनका निस्तारण करवाया जा सकता है।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में भाजपा विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना गया। नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में इन दिनों प्रदेश भर में काउंटडाउन योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज सवाईमाधोपुर में आयुर्वेद विभाग की ओर से दशहरा मैदान में योग शिविर लगाया गया। इसमें पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने लोगों के साथ योगाभ्यास किया और करो योग रहो निरोग का संदेश दिया। कोटपुतली बहरोड के पावटा और पाली के कोलीवाड़ा में भी स्कूली विद्यार्थियों के लिए योग शिविर आयोजित किए गए। और अब मौसम। प्रदेश में आज ज्यादातर स्थानों पर मौसम शुष्क बना हुआ है। पश्चिमी राजस्थान में तेज गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित है। बाड़मेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां चिलचिलाती धूप से लोगों की दिनचर्या पर असर हुआ है। अस्पतालों में लू और तापघात के मरीजों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे बाड़मेर संवाददाता।
3: जिले में चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों के चलते लोग बेहाल हैं। गर्मी और लू की गंभीरता को देखते हुए तापघात और अन्य ताप

0: जनित बीमारियों के मरीजों के इलाज के लिए विशेष बंदोबस्त किए गए हैं। जिला अस्पताल में 18 बेड आरक्षित रखने के अलावा 2 विशेष टीमों का गठन किया गया है। भामाशाहों के सहयोग से अस्पताल परिसर में प्याऊ और वाटर कूलर स्थापित किए गए हैं। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
1: पाली में भी तेज गर्मी को देखते हुए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को कड़ी धूप में नहीं निकलने और सूती कपड़े पहनने का परामर्श दिया है। मौसम विभाग ने जोधपुर और बीकानेर संभाग में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना व्यक्त की है। वहीं आज नागौर, ब्यावर, अजमेर, जयपुर तथा टोंक जिलों में धूल भरी तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना है। इन स्थानों पर कहीं कहीं ओले भी गिर सकते हैं। वहीं सवाईमाधोपुर और बूंदी में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बरसात का येलो अलर्ट दिया गया है। सवाईमाधोपुर जिले में टीबी मुक्त भारत 100 दिवसीय अभियान के तहत विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। आज बामनवास के भांवरा और खंडार के बलवन खुर्द में शिविर लगाए गए। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ अमित कुमार गोयल ने बताया कि यह अभियान 12 मई तक जिले के विभिन्न गांवों में जारी रहेगा। इन शिविरों में टीबी से जुड़ी विभिन्न जांचें निःशुल्क की जा रही हैं। पाली के व्हीलचेयर क्रिकेट खिलाड़ी भरत पवार का चयन भारतीय टीम में हुआ है। वे श्रीलंका में 25 से 28 मई तक आयोजित होने वाली इंटरनेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट T20 सीरीज में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। भरत पवार ने साल 2019 में इस खेल की शुरुआत की थी और वे साल 2022 में राजस्थान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे। क्रिकेट के साथ साथ उन्होंने पैरा स्विमिंग में स्वर्ण और राष्ट्रीय स्तर पर व्हीलचेयर रग्बी में रजत पदक हासिल किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर कल ओडिशा तट पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राज्य सरकार किसानों को नई कृषि तकनीकों और नवाचारों से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध। आरपीएससी की ओर से एसआई भर्ती परीक्षा 2021 फिर से आयोजित की जाएगी। इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत कल प्रदेश की सभी अदालतों, उपभोक्ता मंचों और राजस्व न्यायालयों में राजीनामा योग्य मामलों का निपटारा किया जाएगा। और पश्चिमी राजस्थान में गर्मी के प्रकोप से एक ओर जनजीवन प्रभावित, वहीं कुछ जिलों में आंधी के साथ हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से उदयपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख हरीश पालीवाल ने तैयार किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछले दिनों उदयपुर का दौरा किया। उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सड़क, पानी, बिजली और सरकारी योजनाओं की धरातल पर प्रगति पर चर्चा की गई। उन्होंने उदयपुर में पर्यटन को विकसित करने संबंधी दिशा निर्देश भी दिए। विशेष रूप से उदयपुर के मैरिज डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री इसके बाद प्रतापगढ़ के भंभोरी गांव के लिए रवाना हुए। इससे पहले डबोक हवाई अड्डे पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। उदयपुर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई हालिया कार्रवाई में गड़बड़ियों के कारण 2 निजी आईवीएफ सेंटरों का पंजीयन निलंबित किया गया। राज्य सरकार ने प्रदेश में चलाए जा रहे आईवीएफ सेंटर्स में पारदर्शिता, वैधानिक अनुपालन और नैतिक मानकों को सुनिश्चित करने के लिए कड़ा रवैया अपनाया है। इन नियमों का उल्लंघन करने वाले 2 सेंटरों का पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि इन सेंटर्स में बड़ी गड़बड़ियां पाई गई। राज्य स्तर पर जांच के लिए सरोगेसी के नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में टीम का गठन किया गया है। साथ ही जिले में पंजीकृत सभी आईवीएफ सेंटर्स की सघन जांच के लिए अलग अलग टीमें बनाकर औचक निरीक्षण किया गया। इन्होंने 28 केंद्रों का निरीक्षण किया। प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि एआरटी विनियमन अधिनियम 2021 के प्रावधानों का उल्लंघन

0: किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज के अधीन चलाए जा रहे महाराणा भोपाल राजकीय चिकित्सालय के ईएनटी विभाग ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विभाग के अध्यक्ष डॉ. नवनीत माथुर ने बताया कि विशेषज्ञ चिकित्सकों ने क्षेत्र में पहली बार बिना किसी बाहरी चीरे के मुंह के रास्ते से थायराइड ग्रंथि का ऑपरेशन करने में सफलता हासिल की है। ऑपरेशन में अत्याधुनिक अल्ट्रासोनिक डिवाइस का प्रयोग किया गया और एंडोस्कोपी की मदद से स्क्रीन पर देखते हुए ये ऑपरेशन हुआ। इससे मरीज को दर्द भी कम होता है और रक्तस्राव भी कम होता है। जिले में इन दिनों ग्राम रथ अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत उदयपुर ग्रामीण, मावली, वल्लभनगर, गोगुंदा और खेरवाड़ा क्षेत्र के गांवों में ये रथ पहुंचा। इस दौरान कला जत्थों की ओर से आकर्षक प्रस्तुतियों के माध्यम से सरकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। जगह जगह ग्रामीणों ने रथ का पूजन कर स्वागत किया। गौरतलब है कि इस अभियान के तहत 13 विभागों की जानकारी घर घर पहुंचाई जा रही है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पिछले दिनों उदयपुर प्रवास पर रहे। उन्होंने बड़गांव की वाटी ग्राम पंचायत में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के नए भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा और शिक्षा विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री ने बेदला में भी राजकीय विद्यालयों के नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण किया। वाटी में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने विद्यार्थियों से मेवाड़ के महापुरूषों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से जर्जर विद्यालय भवनों को ध्वस्त कर नए विद्यालय भवन बनाने की कार्रवाई तेजी से की जा रही है। श्री दिलावर ने गांवों में नियमित साफ सफाई के भी निर्देश जारी किए। वहीं बेदला में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री ने शौर्य चक्र विजेता मेजर मुस्तफा और प्रकाश खटीक की माताओं का सम्मान किया। राज्य सरकार की ओर से उदयपुर, बांसवाड़ा और सिरोही में चंदन वन विकसित करने को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। वन मंत्री संजय शर्मा उदयपुर पहुंचे। उन्होंने पिछोला झील के पास कालका माता वन क्षेत्र का जायजा लिया। वन मंत्री ने अधिकारियों से चंदन वन विकसित करने की योजना पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि चंदन के पेड़ आर्थिक, औषधीय और पर्यावरण की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से कल से होने वाली प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा के लिए जिले में व्यापक तैयारियां की गई हैं। ये परीक्षा जिले में 189 केंद्रों पर होगी, जिसमें करीब 59,300 से ज्यादा अभ्यर्थी हिस्सा लेंगी। ये परीक्षा दो दिनों में अलग अलग विषयों के लिए होंगी। प्रशासन की ओर से सुचारू और पारदर्शी परीक्षा के आयोजन के लिए पूरी तैयारी की गई है। इसके साथ ही उदयपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूं, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो, राज्य सरकार किसाना ने नवी तकनीक और नवाचाराओं जोड़ वो तय कीनो। राजस्थान लोक सेवा आयोग री ओर एसआई भर्ती परीक्षा 2021 उजू ली जावेला। प्रदेश में ई साल री दूजी राष्ट्रीय लोक अदालत काल लगाई जावेला। और राज्य रातुणी हल्का माए जबरदस्त गर्मी, दूजा हल्का माए कठे कठे बरसात रा आसार। समाचारां सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार, किसाना ने तकनीक और निवेश रो पूरो फायदो दिरावन सारू राजस्थान सरकार खेतीबाड़ी और वाऊ जुड़िया महकमा रो एक जोड़ बनार काम कर रही है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 रा सिलसिला माए आज हैदराबाद माए राखी जिया निवेशक सम्मेलन माए आ जानकारी दीनी। वह हैदराबाद ने आईटी और एग्रीटेक नवाचारा रो मोटो केंद्र बताता था कहो के ड्रोन तकनीक, फूड प्रोसेसिंग और टिकाऊ खेती रा मॉडल राजस्थान रा कृषि भविष्य सारू खास है। वह राज्य में चल रही ईआरसीपी और यमुना जल समझौता सरीखी मोटी परियोजनाओं रो जिक्र करता था कहो के सरकार किसाना ने जरूरी तादाद में पानी और साधन मुहैया कराने तय कीनो है। श्री शर्मा निवेशका और उद्यमिया ने 23-25 मई ताई जयपुर माए फेवन वाला खास ग्राम सम्मेलन माए शामिल फेवन रो न्योतो दिनो।
2: हम एग्रीटेक स्टार्टअप को बढ़ावा

0: दे रहे हैं डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन और किसानों को मार्केट से सीधे जोड़ने की पहल भी हम कर रहे हैं। राजस्थान में हम बीज उत्पादन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्री प्रोसेसिंग के बड़े हब विकसित करना चाहते हैं। अगर आपकी एक दो यूनिट यहाँ लग रही हैं तो एक राजस्थान में भी लगाएं। इसलिए आपसे मेरा आग्रह है कि आप नई तकनीकी के आधार पर, नए विचारों के आधार पर पधारो हमारे देश।
1: इन पहली मुख्यमंत्री महात्मा ज्योतिबा फुले री 200वीं जयंती रा सिलसिला माए जयपुर माए राखी जिया कार्यक्रम माए शामिल फिया। श्री शर्मा कहो कि प्रदेश रा हर ब्लॉक माए सावित्री बाई फुले ई लाइब्रेरी खोली जावेला और सगला जिला माए महात्मा ज्योतिबा फुले आदर्श विद्यालय खोलिया जावेला और 16 नुआ छात्रावास बनाया जावेला। श्री शर्मा कहो कि बूंदी जिला रा हिंडौली माए महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले री जिंदगी रो दर्शाव करण वालो पैनोरमा और लाइब्रेरी ही बनाया जावेला। राजस्थान लोक सेवा आयोग पुलिस उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2021 निरस्त करती नी है। राज्य सरकार री सिफारिश पाछे निरस्त करी जी आ परीक्षा अब नुआ सिराओं पाछी ली जावेला। आयोग रा अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि सितंबर 2026 माए संभावित ई परीक्षा माए पहली लेरी जी लिखित परीक्षा रा दोनों पेपर देवन वाला 383,097 उम्मीदवार ही शामिल फै सकेला। नुआ उम्मीदवार आ परीक्षा नहीं दे सकेला। उम्मीदवारा ने अर्जियां माए सुधार सारू 16-30 मई ताई रो टेम दियो चियो है। इन माए मोबाइल नंबर, ईमेल और चिट्ठी पत्री रो पतो अपडेट करियो जा सकेला। बदलाव पहली वन टाइम रजिस्ट्रेशन रातेत केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनो जरूरी वेला। कोई बदलाव नी करण री सूरत माई पोर्टल माथा जार फोटो और दस्तखत काम लेवन सारू सहमति देवनो और अर्जी फाइनल सबमिट करनो जरूरी वेला। कोटारा न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल माए जापावली लुगाईया री मौत रा मामला री जांच सारू समिति बनाती रीची है। संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल आ जानकारी दीनी। इन विजय अस्पताल प्रशासन जापावली चार महिलाओं रे किडनी फेल वे जावन री आज पुष्टि कर दीनी। आरो डायलिसिस करियो चाचियो है। राज्य रा ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक अस्पताल रो दौरो कर वार्डा और ऑपरेशन थिएटर माए साफ सफाई री व्यवस्था रो जायजो लीनो। औषधि नियंत्रण विभाग री ओरू दवाइयां और फ्लूइड रा 23 नमूना लिया चिया है। इन बीच जयपुर बुलाईचिया डॉक्टरां री टीम ही मरीजा रा इलाज रा काम माथा नजर रख रही है। एहतियातन सरकार संबंधित दवाइयां काम लेवन पर पूरा राज्य माए तुरंत रोक लगाती नी है। ध्यान जोग है कई घटना माए हाल ताई जापा वाली दो लुगाईया री मौत वे की है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कहो है कि राज्य सरकार बच्चा और मायड़ा रा बेहतर स्वास्थ्य पोषण और पूरा विकास सारू पूरा मनु काम कर रही है। वे आज जयपुर माए महिला और बाल विकास विभाग रा एहलकारा सागे राखी जी मीटिंग माए बोल रही ही। दिया कुमारी पोषाहार वितरण माए साफ गोई और साफ सफाई तय करण माथे जोर देता थका कहो कि इनु स्वस्थ और मजबूत राजस्थान रो सपनो साचो वेला। देश माए घरेलू रसोई गैस रिपूर्ति आसानी करी जा रही है और कठे हुई पूर्ति माए कमीरा कोई समाचार नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय रे सचिव सुजाता शर्मा आज नई दिल्ली माए कहो कि सरकार ग्राहका ने गैस री कमियों बचावन और इनरा मोल माए थरता राखण सारू सगला जरूरी जतन कर रही है। वे बतायो कि मार्च महीनाओं हाल ताई 6 लाख बत्ता पीएनजी कनेक्शन चालू कर दिया चिया है।
2: अभी तक 6.5 लाख से अधिक पीएनजी कनेक्शंस को गैसीफाई किया गया है। ये मार्च से अब तक के आंकड़े मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा 2,66,000 से अधिक नए कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है। 7 लाख से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने अपने आप को पीएनजी कनेक्शन के लिए रजिस्टर किया है।
1: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रदेश में आए काल इन साल री दूजी राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जावेला। इन तेत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण री ओर सगली अदालतां, उपभोक्ता मंचा और राजस्व अदालतां माए गाड़ियां रा चालान, चेक बाउंस वेवन, बैंक लिया जिया कर्ज रा चुकारा और घरेलू झगड़ा सरीखा राजीनामाओं निपटाया जावन वाला मामला रो निपटारो करियो जावेला। सवाई माधोपुर जिला माए लोक अदालत

0: सारू 10 बेंच बनाई ची है। जिला मुख्यालय माथा 4 और गंगापुर सिटी माए 2 बेंच सुनवाई करेला। इनके अलावा बौनली, खंडार, बामनवास और चौथ का बरवाड़ा माई 1-1 बेंच लगार मामला निपटाया जावेला। झुंझुनू जिला माए लोक अदालत निपटारा सारू ले जाया जावन वाला करीब 15,000 मामला ने पिछाण करी ची है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रा सचिव डॉक्टर महेंद्र के सिंह सोलंकी बतायो के लोक अदालत माए मामला नो निपटारो समझाइश और आपसी सहमतियों करियो चावे है।
1: पार्टीज के मध्य समझौता कराने का प्रयास किया जाता है। समझौते के आधार पर दोनों पक्षों में जब राजीनामा हो जाता है अंतिम रूप से प्रकरण का निस्तारण हो जाता है। इसके लिए पूरे जिले में 11 बेंचों का गठन किया गया है। मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोक अदालत में पधारे और अपने जो समझौते वाले जो प्रकरण है उनका राजीनामा के द्वारा अधिक से अधिक निस्तारण करवाएं। समाधान नाम से एक पोर्टल है जिससे ऑनलाइन के माध्यम से भी इनका निस्तारण करवाया जा सकता है।
0: भारतीय जनता पार्टी रा आला नेता सुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल रा नुआ मुख्यमंत्री बनेला। आज कोलकाता माए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह री मौजूदगी माए भी भाजपा विधायक दल री मीटिंग माए वाना दल रा नेता चुनी चिया। श्री अधिकारी बंगाल माए भाजपा री पहली सरकार रा मुखिया फैला। पश्चिम बंगाल माए पहली दफा भाजपा रा राज माए मंत्रिमंडल माए शामिल कर जावन वाला ने काल कोलकाता रा ब्रिगेड परेड ग्राउंड माए शपथ दिराई चावेला। 21 जून ने मनाया जावन वाला 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रा सिलसिला माए राज्य माए जागरूकता कार्यक्रम रख्या जा रहा है। सवाई माधोपुर माए आयुर्वेद विभाग री ओर 50 दिन रो काउंट डाउन योगा अभ्यास कार्यक्रम चलायो जा रहा है। वठे पहली वाला सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया दशहरा मैदान माए लोगां सा गए योग रो अभ्यास कीनो और करो योग रहो निरोग रो संदेश दीनो। कोटपुतली बहरोड जिलारा पावटा और पाली जिलारा कोलीवाड़ा माए स्कूली विद्यार्थियां सारू योग शिविर लगाई चिया। टीबी मुक्त भारत बनावन रा 100 दिन रा अभियान माए सवाई माधोपुर जिला माए खास स्वास्थ्य शिविर लगाया जा रहा है। आज बामनवास कने भावरा और खंडार कने बलवन खुर्द माए शिविर लगाई चिया। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर अमित कुमार गोयल बतायो कि शिविरा माए चलती फिरती मशीनाओं छाती रा एक्सरे खून माए शुगर और ब्लड प्रेशर री जांच करी जी। वो अभियान जिला रा न्यारा न्यारा गांव माए 12 मई ताई चलेला। रब मौसम प्रदेश माए आज घन खरठोना मौसम सूखो रहो। राज्य रा आतुणी हल्का माए जबरदस्त गर्मी और लू जिंदगी माथे असर पड़ियो है। माना बाड़मेर खबरनवीस बतायो कि जिला माए पड़ रही जोरदार गर्मी रा कारण जिंदगी माथे असर पड़ियो है और अस्पताल माए लू रा मरीजा रा इलाज सारू खास व्यवस्था करी ची है।
2: जिले में चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों के चलते लोग बेहाल हैं। गर्मी और लू की गंभीरता को देखते हुए तापघात और अन्य ताप जनित बीमारियों के मरीजों के इलाज के लिए विशेष बंदोबस्त किए गए हैं। जिला अस्पताल में 18 बेड आरक्षित रखने के अलावा 2 विशेष टीमों का गठन किया गया है। भामाशाहों के सहयोग से अस्पताल परिसर में प्याऊ और वाटर कूलर स्थापित किए गए हैं। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
0: बालोतरा जिला माए जसोल री लड़कियां री सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल माए आज मतदाता जागरूकता कार्यक्रम राखी चियो। इन तेज टाबरिया जागरूकता रैली निकाली। रैली माए नारा लगार वोट देवन रा महत्व री जानकारी दी री ची। ये मौके विद्यार्थियों ने वोट देवन री प्रक्रिया और लोकतांत्रिक अधिकारा माथे आधारित नानी फिल्म बताई ची। शिक्षा मंत्रालय री ओर एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल रा तेत छठो युवा संगम राख्यो जा रियो है। इनरो मकसद न्यारा न्यारा राज्य और केंद्र रा राज वाला प्रदेशा रा नौजवाना माए सांस्कृतिक एको बधावन सागे लोगां बीच संपर्क मजबूत बनावनु है। इन कार्यक्रम रा तेत देश भर चुनी जा युवा प्रतिभागी काम करण रा बेहतर तरीका रा न्यारा न्यारा पहलुआ री समझ हासिल करण सारू सहयोगी राज्य और केंद्र रा राज वाला प्रदेशा रो दौरो कर रहा है। पाली रा दिव्यांग व्हीलचेयर क्रिकेट खिलाड़ी भरत पवार इंटरनेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट T20 सीरीज सारू भारत री टीम माए चुनी चिया है। आहोड़ श्रीलंका माए 25-28 मई ताई राखी चावेला। भरत पवार साल 2022 माए राजस्थान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम रा कप्तानी रहा। आखिर माए खास समाचार एक कर फेरू सुन ले रहो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो राज्य सरकार

0: किसाना ने नवी तकनीक और नवाचाराओं जोड़बो तहकीनो राजस्थान लोक सेवा आयोग री ओरू एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पाछी ली जावेला। प्रदेश में ई साल री दूजी राष्ट्रीय लोक अदालत का लगाई जावेला और राज्य रात उन्हीं हल्का माए जबरदस्त गर्मी दूजा हल्का माए कठे कठे बरसात रा आसार। इसागी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भियो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो चावेला। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चौपाल।

0: लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम चौपाल।
1: गांव ग्वार अर खेत खलियानरी बात, मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्स। सिंजिया 7 बजिया सुनो ना भूलो आप रो पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल।

पतरी लिखूं पी वने मारो कागज भीज गयो अरे नेने जलड़ो मावे नहीं मारो हिमड़ो।

रात अंधारी पवश पड़े कद पहुंचा पाला ए जुना बेरती तारिया जुना बेरती तारिया मारा बेरी।

राजस्थानी लोक गीतार लोक बजनारो ओ है फरमाइशी कार्यक्रम और आप रे साथे है आपरो साथी गुरविंदर बिश्नोई गांव चापासर सू प्रेम कुमार प्रजापति आदुराम प्रजापत राधा प्रजापति लाछा प्रजापति लीला कुमारी संतोष कुमार कोमल प्रजापति और आना सगला घरवाला चाल कला पंजाब सू अमरजीत बंगा परमिंदर बंगा राजा बंगा कुलविंदर कौर अम्बा चहल रूपलाल बंगा माने ईमेल भेजियो है रमेश चंद्र चौहान मोहनी चौहान कल्पित चौहान बेबी गर्वी और आना घराला माने ईमेल भेजियो है कुड़ी हाउसिंग बोर्ड पटेल नगर मलोट पंजाब सू रमेश कुमार जाजोरिया गीता रानी जाजोरिया गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया माने कागज लिखियो है गांव नारवा इंद्रो का सून नरपतलाल सोनी शिवम और वैशाली राजू राम सेन पद्मा सेन प्रतिज्ञा सेन और रामनिवास सेन माने कागज लिखियो है खारा बेरा भीमावता लूणी सू आगलो कागज है गांव छापला सू मांगीलाल सीताराम सुरेंद्र कुमार खुशबू और विद्या देवी दुर्ग छत्तीसगढ़ सू माने ईमेल भेजियो है डोमन ठाकुर सुमन ठाकुर मिथिलेश तारनी सूरज ज्योति और बाबू रियांश ठाकुर और ईमेल आयो है गांव कुंदनपुरा बाड़मेर सू जगदीश सुमरा मोहनलाल नरेश कुमार निम्बाराम और आना सगला घरवाड़ा मदनलाल झुरिया गजेंद्र शिल्पा मनप्रीत हेमलता झुरिया और आना घरवाड़ा माने ईमेल भेजियो है छिड़िया बावड़ी जोधपुर सू गांव अरनियाली तहसील धोरी मीना बाड़मेर सू फरसाराम खत्री भवानी शंकर खत्री पंकज खत्री रेखा निर्मा किरण शारदा खत्री भाग्यश्री हार्दिक खत्री सूरज देवी और आनो सगलो परिवार आप सबरी फरमाइश माते सुनो आ रचना।

0: राजस्थानी लोक गीतार लोक बजनारो ओ है फरमाइशी कार्यक्रम और आप रे साथे है आप रो साथी गुरविंदर बिश्नोई। साथिया आप माने ईमेल भेज और आपरा पसंदीदा लोक गीत सुन सको हो। मानी ईमेल अगर आप लिखनी चाहो chopal.jodhpur@gmail.com। अंग्रेजी रे छोटा अक्षरा में चौपाल यानी chopal.jodhpur@gmail.com ओ है मानो पतो जिन्हें मुजब आप माने ईमेल भेज सको हो।
1: ओ ईमेल भेजियो है भोपालगढ़ सु धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और पूजा परिहार। भोमेश परिहार माने ईमेल भेजियो है डूंगरपुरा शेरगढ़ सु, गांव रामपुरा भाटियान सु माने ईमेल भेजियो है राम सिंह देवासी और थाना राम देवासी।
0: खोकरा मारवाड़ सु लिखन वाला है सोहनदास, वैष्णव लक्ष्मण दास, युवराज, खुशवंत भंवरदास, ओम प्रकाश, कालूदास, विद्या देवी, महिमा, गुंजन और आना सगला घरवाला। और कागज माने कन आयो है जोधपुर सु, लिखियो है रघुवीर, किशोर, देवेंद्र सिंह, जबर सिंह खींची और रतन सिंह खींची। और ईमेल आयो है पाबू राम, तेजा राम, मनीष, सुमता बेनीवाल और आना सगला।

0: तरवाड़ा नेवरा रोड तहसील ओसिया सु गांव कुड़ी सु ठाकुर रूप सिंह कुंवर दिग्विजय सिंह मंजू कंवर सोडा मुमल कंवर और अन्नपूर्णा कंवर और कागत आयो है गांव चैनपुरा तहसील धोरीमीना बाड़मेर सु जगदीश भारती विजेश भारती नरेश भारती और मलिता गोस्वामी रो
1: उमरिया सु दीप्ति रजावत सोनम राजावत रेखा और रेशमा राजावत
2: कागद आयो है धोबी घाट इंदिरा कॉलोनी जोधपुर सु लिखन आला है नंद किशोर बारिया नंदू धनवंती कालू सुमन चांदनी और आनो सगलो परिवार
0: भोपालगढ़ सु घनश्याम सिंह चौधरी और अंकित चौधरी आप सबरी फरमाइश माते सुनो आ रचना।

0: राजस्थानी लोक गीतार लोक बजनारो ओ है फरमाइशी कार्यक्रम और आप रे साथे है आप रो साथी गुरविंदर बिश्नोई। कागद आयो है मलोट कैंप पंजाब सु सतीश मिगलानी, सीमा शाइना, विशाल मिगलानी, सुप्रिया, अनमोल, धर्मपाल, महावीर और रमेश मिगलानी रो।
1: बाले रो ओ कागद आयो है जय नारायण सोलंकी, राकेश सांकला, जितेंद्र सोलंकी, लक्ष्मण, हरीश, विष्णाराम, गोपीलाल सोलंकी, इंदिरा राम सोलंकी और आना घराला।
0: झालावाड़ सु ओ कागद आयो है लिखण वाला है हर्षिता रामेश्वर काना।

0: सफलता कपिल, मीनाक्षी, सत्यनारायण, मनोहर बाई और प्रभुलाल बागरी।
1: रातनाडा सु नरेंद्र भाटी, वीणा भाटी, प्रीति भाटी, 28 माणा नियमित श्रोता बाबूलाल मरेठा और आना सगला दोस्त।
0: खुड़ेचा बिपाड़ शहर सु माने कागज लिखे है हीरा लाल श्रीमाली, जिज्ञा देवी श्रीमाली, सीमा, खुशी, विशाल, मन्नत, सुनील, किशोर, ओम प्रकाश श्रीमाली और आनो सगलो परिवार।
1: और कागज आयो है गांव जेसला सु, लिखियो है फूलाराम थोरी, शिवलाल थोरी, हरचंद राम थोरी, मल्लू राम थोरी, ओम प्रकाश फौजी, दिनेश संतोष, अर्जुन राम करीर और रेशमा राम फौजी।
0: और ईमेल माने कनायो है सादुल शहर जिला श्री गंगानगर सु, लिखण वाला है राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ और आना सगड़ा साथी, जोधपुर सु अशोक कड़ेला और ए है धारू राम भूरिया।
1: ओ ईमेल आयो है चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सु, भेजन वाला है दिनेश सोडा, रुद्राक्ष सोडा, भव्यांश, रमनदीप और राम किशोर।
0: बैनी पट्टी मधुबनी बिहार सु कल्पना वाल्मीकि और मैथिली वाल्मीकि, गांव बेरावास तहसील खिमसर नागौर सु। और ईमेल आयो है भुट्टा राम मेघवाल, सुनील, मुकेश, भूरा राम, शोभा राम, लादू राम, मंजू, मोनिका, सुरता, पूजा और शारदा मेघवाल रो। वीरेंद्र सिंह उदावत, हिम्मत सिंह, मेघराज, पुष्पेंद्र सिंह, मनोहर सिंह, नरेंद्र सिंह, हिमांशु, वीर बहादुर सिंह, भरत सिंह और सगलो उदावत परिवार माने ईमेल भेजियो है जसवंताबाद नागौर सु। आप सबरी फरमाइश माते सुनो आ रचना।

0: राजस्थानी लोक गीतार लोक भजनारो ओहे फरमाइशी कार्यक्रम और आप रे साथे है आपरो साथी गुरविंदर बिश्नोई गांव आरंग तहसील शिव बाड़मेर सु बाबूराम जयपाल और कागज माने कने आयो है गांव तापू तहसील ओसिया सु लिखियो है संतोकाराम मेघवंशी पटकू धीरू अशोक भाटी कुसुम भाटी आरती एलची बिदकी भाटी लाखाराम भाटी दिलीप पार्वती दिव्या अर आना सगला घराला गांव पावनासर जैसलमेर सु जितेंद्र पवार गुलाब पवार तेजपाल नेपाल पवार पारस पवार गोविंद पवार गौतम पवार अर भरत पवार गांव जैसला तहसील फलोदी सु राजाराम जंवर अर आना साथी बाड़मेर सुई नाथुराम कोडचे माने ईमेल भेजे है और ईमेल माने कने आयो है रामदेरा सु दिनेश चौहान रो गांव मेलाना सु छेलाराम मेघवाल रविन्द्र देवेंद्र अनिता अर फूली देवी मेघवाल गांव केलनसर फलोदी सु माने ईमेल भेजियो है रूपाराम जाखड़ फूली देवी चुतराराम जाखड़ जगदीश राम मालाराम जाखड़ अर आना सगला घरवाला गांव गुड़ा विष्णुयांसु लिखियो है जवरीलाल बेरवाल फगलू राम मांजू छोगाराम बेरवाल भानाराम बेरवाल जेताराम विष्णु अनूप सोहनी ममता सरिता दिव्यांशी दीपू चीकू किट्टू अर अणा सगला घरवाला और ईमेल आयो है गांव बीकम कोरसू गौतम परिहार अरविंद परिहार सोहन परिहार आरती दुर्गा मंजू संगीता कुलदीप हंसपाल अर ओम प्रकाश परिहार और ईमेल आयो है धन्ने की ढाणी तहसील सिणधरीसू गणेश तरड़ चेतन गिलकी प्रमोद पारसी ममतेस मोहनलाल तरड़ अर विकास तरड़ रो आगोड़ाई सु निम्बाराम सारण राम स्वरूप सुरेश गोपाल विकास अर मनोहर सारण हांडीखेड़ा सिरसा हरियाणा सु राधेश्याम शर्मा इंदिरा अर सार्थक शर्मा
1: गांव चाड़ी सु उत्तम चंद छाजेड़ राणूलाल छाजेड़ शांतिलाल छाजेड़ कमला देवी छाजेड़ अर आणो सगलो परिवार औका गदायो है गांव तिवरी सु लिखियो है वीरेंद्र टाक बसी नगर सु जितेंद्र टाक अशोक पीयूष भंवरलाल चौधरी नरपत चौधरी अर आणा सगला साथी
0: आप सबरी फरमाइश माते सुनो आ रचना अरे

0: मदद करो नवलो माँ, ओ नवलो माँ मदद करो, सब लोग मदद करो, नवलो माँ आडो खोलो, ओ नवलो माँ मदद करो नवलो
1: माँ,
0: अरे मदद करो नवलो माँ,
1: फाटक हो डाली क्यों रोड़ा करे आउरी कर, मैं
0: मदद कर दो नवलो माँ,
1: अरे तो मदद करे मदद से बात करे कोई, मैं आउरी और कितू नी
0: राम राम पगे लागू
1: जीव ती रे क्या जीव नी धान पर खाऊंगा
0: नवलो माँ, जल्दी करो थे मार थोड़ी मदद करो,
1: अरे कहा मदद करे मदद करे,
0: अरे थे है लोग मदद करो, इंसान की मदद करो थे,
1: अरे इतनी बह जा पानी पी जा थार गाँव है मगज में गर्मी चली उड़ी है,
0: नवलो बा बार देखो मैं आउते टाइम मैंने भारी एक्सीडेंट देख लियो
1: भाई,
0: अब मारे नवलो बा चित ठिकाने नहीं है, मैं थान बताऊ,
1: अरे कटे हो भाई किन हो,
0: अरे हाईवे माते नवलो बा टाबर लुगाई ने हैंग पड़ गया,
1: क्या हूँ गाड़ी,
0: अरे बचीड़ लागियो एडो जोर हूँ नवलो बा, काई बताऊ थाने, ओ हो
1: कहूँ है जी को फटफटियों पड़िया,
0: हाँ
1: अरे भाई यू कहूँ कोई कह है जी कोई चक्कर ठोकी,
0: चक्कर ठोक दी नवलो बा, आजकल बहवे थाने ठाए यू बहु बहु करता ही,
1: अरे भाई घनी लागी तो कोनी
0: कोई लोगारी होचे कोनी, लागी पचकाई कोनी बची ठोके जड़ लागी ही जाए,
1: अरे भाई कड़ हमसे आते हैं दिन बजिए मार दो एकदम कम भाई, कार जो कड़पन ठोक जा,
0: अरे माँ तो देख ना यू जी मारो तो नवलोबा था ना काई बताऊ बतो ही गयो उठे देख न एक बार तो मारा हाथ पाँव फूल गया, काई करूँ हम जी नहीं आवे अटी ना हम
1: कोनी कौन मदद करी की कोई एम्बुलेंस बुले ही कोई मिनका ने है जो बेड़ा उबारा किया क्यों करियो
0: मिनकारा तो यह फूटियोड़ा है नवलोबा थाने काई बताओ गोबाइल कार्ड पर मोबाइल गोबाइल कार्ड एर वीडियो बड़ा बताओ बटे उबा उबा, मैं तो मारे मोबाइल रो सही इस्तेमाल करियो नवलोबा फटाफट है नी एम्बुलेंस हॉस्पिटल में फोन करियो के एम्बुलेंस मेल लौटे, पुलिस स्टेशन फोन करियो
1: भाई
0: फटाफट मदद बुलाई,
1: वाह भाई ये बात है क्या सौ का काम करियो कई है मिनका ने मदद करनी जरूरी है, एक मिनट में दुनिया बदल जा,
0: हाची बदल जाओ
1: जो वैन बजीर लाग दे कि तो खून पड़ जा कि तो है जो कह नहीं घायल हो जा,
0: घर बार हैंग उजड़ जा नवलो भाई तो चलाओ बताओ,
1: एक मिनट में भाई दुनिया बदल जाए, खैर भाई हम तो कह मदद करनी बात मोटी है,
0: और तो ठीक है नवलो बा, पर टीम आएगी थी जिको आज विश्व रेड क्रॉस दिवस है नी, जिको हैंग मानवता री सेवा वास्ते और संकट में निस्वार भाव एनी मदद करे था अंठाए जिको एनी पूरी टीम आ परी एर फटाफट एनी बान हैंगा ने एम्बुलेंस में ले जा और भर्ती करियो अस्पताल, मेरे खून बीजी री जरूरत पड़ी जी की बड़े देवे नवलो,
1: अरे भाई हासी बात है देखे मददगार ही धरती माती है और गुनहगार ही धरती माती है,
0: बात आची
1: है जो जिको कह नी बजी ठोकन कियो बहुत कई तो डबी को नहीं है जो ले ना जा,
0: बड़ा ला रही नहीं जा क्यों नवलो बा,
1: अरे
0: एड़ा कर्म करियोड़ा थाने ठाए कट जाए नरक रे माया मारी कटी,
1: अरे नरक स्वर्ग तो भाई हो जो हो ही पर देखे के गलत काम है जो करे नी तो बे बारा पग काचा वे ना जा पण बन सजा तो कह नी कटून कटू मिल ये
0: मिल मिल अटी न्याय है वो नवलोबा, अटी और कोनी नरक अन स्वर्ग अटी जे है,
1: हां नवलोबा हकरा काम करो
0: हां
1: तो अटे स्वर्ग है,
0: हां
1: और कूड़ा काम गलत काम करो।

0: स्वतंत्र
1: तो हमें
0: थे, वे क्या कोई कोनी
1: हाँ
0: पर बात आ है कि भाई उन्हें गुणा लारे पूजा उजी
1: है वो नवलोबा। मैं हक रो काम करियो, मने इनाम तो देव पछकी।
0: ईमान तो भाई देखे मदद करने वालो है जिको काम तो कह सिरे है
1: हाँ।
0: और हैंगन करनी चाहिए
1: हाँ।
0: कह नहीं कि भाई हमें कई मुंह तो कई है बात आ के उदे क्यूड़ी
1: हाँ।
0: कह एक रापा रटे ढाणी में दो तीन एक बांद्र आएगा बांद्र आया जो को भाई एक बांद्र ऊपर थे नीम में सड़ियो
1: हाँ।
0: नूटू है जो को कह डाली टूटी जो हेटो पड़को बो हो गो बेहोश।
1: अरे राम
0: अरे दूजड़ा बांद्रा खने बे परान डॉक्टर भेजू हेड़ा बाने छाती ने दबाई
1: है नी
0: हाँ मुंडा फूका दी ने दम बे
1: आने खून बतायो नवलो का
0: तो तैयार कर दियो
1: देखो थे
0: तो यूं है भाई
1: खून कहवे जानवर
0: में मान लो
1: अक्कल
0: कोई मैं तो कोई गाय है कोई है जो कह नहीं जो टोगड़िया गाय मर जा
1: हाँ।
0: तो बाने कोई है जो लेन जावे ट्रैक्टर में दूजा घाल गुलाम जो टाइम दे के कौन किता ला रहे जिनावर दौड़े
1: दौड़े दौड़े
0: और तो को कोई जिनावर मर जा
1: हाँ।
0: और कोई कागलो ही मर गो है तो चारू मेर हैंग भेड़ा हो
1: हैंग भेड़ा हो जा ऊपर गोल गोल घूमे डाडेन पूछो ही मत
0: भाई देखा दुख तो है ना नहीं भाई
1: है वो है वो
0: और मदद री क्या नहीं मदद हमार देखा तावड़ो घणो पड़े
1: हाँ।
0: तो हूं तो कहूं पंख पंखे रूरी मदद करो जीव जिन्नावरी मदद करो
1: पानी में चून हैंग रखो हाची बात है नवलोबा। मैं तो पानी भरती आऊ नवलोबा बोतल में भरन लाऊ जी को जट जट दिखे नहीं उठे उठे भरती आऊ।
0: मैं तो कहूं देखा मुट्ठी एक सीढ़ी है
1: हाँ
0: दो वो एक कबूतर है किन कही कोई खेती करी जे कोई
1: नहीं
0: तो मिन करे भरोसा है तो मदद करनी चाहिए जाए
1: करा करा नवलोबा
0: और मदद मोटी है
1: हाँ।
0: मददगार को नमस्कार है
1: अच्छी बात है
0: है भाई और बाकी हम आप में दुख पड़े
1: हाँ।
0: आप ही कटून कटू कह नहीं अरदास करा मदद मांगा को मांगा नहीं
1: मांगा मांगा नवलोबा
0: एक हुक्रवार है आज
1: हाँ।
0: जो हूँ तो एक बढ़िया था हर चीज सुनाऊ मदद आओ मदद है भाई देर संतोषी माता हूँ एक कोई
1: आजन माता हूँ यार अरे थोड़ा
0: भाई कोई भाई में दुख पड़ी हो जो जान के नहीं किन तो होना ही को होना ही नहीं
1: हाँ बात
0: है तो ले ओ ओ है जो हरजी सी गीत सुनाऊँ
1: ठीक ठीक।

0: देखियो मदद करो ये संतोषी माँ, माँ तो माँ ही है भाई, फल दे क्या कहन बात है।
1: मैं तो कहूँ मदद करो संतोषी माँ, थोड़ी सद्बुद्धि दे, गाड़ी यू फूकता ही चलावे जो।
0: अरे की फोन भाई दे क्या, मदद तो अपने क्या नहीं धरती मार ही करनी है।
1: हाँ।
0: ने श्रृंगार करनो नहीं बात करनी है।
1: नवलो बा, हाँ। आज 8 मई है और आज एक ऐडी बीमारी है जी की अनुवांशिक होया करे नवलो बा जी की
0: पीढ़ी दर पीढ़ी
1: चढ़ी। तो इन कहवे थैलेसीमिया इरो नाम है नवलोबा।
0: खून खराब होवे कहूं है
1: ए नहीं, अपन जी का रेड ब्लड सेल होवे नी नवलोबा माई ना अपन
0: राता
1: हां राता रक्त को होवे नी मैं कही है के कम हुए और जितो अपन हीमोग्लोबिन होयो हुए करे नी नवलोबा वो ओ जितो बढ़नो चाहिए बी और कम बढ़े।
0: हां खून बढ़े कोनी है।
1: हां
0: है जी को कह निकाल में कमजोर वे नहीं है जी को हावड़ मशीन काम नहीं करे।
1: हाँ
0: तो खून की कमी वे कह नहीं खून ही बरोबर होना से जे पानी बरोबर
1: तो
0: होनी चाहिए।
1: हाँ अगर खून कम होवे नहीं नवलोबा तो ऐ लाल रक्त कोशिकाओं का ये तेजी नष्ट होती रहे माया खत्म होती रहे आपकी।
0: एक कहूँ दौड़ी राती वे है।
1: हाँ दो तरह री होवे व्हाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल। नवलोबा इरा यूं कही है थैलेसीमिया जी का लक्षण है नी वह है के ज्यादा थकान महसूस होना ठीक है और त्वचा मायन पीलोपन दिखनो जो एनीमिया में दिखे
0: पीड़ियाँ नहीं हो जाए भाई।
1: हाँ
0: तो देखे मैं आजकल तो क्या विज्ञान आगे बढ़ गो तो है मदद करी है
1: अब करी है नवलोबा पर तो ही कहवे के एनी ब्याह करियो पहली गर्भ धारण करनु पहली एक बार आप इरी जांच करा लो।
0: हाँ जी बात है भाई देखो जांच पड़ताल हो जा ठा पड़ जा भाई।
1: हाँ
0: बीमारी चुको नी
1: और
0: हाजर ताजा वे ढंग बात वे ले भाई आज कौन जलमियान कौन फोत होया इन बाबत की बात विगत बार होना वे कनी की तुरी
1: बार होना
0: है बजे कह मारो कह कह मंदड़ो करे घड़ी घड़ी बात कर दूर जाओगे।
1: अरे आज री विगत बार यू है नवलोबा के आज जन्मदिन है ठुमरी की रानी नाम जाना जेना ने बह है गिरिजा देवी ए अपने भारतीय शास्त्रीय संगीत री महान गायिका होती नवलोबा।
0: ठीक ठीक ठीक गिरिजा देवी है नी।
1: हाँ
0: घड़ी ठुमरियान कजरियान दूजी घड़ी गई
1: है नवलोबा आने आने गीत रे वास्ते आने अपनी भारत री सरकार

0: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मानित करियो
1: वाह
0: हतो।
1: भाई कहने का आपने कहा कि भाई अदाकारी बनकारी रो काम करियो तो है जिको कहने को जग चाहो काम है तो आने कही है जिको कहने मंदड़ेरा फूल चढ़ावा हाँ
0: आने नवलो बापा मंदड़ेरा फूल चढ़ावा है अपने हाथ नहीं है
1: हाँ कोटी कोटी नमन है ना कोई ठुमरी उमरी वह तो कोई आंकड़ी होना है जो
0: अबार देखू मैं अबार हूं।
1: हाँ।

0: वाह भाई वाह, की कोनी बात सोगी है बड़े
1: बड़े नवलोभा। आज जन्मदिन है उड़ीसा रा स्वतंत्रता सेनानी, गांधीवादी नेता और समाज सेवी होया गोप बंधु चौधरी जी।
0: ठीक, गोप बंधु जी चौधरी।
1: और नवलोभा, ब्रिटिश सरकार रे समय में डिप्टी मजिस्ट्रेट नियुक्त हुआ था,
0: जज बनिया है।
1: पर ए बो भी छोड़ नवलोभा, महात्मा गांधी रे हाथे असहयोग आंदोलन में हाथे रिया था, देश रे वास्ते काम।
0: भाई गांधी जी उन टाइम कहो जद गए हैं, कई लोग नौकरियां छोड़ी, कई पढ़िया छोड़ी,
1: बड़ा बड़ा ओहदा छोड़िया। हाँ,
0: छोड़िया भाई बिल्ला मिनका ने कोई नहीं भूल सके। पर बाते पोर धोक देवा, कोटी कोटी नमन करा,
1: राम मन डेरा फूल
0: चढ़ाओ भाई। बड़े
1: नवलोभा चिन्मय मिशन रा संस्थापक और भगवत गीता और उपनिषद ने, उपनिषद रे ज्ञान ने सरल भाषा में आम लोगा तक पहुंचायो स्वामी चिन्मयानंद जी सरस्वती। वाणो भी आज जन्मदिन है और आपा बाने भी याद करा। और आज वाणी 110वीं जयंती मनावे।
0: अरे भाई देखे गई धर्म कर्म में चोको काम करियो, ज्ञान क्या नहीं क्या आप दियो जो।
1: हाँ,
0: तो आनी कोई नहीं भूल सके, कोटी कोटी नमन है।
1: बड़े नवलोभा आज जन्मदिन है ब्रिटिश भारतीय इतिहास रे बारे में लिखण वाला और भारतीय आर्थिक इतिहास और बंगाल रे इतिहास में विशेषज्ञ होता तपन राय चौधरी। और नवलोभा ए अविभाजित बंगाल रे टाइम में बटे हुआ था, जन्म हुयो था आनो।
0: अरे भाई देखे दो जना काम करने गया भाई।
1: हाँ,
0: तपन गया।
1: हाँ,
0: तो इतिहास लिखियो पया पूंजी की
1: बात भी करी। हाँ,
0: तो भाई अरे मिनका नहीं कोई नहीं भूल सके, कोटी कोटी नमन है मंगलेरा भूल चुनाव।
1: बड़े नवलोभा आज जन्मदिन है प्रतिष्ठित भारत रा राजनीतिज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जाने आपा जोलू बाबू नाम उजाना, वह है सत्यव्रत मुखर्जी।
0: ओ ठीक ठीक है जी, कह नहीं की आप जग चावा काम करे।
1: हाँ,
0: तो आज मंगलेरा भूल चुनाव, कोटी कोटी नमन करा।
1: बड़े नवलोभा अबे आज पुण्य तिथि है आत्मा राव।

0: के ही सो जाएंगे।
1: देखियो कहे खून पसीने की मिलेंगे तो खाएंगे नहीं, भूखे ही मर जाएंगे।
2: वाह वाह
1: जड़ा पचा,
2: खून पसीदारी
1: ना हमें बता बता बहुत। अरे कितुर सिंह बताओ,
2: बताओ ही मैं था ना, आत्माराम जी, आत्माराव जी देश पांडे, ठीक है, ए अपने नवलोबा मराठी साहित्य रा कवि और लेखक होया था।
1: हाँ देश पांडे जी, सो का जग चावा काम कर गया, कह नहीं आप लारे खजानो छोड़ गया, कोटि कोटि बदे वो कह नहीं, क्यों कह मंदिर फूल चढ़ावा, कोटि कोटि नमन कर। बड़े
2: बड़े आज पुण्यतिथि है उस्ताद जिया फरीदुद्दीन डागर जी री। ए भारतीय शास्त्रीय संगीत रा महान गायक होता और उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत जी में कहवे नी सब पुरानी नवलोबा ध्रुपद रे प्रमुख स्तंभ में एक मानी जी।
1: ओ ध्रुपद ख्याल,
2: हाँ
1: ठीक ठीक भाई देखे नाव तो और करडो हुनियो डो।
2: हाँ
1: फरीदुद्दीन डागर है नी।
2: हाँ
1: ओ तो भाई देखे किद तरह गुल पेश करा, कोटि कोटि नमन करा,
2: मंदिरा
1: फूल चढ़ावा। बड़े
2: बड़े नवलोबा आज पुण्यतिथि है देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय जी री। और ए अपने प्राचीन भारत दर्शन में लोकायत यानी भौतिकवाद रा शोध करता होया था, यानी रिसर्चर जी का शोध करियो
1: खोज बीन करी। तो भाई एडा बिरला काम करने वाला कोई नहीं भूल सके, कोटि कोटि नमन करा मंदिरा फूल चढ़ावा। बड़े
2: बड़े नवलोबा आज पुण्यतिथि है दामोदरम संजीव वया जी री। और ए होया था नवलोबा अपने राजनीतिज्ञ और स्वतंत्रता सेनानी भी हुआ था, और ए अपने आंध्र प्रदेश रा पहला दलित मुख्यमंत्री भी हुआ था।
1: ठीक ठीक कमजोर तब क्यों थे दूटे पुगा।
2: हाँ हैंगर वास्ते भलो करियो,
1: भलो करियो भाई, वो तो कह राज की कुर्सी मत बैठ, कोई बैठो है।
2: हाँ
1: कानून बनी उड़ो नहीं हिसाब काम करो,
2: कानून री पढ़ाई भी करी थी नवलोबा।
1: हाँ तो
2: एल एल भी करी उड़ा।
1: अरे बिरला मिनका कोई नहीं भूल सके, कोटि कोटि नमन करा मंदिरा फूल चढ़ावा, और परमाते पर धोख देवा। भले
2: भले नवलोबा आज पुण्यतिथि है लाला अमीर चंद जी री। और वह भी अपने अठेरा महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी होया था, और जिका अपने देश री आजादी में आपरे प्राणारी आहुति दी।
1: जी भाई कहने की जुलम सहन करिया, अत्याचार है जो कह दे लिया।
2: हाँ।
1: और कह नी भाई शहीद हो यान पचे है जो कह नी अपन आजाद करान गया। एड़ा बिरला मिनका ने परमाते पर धोख देवा, कोटि कोटि नमन करा मंदिरा फूल चढ़ावा। बड़े
2: बड़े नवलोबा आज पुण्यतिथि है भाई बाल मुकुंद जी री। ए भी अपने भारत रा महान क्रांतिकारी हुआ था, और देश री आजादी में केवे नी हंसते हंसते फांसी रे फंदे ने चुने।
1: अरे भाई कहूं देखे के अमर शहीदा री बात आई।
2: हाँ
1: और वो टाइम हो जिसमे देखो मिन कहेंगे नी।
2: हाँ।
1: घर बार छोड़िया कह नी के आप रहें सुख त्याग करिया,
2: त्याग करिया
1: और देश री कह नी आजादी रो अपनो देखियो न आजाद करान किया।
2: हाँ।
1: तो एड़ा बिरला मिनका ने कह नी उन टाइम रा मोटिया रहा, टाबर हा, बाया बहना ही।
2: हाँ।
1: मातबर हा और आम आदमी है तो सबा नी मंदिरा फूल चढ़ावा, कोटि कोटि नमन करा। और हमें किस्तूर सिंह माने कोई एक अजिशिया होना दे कनी।
2: वाह जड़ा पचलो
3: थारी मुरली ने, थारी बासुरी ने, थारी मुरली ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सिमाड़ेरी गूंज। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का ये पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम और सुखविंदर सिंह की आवाज में। फिल्म का नाम है वनवास।

इस गीत में सोनू निगम और सुखविंदर सिंह के अलावा विजय प्रकाश, महालक्ष्मी अय्यर और साथ ही मोहम्मद दानिश और मिथुन की भी आवाज आप सुन सकते हैं।

नहीं मरना गवारा प्यार में, तुमसे ये कहना है, तुम्हें भी जिंदा रहना है, मुझे भी जिंदा रहना है।

0: हरमनप्रीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को चुना गया और श्री अधिकारी को निर्विरोध विधायक दल का नेता चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद है। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संकेत मिल गया था कि भवानीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में शिकस्त देने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल की अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे बड़े उम्मीदवार है। आखिरकार वही आजकल सच साबित हुए। परिषदीय दल के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ लेकर लोक भवन गए। उनके साथ दिलीप घोष, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित दल के कई केंद्रीय और राज्य नेता मौजूद थे। वहाँ राज्यपाल आरएन रवि के पास शुभेंदु ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। सांविधानिक परंपरा के पालन करते हुए बहुमत का दावा पेश किया गया और इसके साथ ही कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल को औपचारिक निमंत्रण भी दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच दिन रात एक करके वहाँ तैयारी के काम चल रहा है। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
0: तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है। वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 51 वर्षीय जोसेफ विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एक रिपोर्ट।
3: दो दिनों तक चली बैठकों के बाद तमिल गवेत्री कड़गम टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, विदुथलाई चिरुथिगल काची, वीसीके और आईयूएमएल से समर्थन पत्र प्राप्त हो गए हैं। पार्टी ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है, जिससे उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय अब राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही चेन्नई में आयोजित होने की संभावना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध कराया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। 8:45 होने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी लाने पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरन

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा है।

0: न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के पांचों बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। पीठ ने कहा कि मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य और केंद्र की एजेंसियों से मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन एक महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालय को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है। नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 वर्ष होने पर एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल के कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया।
1: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। टीएमआर जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है। आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
0: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। एक रिपोर्ट।
2: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया है कि पिछले वर्ष अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट एक महीने में जारी होने की संभावना है। गुजरात में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जांच कर रहा है।
3: एक साल पूरा होने वाला है और वो इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही सक्षम से चालू है। जब भी ये इन्वेस्टिगेशन होता है और खास करके इंटरनेशनल वाला फ्लाइट था, इसको कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। जो रिपोर्ट आता है इट विल बी अपर स्क्रूटनी, कोई भी देश कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन देश का कर सकता है। तो हमें बहुत ही सीरियसनेस के साथ, फेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंट नेचर के साथ हमें इन्वेस्टिगेशन करना है।
0: सरकार ने कहा है कि देशभर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
4: पिछले दो दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले दो दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। पिछले दो दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए

0: द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की पांचवी बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और ट्रिनिडाड टोबैगो के संबंध इतिहास, मानवीय संपर्क और साझा आकांक्षाओं का अनूठा संगम है। ट्रिनिडाड टोबैगो के अखबार में एक लेख में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पिछले पांच वर्षों में यह लगभग दोगुना होकर अब $35 करोड़ तक पहुंच गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
1: वर्षा इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बार बार हुए विनाशकारी हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी स्वाभिमान और साहस के प्रतीक के रूप में अड़िग खड़ा है। गौरतलब है कि 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गृहमंत्री अमित शाह रविवार को बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में करेंगे। बैठक में बाढ़ के पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ और लू के चुनौतियों से निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। इनमें दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के मामले में दोषी व्यक्तियों के लिए पैरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में 1% से अधिक की तेजी देखी गई। सेंसेक्स 77,328 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24,176 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 24 पैसे कमजोर होकर ₹94.48 के स्तर पर बंद हुआ।
0: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सिमरन ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू जू को और साहिल ने शूट ऑफ में ऑस्ट्रिया के निको विनर को हराया। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर-17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उधर दिल्ली में IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 126 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, VCK, IUML और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव ने अप्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का ये पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म लकी से, जिसे गाया है सोनू निगम ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए अब सुनते हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। दोस्तों, स्वागत है आपका कार्यक्रम मन चाहे गीत में। कार्यक्रम का ये पहला गीत हमने लिया है फिल्म प्रेम रोग से। इसे आवाज दी है सुरेश वाडकर ने। सुनना चाहा है जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा, राजकुमार बोढ़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, रितु, मुकेश और जगताप ने। इसके अलावा सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज ने।

इस गाने के लिए फरमाइश की है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तिरुपति साहू।

इस गीत को सुनना चाहा था सरगुजा मेन पार्ट से अजिता पॉल, प्रभा रानी और प्रियांश शर्मा, छत्तीसगढ़ से मिश्री देवी साहू ने। उमरखेड़ से फराह खान, आशिया खान और सरोज खान ने, जालंधर से संदीप जाटव और आशु सुरेश जाटव ने।

फिल्म सिटी मुंबई से अदीबा नाज, फातिमा, नसरीन अंसारी, आलिया और सबा अंसारी, जालंधर से संदीप जालोटिया ने भी यही गीत सुनना चाहा था।

सुनना चाहा है कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना और राजेंद्र सिंह ओबेरॉय।

इस गीत को सुनना चाहा था नागजुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे भाटापारा छत्तीसगढ़ से सुहन जोशी और पायल जोशी ने। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक और जयपाल यादव ने भी यही गीत सुनना चाहा था।

अगली फरमाइश फिल्म संबंध के इस गीत के लिए, जिसे आवाज दी है मुकेश और साथियों ने। सुनना चाह है कबर कॉलोनी बड़वाह जिला खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली ने। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह ने।

कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा, गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जोहारी, कंचन कुसुम और सरोज सोनार सिटी सेंटर अहमदाबाद से।

0: पिघला है, बना लेंगे।
1: यह आवाज है लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है ज्वार भाटा।
0: हंसा लेंगे।
1: सुनना चाहा है ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित वायाड़, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्वत देशमुख और सानवी देशमुख ने।

दोस्तों, ये गाना हमने लिया है फिल्म दोस्ती से। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की। इसको सुनना चाहा है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा और कपिल चीपा। ईशान चीपा और पूजा परिहार ने।

रायगढ़ बिहार से उमाराज, पवन उमा, डोंडी लोहारा से संजय प्रभा बेलदार, दीपक डॉली बेलदार और कमल राधिका बेलदार, उमरखेड़ महाराष्ट्र से सिराज खान और रजाक खान, सौराष्ट्र राजकोट से जुली जगदीश गुजराती, कुंदन रंजन प्राची और प्रवीण पुजारी,

गांव कुमार खेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया और इब्राहिम। गांव खरकड़ा चौबीसी से गोलू कांगड़ा, सागर कांगड़ा, सीताराम कांगड़ा, आंसी का बोध और तमन्ना कांगड़ा।

ये गीत है फिल्म आपकी कसम से, आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। सुनना चाहा है जमानिया गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल ने। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता ने।

नूर महल मैसोल सीतामढ़ी बिहार से मसरत जहां नाज, तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज। कब सहेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से आमना नसरीन बागवान, नूर आयशा अहमद बागवान, छोटी बलिया तालुका करजत से अहमद भाई फूलवाले और आशु अहमद फूलवाले।

और इस गीत को सुनना चाहा था महसूल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, कुआत बिहार से शेख जफर हसन और नरगिस जफर।

ऋषभ सुनिए फिल्म सागर से किशोर कुमार की आवाज में ये फरमाइश, जिसे सुनना चाहा है दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफरा नवाज और चाहत के साथ ही सादिया। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू। बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, मुरली नीरा वर्मा, उमेश, प्रमिला और बंछोर। इसके अलावा केवरा और राजेश्वरी वर्मा ने

इस गीत को सुनना चाहा था जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित ने। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशांत छिपा और पूजा परिहार ने। बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, बिना मस्कीन, चैतन्य मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचित खुराना और केशु खुराना ने भी यही गीत सुनना चाहा था।

दोस्तों, ये फरमाइश आई है फिल्म हकीकत के इस गीत के लिए, जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफी, भूपिंदर, मन्ना दे और तलत महमूद ने। सुनना चाहा है मानपुर साबित जिला मुरादाबाद से शेख जियाउर रहमान, शेख अताउर रहमान और शेख हबीबुर रहमान ने। गुमला झारखंड से एसएम जावेद, शगुप्ता अंजुम। जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना अश्विनी और विपुल कांबड़े।

मारहरा दरवाजा ईटा से नबी हसन अब्बासी, अब्बासी शाहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, रसीद वारसी, अनम अब्बासी और अशरफ अब्बासी, सिकंदरा राव से मुबीन अब्बासी।

नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर, मलकापुर से नारायण इंगले, मंगला इंगले और आशीष मुरहेकर।

0: सेक्टर 5 कोड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर से रमेंद्र रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और गर्वी हिमाक्ष। सौराष्ट्र राजकोट से जूली जगदीश गुजराती, कुंदन रंजन प्राची और प्रवीण पुजारी।
1: उबलाए होंगे नाम पर मेरे जबासू निकलाए।
0: राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार ने भी यही गीत सुनना चाहा था।

कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकिरत राहुल, कुलशब्दर सिंह राहुल।

दोस्तों, ये है कार्यक्रम की आखिरी फरमाइश जिसे हमने लिया है फिल्म रफ्तार से। आवाज दी है मुकेश और आशा भोंसले ने। सुनना चाहते हैं दिल्ली नांगलोई से राजेंद्र जाटोलिया, उषा जाटोलिया, कृष्णा जाटोलिया, पूजा जाटोलिया, कोमल जाटोलिया और आरव जाटोलिया। करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, इशप्रीत शर्मा और हरी पलकौर।

गांव टोरोवाल, जिला नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, प्रियंका थांदी, प्रशांत थांदी, प्रियम थांदी, वामिका और वाणी थांदी। जिला मोतिहारी बिहार से नंदन कुमार सिंह, अंकित कुमार सिंह, बेगूसराय बिहार से संदीप कुमार सिंह और संजय कुमार सिंह।

गांव होड़ू जिला बालोतरा से उम्मीदवार सुरेश कुमार और दिनेश कुमार तथा राजेश कुमार। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो।

कोटवा, नारायणपुर, बाबा पट्टी, बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा, नेवादा, जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय।

मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़। बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी।

और इसी गीत के लिए ये आखिरी मेल हमें किया था नागर कोहरा जिला रांजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा बेबी और आराध्या साहू ने।

0: हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। 11 बजने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
2: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद है। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएम के महासचिव एडापाडी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने यह खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जांच करने की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है।

कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक

0: व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालय का गठन एक महीने के भीतर किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू LPG की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुगाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC Under-17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2025 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सायरा मुज्तबा। Senior BJP leader Shubhendu Adhikari will be the new chief minister of West Bengal. BJP legislature party in the state elected him the leader in a meeting held in Kolkata today, paving the way for him to become the first BJP chief minister of the state. Addressing media, Union Home Minister Amit Shah said, Mr. Adhikari's name was proposed at the meeting and since no other nomination was received, his name was finalized.
2: अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव की
3: द इलेक्शन प्रोसेस वॉज कम्प्लीटेड जस्ट अ फ्यू डेज अगो। अराउंड 8 प्रपोजल्स एंड सपोर्टिंग नॉमिनेशन वर रिसीव्ड एंड ऑल ऑफ देम वर इन फेवर ऑफ द सेम नेम। सफिशिएंट टाइम वॉज ऑल्सो गिवन फॉर एनी अदर नॉमिनेशन बट नो सेकेंड नेम वॉज प्रपोज्ड। देयरफॉर एज द सेंट्रल ऑब्जर्वर आई डिक्लेयर शुभेंदु अधिकारी एज द इलेक्टेड लीडर ऑफ द वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव पार्टी।
2: विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: Mr. Shah expressed gratitude to the people for giving a strong verdict to the BJP despite numerous instances of violence and brutality. Mr. Shah further said that the expectations of the people of Bengal have placed on them and the mandate that they have given with hope and trust, they will make every effort to ensure that their faith is not broken in any way. Addressing the meeting, the Chief Minister Designate Shubhendu Adhikari said, Whatever guarantees have been announced by Prime Minister Narendra Modi, the BJP government in the state will fulfill all responsibilities. Tomorrow morning, the oath-taking ceremony of the government will be held at the Brigade Parade Ground. In Tamil Nadu, the uncertainty over formation of government under TVK chief C. Joseph Vijay continues. The new twist came as IUML has rejected the reports of its support to TVK to form the government. In another development, reports are also coming in that the swearing-in ceremony, which was to take place tomorrow, will not be held. Earlier, TVK had claimed that the actor-turned-politician is all set to form the government, as he again met the governor today and staked claim to form the government, saying that he has majority numbers. Meanwhile, the Indian Union Muslim League, headed by Professor Khadir Mohiddin, has said that his party has not given a letter of support to Tamil Raghavetri Karagam or TVK. In another surprise move, AMMK party leader TTV Dinakaran, a partner in the NDA alliance, has approached the governor Vishwanath Arlekar late evening and submitted a letter of support from lone MLA S. Kamaraj from Manaragudi for AIADMK General Secretary Edappadi K. Palaniswamy to form the government. Meanwhile, National Democratic Alliance Chief Ministerial Candidate N. Rangasamy met Lieutenant Governor K. Kailashanathan and staked claim to form the next government in Puducherry. Mr. Rangasamy handed over letters of support from majority of MLAs to the Lieutenant Governor. NDA Alliance MLAs and Alliance leaders accompanied him. Earlier, a meeting of NDA Alliance parties and elected MLAs elected Rangasamy as the Chief Ministerial Candidate. Supreme Court today expressed concern over the rising drug menace in Punjab.